0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि-कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने एक दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The nation celebrated its 80th Independence Day yesterday. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag from the ramparts of the Red Fort and made several important announcements. Addressing the nation, the Prime Minister said, over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
2: Koi bhi raash tab mahaan banta hai, jab apne sapnon, apne sankalpon aur apne samarth ke dam par आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: Stressing on the empowerment of youth and women for a Viksit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. The first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west, across 54 countries and multiple time zones. External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign. Launched from the High Commission of India in Fiji, the relay carried the spirit of the Tiranga from one sunrise to the next, bringing together the Indian community and friends of India across the world.

सगल पवन के नायिका एक छिन्न दर्श दिखाए जी। शब्द तुसी सरवण कर रहे सी भाई जोगिंदर सिंह रियार पासों। प्रोग्राम चल रहे जी अमृत वेला समा। इस वेले 6:30 का हो चुके ते आओ प्रोग्राम दे तहत अगला शब्द सरवण कर दें। आवाज है सोनू निगम दी।

0: छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे तो उसके इस अंदाज में खुश रहो। कल किसने देखा है, तुम अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतजार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, दे नाल आ गई है जी दीपा छाबड़ा, लेके आई है थोड़े लिए प्रोग्राम सजरी सवेर ते। सजरी सवेर दे विच अज तुहानू डबल डोज मिलन वाली है। क्यों? क्योंकि दीपा छाबड़ा दे नाल ने जी अज
1: अमृत
0: जी। अमृत मेरे नाल है ते अमृत बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा प्रोग्राम सजरी सवेर दे विच।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा, ते अज सारे श्रोतियां दा बहुत बहुत स्वागत है जी। ते असी अज डबल डोज तुहानू देने वाले हैं, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे सुविचारां दे नाल, बहुत सारियां चंगियां गल्लां दे नाल। ते होर की कहना चाहोगे तुसी?
0: मैं बिल्कुल, मैं तो बहुत कुछ कहंदी रहनी हूं अमृत, पर अज तुहाडी वारी है, क्योंकि मैनू पता है तुसी एक बहुत लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट श्रोतियां दे वास्ते रेडी

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले, नखरे ना कर।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते सही दोस्ती निभाओ ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो।

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन सीमा मेहरा। ता फिर सुनना ना भुलना, मिति 17 अगस्त दिन सोमवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार, जिथे हर कहानी साडे विरसे दी आवाज बनदी है।

तोड़कर जोड़ लो चाहे हर चीज दुनिया की, सब कुछ काबिले मुरम्मत है एतबार के सिवा। ते एतबार जेड़ा तुसी प्रोग्राम पैगाम दे विच आकाशवाणी FM बठिंडा ते

0: हसी नजारा है, यह शाम हमको बस तेरा ही दीवाना बनाती है।
1: जी इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, साडे सारे ही स्रोते सानू बहुत वधिया पैगाम लिखदे ने, गागर च सागर भरदे ने जी।
0: खतां दी सौण दी झड़ी लगी सी उसे नूं असीं इत्थे ही रोकदे हां ते मैनूं अज दा प्रोग्राम पैगाम इत्थे ही खत्म करन दी दिओ आग्या। मैं सीमा कटारिया
1: ते मैं मनदीप रजौरा,
0: नमस्कार।
2: अच्छा।

0: आकाशवाणी एफएम बठिंडा 101.1 मेगाहर्ट्ज से समा 7:59 ते 38 सेकंड का ठीक 8 बजे तुसी सुनोगे हिंदी विच खबरां समाचार प्रभात 8:15 ते अंग्रेजी विच खबरां मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो ते 8:30 बजे पंजाबी विच खबरां सुनोगे आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्य पथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
4: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
3: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क

0: ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती हैं, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी

0: बक्सर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट एक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी एसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
3: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1,307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
4: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अक्वापदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहां खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियां भी उफान पर है। आईएमडी ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान, प्रधानमंत्री ने लाल किला के

0: के प्राचीर से कहा, सात शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश, जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान, कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिन्दुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत, नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की, इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा, अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families, 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapath Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has announced to provide free online coaching for students belonging to poor and middle-class families. In his address to the nation, Mr. Modi said the move is aimed at easing the financial burden of aspirants preparing for competitive exams. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: The Prime Minister said that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
3: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: The Prime Minister said today India is making its place in the world of sports. Mr. Modi said in 2030 India will host the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon.

0: Independence Day honor for showing bravery and extraordinary courage. Government brings scheme to disclose foreign assets, opening a one-time window for taxpayers to declare their undisclosed foreign income, cites the Hindu. A Financial Express headline says, India closer to private nuclear power as draft rules issued. Under pressure amid regulatory heat and rising cost, this festive season to be testy for sweets makers is another headline in the Financial Express. A master plan for Delhi 2047 proposes the Havelis of Chandni Chowk to Latin's Delhi. Heritage buildings could soon get a lease of life by making them hotels and offices, notes the Sunday Express. And finally, the Economic Times carries a story of matchmaking startups using AI to narrow choices by creating user profiles based on dating history and personality, with traditional dating platforms losing steam. Under the headline, AI-led matchmaking apps getting all the investor love. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapat Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद अते राज विधानसभावां विच औरतां लई राखवांकरण लागू करन लई सारियां सियासी पार्टियां नूं सहयोग करन दी अपील कीती है। प्रधानमंत्री ने गरीब ते मध्य वर्गी परिवारां दे विद्यार्थियों लई मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग दा ऐलान कीता है। अगले एक साल विच 1 करोड़ नौजवानों नूं आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की सिखलाई दी जाएगी। सीधे टैक्सां बारे केंद्रीय बोर्ड CBDT ने छोटे करदाताओं लई विदेशी संपत्ति खुलासा योजना नियम 2026 नोटिफाई किए ने। देश अज सबक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नूं उनां दी बरसी ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। ते नैशनल टैसटिंग एजेंसी अज UGC नैट जून 2026 CSIR नैट अते ICAR दाखला प्रीख्या लई आरजी उत्तर कुंजियां जारी करेगी। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारियां राजनीतिक पार्टियां नूं संसद अते राज विधानसभावां विच औरतां लई राखवांकरण लागू करन दे मुद्दे नूं राजनीतिक लड़ाई ना बनाउण दी अपील कीती है। आजादी दिवस दे मौके ते लाल किले दी फसील तों राष्ट्र नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि सारियां पार्टियां नूं अगे आउणा चाहीदा अते औरतां दा सन्मान करदिआं इह यकीनी बनाउणा चाहीदा कि औरतां नूं लोक सभा अते राज विधानसभावां विच जल्दी तों जल्दी 33% नुमाइंदगी मिले।
3: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
2: ਤਿਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: श्री मोदी ने कहा कि इस कदम नाल मध्य वर्गी परिवारों नूं कोचिंग ते खर्च होने वाले हजारां करोड़ रुपए की बचत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले साल 1 करोड़ नौजवानों नूं आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस हुनर विच सिखलाई देने का फैसला भी किया है। उन्होंने कहा कि इस नाल भारत विश्व पद्धर ते AI की अगवाई कर सकेगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 80वीं आजादी दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन विखे एक स्वागती समारोह की मेजबानी की। समारोह च उप राष्ट्रपति सी पी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साबक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला, केंद्रीय मंत्री राजदूत और वक्-वक् सरकारी योजना के लाभपात्री शामिल हुए। इस समागम विच छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की अमीर और जीवंत रवायती कला और सभ्याचार का प्रदर्शन किया गया। उपराष्ट्रपति सी पी राधा कृष्णन अज तो तमिलनाडु के दो दिन दौरे पर होंगे। दौरे दौरान वह चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई अकादमिक और साहित्यिक समागम में शामिल होंगे। अज श्री राधा कृष्णन चेंगलपट्टू में एस आर एम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी के 22वें कन्वोकेशन समारोह में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह अज राजस्थान ते अलवर का दौरा करनगे। ओ अलवर सरस डेयरी कंपलैक्स विखे एक नवे डेयरी प्लांट का नींह पत्थर रखणगे। श्री शाह वक्-वक् दुध यूनियनां दे डेयरी प्रोसैसिंग ते पशु आहार प्लांटां दा ई उद्घाटन भी करनगे। दौरे दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए के विकास प्रोजैक्टों का ई उद्घाटन किया जाएगा ते नींह पत्थर रखे जाएंगे। रोजगार उत्सव तहत 10,500 तो वध नवे भर्ती किए मुलाजमान को नियुक्ति पत्र भी दिते जाएंगे। ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब से साडा चैनल है @AIR जलंधर। सीधे टैक्सों बारे केंद्रीय बोर्ड CBDT ने छोटे करदातावां लई विदेशी संपत्ति खुलासा योजना फास्ट DS नियम 2026 नोटिफाई किए ने। इस स्कीम तहत योग टैक्सदाता निर्धारित टैक्स या फीस अदा करके अण ऐलानी विदेशी संपत्ति या आमदन बारे जानकारी दे सकते ने। यह स्कीम अज तो लागू होगी और इस तहत जानकारी देने की आखिरी तरीक 31 दिसंबर है। तरीक तो बाद कोई भी जानकारी दाखिल नहीं की जाएगी। करदातावां विच जागरूकता वधाउण अते इस स्कीम बारे बेहतर समझ नूं सुखाला बनाउण अते अपने लगातार यत्नां दे हिस्से विचों आमदन टैक्स विभाग ने इस स्कीम अते नियमां बारे अक्सर पुछे जाण वाले सवालां FAQs दा एक वेरवे सहित दस्तावेज भी जारी कीता है। देश अज साबक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई नूं उन्हां दी बरसी ते शरधांजलि भेंट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वड्डे नेता ते साबक प्रधानमंत्री का 2018 अज दे ही दिन देहांत हो गया सी। अटल बिहारी वाजपेई 3 बार प्रधानमंत्री रहे। 1996 उन्हां दा पहला कार्यकाल सिर्फ 13 दिन चलिया। फिर उन्होंने 1998 तो 1999 तक लगभग 11 महीने प्रधानमंत्री वजों सेवा निभाई। उन्होंने 1999 तो 2000 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। 2015 उन्होंने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न नाल सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी पी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज राष्ट्रीय राजधानी में साबक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की समाधि सदैव अटल ते उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल भेंट किए। इस मौके साबक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ते बीजेपी के राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन भी मौजूद सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई नूं उन्हां दी बरसी ते श्रद्धांजलि भेंट कीती। एक सोशल मीडिया पोस्ट सांझी करदिआं श्री मोदी ने वाजपेई नूं एक असाधारण दूरदर्शी अते एक शानदार नेता दस्सिआ जिन्हां अपना जीवन देश दी सेवा लई समर्पित कीता। उन्हां कहा कि साबका प्रधानमंत्री दे शब्दां ने कई पीढ़ियां नूं प्रेरित कीता ते उन्हां दी अगवाई ने देश नूं मजबूत बनाया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अटल बिहारी वाजपेई नूं उन्हां दी बरसी ते श्रद्धांजलि भेंट कीती है। नैशनल टैसटिंग एजेंसी NTA अज UGC नैट जून 2026 CSIR नैट अते ICAR ऑल इंडिया दाखला प्रीख्या लई आरजी उत्तर कुंजियां जारी करेगी। PhD प्रोग्रामा लई ऑल इंडिया कंपीटिटिव प्रीख्या लई उत्तर कुंजी भी अज जारी की जाएगी। एजेंसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि आरजी उत्तर कुंजी अधिकारित वैबसाइट से उपलब्ध रहेगी। एजेंसी ने उम्मीदवारों नूं सिर्फ एजेंसी की अधिकारित जानकारी ते भरोसा करन दी अपील की है। जम्मू के किश्तवाड़ जिले के दाशन इलाके विच कल एक वाहन सड़क तो फिसल के चनाब नदी विच डिगण कारण 5 लोगों की मौत हो गई। साडे जम्मू वाले पत्रकार ने दस्सिया कि वाहन जैनवान डंगडूरू तो साउंडर वाल जा रहा सी। पुलिस टीम ते स्थानक निवासियों ने मौके ते पहुंच के बचा अते सहायता कार्य शुरू किए। घटना स्थान तो 5 लाशां बरामद की गई ने। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ते प्रधानमंत्री दफ्तर विच राज मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने हादसे विच लोगों की मौत ते दुख प्रगट किया है।

इस वेले तुसी सुन रहे हो मालवे दी शान स्रोतियां दी जुबान आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते।

इस अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं तनु वेट्स मनु इस फिल्म का गाना, आवाजें मोहित चौहान और उज्जैनी की, गीतकार राजशेखर, संगीतकार कृष्णा।

दोस्तों, आज जाने माने निर्देशक और अभिनेता महेश मांजरेकर का भी जन्मदिन है। विविध भारती परिवार उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देता है। आप सभी जानते हैं कि महेश मांजरेकर, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में सशक्त अभिनय किया, निर्देशन दिया और लेखन, यानी अभिनय, निर्देशन और लेखन तीनों में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके किरदारों में गहराई है, अंदाज में बेबाकी है। उन्हें जन्मदिन पर हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और उनकी कला यूं ही पर्दे पर अपनी छाप छोड़ती रहे, ऐसी हम शुभकामनाएं उन्हें देते हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संजू का गीत, आवाजें सोनू निगम और सुनिधि चौहान की, पुनीत शर्मा की रचना है और रोहन रोहन का संगीत है। ये महेश मांजरेकर की फिल्म है।

0: समझे हैं? हाँ
1: बढ़िया।
2: तो दोस्तों, आप भी समझ गए होंगे कि इस फिल्म में यानी संजू में महेश मांजरेकर ने एक छोटा सा कैमियो किया था।
3: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
4: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
3: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: राष्ट्रीय गीत की

0: 150वीं वर्षगांठ आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे।
1: जय घोष वंदे मातरम।
0: लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।

जी तो दोस्तों, आज मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोइराला का भी जन्मदिन है और विविध भारती परिवार उन्हें भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं दे रहा है। आप सभी जानते हैं कि मनीषा कोइराला फिल्मों की उन शानदार अभिनेत्रियों में शुमार है जिन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ सशक्त अभिनय की मिसाल कायम की है। उनकी फिल्म बॉम्बे हो, खामोशी हो, दिल से हो, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने उसमें उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है। और उनकी आंखों में जो भावनाएं आती हैं, अभिनय में एक खास सहजता, और उनकी जो हंसी है वो आज भी हमारे दिल में बैठी हुई है। तो आप सभी जानते हैं कि मनीषा कोइराला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है बल्कि एक संवेदनशील और यादगार पहचान है, और हम सभी आज भी उनके अभिनय के मुरीद हैं। आइए सुनते हैं फिल्म कंपनी का गाना, आवाजें आशा भोंसले, सपना अवस्थी और सुदेश भोंसले की। नितिन रेकवार के बोल हैं, संदीप चौटा का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

यह आवाज़ें संगीत हल्दीपुर और रोशनी बैप्टिस्ट की। फिल्म का नाम है मर्डर टू। सईद कादरी के बोल और संगीत और सिद्धार्थ हल्दीपुर का संगीत।

दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज मशहूर अभिनेता सैफ अली खान का भी जन्मदिन है। हम विविध भारती परिवार के सभी लोग उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और रोमांटिक किरदारों से लेकर चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं तक उन्होंने हर अंदाज को बखूबी निभाया है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म कॉकटेल का गीत, आवाजें नीरज श्रीधर और कविता सेठ की, गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम।

इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी रेडियो दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

इस गीत में दो प्रमुख आवाजें हैं जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक केजे येसुदास की और दूसरा शास्त्रीय स्वर था हेमलता का। हेमलता को इस गीत के लिए 1977 का फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड दिया गया था। हेमलता 70 के दशक की प्रमुख पार्श्व गायिकाओं में से एक थी। जहां तक इनके अवार्ड से संबंधित बात चल रही है तो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए इन्हें 1977 से 1981 के बीच 5 बार नामांकित किया गया था।

आशुगाई का हेमलता का जन्म हैदराबाद में मारवाड़ी भट्ट परिवार में हुआ। बचपन इनका कोलकाता में बीता। पंडित जयचंद भट्ट और अंबिका भट्ट के यहाँ 16 अगस्त 1954 को आपका जन्म हुआ। आप शास्त्रीय संगीत से आरंभ से ही जुड़ी रही हैं। हेमलता का मूल नाम लता भट्ट है। आइए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। एक मील का पत्थर जिस गीत को हम कह सकते हैं, जिसने हेमलता को लाइमलाइट में लाया, उस गीत को सुनते हैं।

संगीतकार रविंद्र जैन की धुनों पर हमने कई गीत सुने हैं जो हेमलता ने गाए हैं, और इन गीतों से ही हेमलता ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

1978 की है। इस साल अखियों के झरोखों से इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग नंबर 1 पर था। इस गीत को चाहने वालों की संख्या आज भी कम नहीं है। यूं तो हेमलता ने मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, मुकेश, सुरेश वाडकर, जसपाल सिंह जैसे गायकों और आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, चंद्रानी मुखर्जी, उषा मंगेशकर जैसी गायिकाओं के साथ कई गाने गाए हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हेमलता ने केजे येसुदास के साथ कई लोकप्रिय और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत गाए हैं।

1990 के दशक में दूरदर्शन ने हेमलता और येसुदास को अपने श्रोता दर्शकों के लिए गाने का आमंत्रण दिया, जिसे हेमलता और येसुदास ने गाया। तिस्सा नदी सी और एक गाना था, साथ जो तेरा यूं पाया। ये दोनों ही गाने दूरदर्शन पर दिखाए जाते रहे और काफी लोकप्रिय भी हुए। आइए अब आपको हेमलता की मधुर आवाज में सुनवाते हैं सुनैना फिल्म का ये गाना।

रविंद्र जैन के अलावा भी हेमलता के मधुर कंठ का अपने गानों में अधिकतम उपयोग किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और उषा खन्ना ने। उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया आप तो ऐसे न थे, इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं।

लता ने कई गीत गाए हैं, जैसे जीने की राह, आप आए बहार आई, काली घटा, मैं तुलसी तेरे आंगन की, राजपूत और सच्चाई की ताकत जैसी फिल्में। लेकिन हम आपको जो गीत सुनवा रहे हैं, ये दो आवाजों का एक अद्भुत मिलन है। स्वर है लता मंगेशकर और हेमलता का।

अब आइए बात करते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में हेमलता के गाए गीतों की। विश्वास, रुस्तम, राजमहल, मुकद्दर का सिकंदर, ज्वालामुखी और बॉम्बे 405 माइल्स जैसी फिल्में। आइए मुकेश के साथ हेमलता के गाए इस गीत को सुनते हैं।

फिल्मी गीतों के अलावा भजन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से हेमलता का गहरा जुड़ाव है। आपने कई टीवी सीरियल्स के लिए भी गाया। आपके विषय में ये जानकारी बहुत कम लोगों को पता है कि इन्होंने भारत की 14 बोलियों के लोक गीतों के विषय में मौलिक रचनात्मक अभिनव शोध भी किया है। आइए अब इस कर्णप्रिय स्वर में सुनते हैं फिल्म नदिया के पार का ये गाना।

आइए अब हेमलता की गायकी की पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। हेमलता का पारिवारिक माहौल शास्त्रीय संगीत का था। इनके पिता एक प्रसिद्ध संगीतकार थे।

ऐसे जलसों में इंटरवल ना देकर स्थानीय प्रतिभाओं से फिलर के रूप में गायकी की जाती है, जैसा कि आप जानते ही हैं। एक गाने की पेशकश थी, पर श्रोताओं को बेबी लता की गायकी खूब पसंद आई और इन्होंने भी जमकर गाया। उम्र तो छोटी ही थी पर प्रतिभा बड़ी। पिताजी को भी खूब पसंद आया इनका ये गाना, जो कभी इस बात के पक्षधर थे ही नहीं कि लड़कियों को गाना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि बेबी लता को तो फिल्मों में गाना चाहिए, पर पिताजी माने नहीं। उन्होंने कहा, फिल्म नहीं, अभी इसे आता ही क्या है, शास्त्रीय संगीत सीखे। और इसके लिए उन्होंने ज्ञान प्रकाश घोष जी के यहाँ हेमलता को संगीत सीखने के लिए भेजा। रियाज किया और हेमलता संगीत सीखने लगी, रियाज करने लगी, लेकिन फिल्मों में गाने का क्रेज तो था ही। और वैसे भी पिताश्री के जो साथी कलाकार थे वो मुंबई में ही थे, जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद आमिर खान। इनसे उन्होंने कहा कि मिलना भी हो जाएगा, और उनकी बहन जो है कमला पंडित वो भी वहां रहती थी। और उनका ये मानना था कि 15-20 दिन का मुकाम करेंगे, इस बीच में जो है इस बच्ची की गलतफहमी कम हो जाएगी। 15-20 दिन में ही इन्हें वहां बुलावा आ गया, और ऐसे ऐसे संगीतकारों का नाम था उसमें जिन्हें हम सभी लीजेंड्स कहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो पहला पहला ऑफर आया था वो उषा खन्ना और कल्याण जी आनंद जी का था, और कल्याण जी आनंद जी ने विश्वास फिल्म के ले चल मेरे जीवन साथी इस फिल्म के लिए गवाया। लोक गीतों की ताजगी, भक्ति गीतों की सुगंध को लिए हेमलता ने कई गीत गाए। कहना ना होगा कि इनके स्वर में लोक और भक्ति गीतों को सुनना एक अलग ही अनुभव है। कई गीतों और भावों को हेमलता के स्वर ने जीवंत किया है।

फिल्म संगीत के संसार में कई तारे हैं जो अपनी कला से चमकते हैं। इस आकाश के अस्तित्व तक इनकी चमक कभी फीकी नहीं होगी। ऐसी ही एक कलाकार हेमलता ने अपनी आवाज और गायकी से आसमान को संगीतमय ढंग से रोशन किया।

0: आज का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायिका हेमलता पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के

बच्चे मन के सच्चे।

0: Sí. प्यारे प्यारे बच्चों तुहानू प्यार भरी नमस्कार मेरे वालों ते
1: अमृत वालों
0: ते अज असी दोने तुहाडा मनोरंजन करांगे ते उम्मीद है तुसी सारे बहुत ही तंदुरुस्त होवोंगे खुश होवोंगे ते आनंद मान रहे होंगे अपनी खूबसूरत जी प्यारी जी जिंदगी दा ते नाल नाल अपनी एतवार दी छुट्टी दा भी। ते अमृत अज छोटे छोटे बच्चों वास्ते तुसी की लेके आए हो की गल्लां सांझियां करोगे उन्हां नाल?
1: अज असी बच्चों दे नाल ना आपां खुद भी बच्चे बन जांगे। अज आपां अपने बचपन नूं याद करांगे ते सारिआं दा बचपन याद करावांगे जिहड़े सानूं सुन रहे ने, चाहे वह बच्चे सुन रहे हैं चाहे वह वड्डी उम्र दे सुन रहे हैं, तुसीं सारे जाणे आनंद माणोगे। ते अज आपां बहुत सारिआं अपने बचपन दीआं यादां ताज़ियां करांगे ते उस समें नूं याद करांगे जदों असीं बिना मतलब दे खुश हुंदे सी, बिना मतलब दे जिंदगी दे विच आनंद माणदे सी, बिना कोई वजह तो खुश ते मुस्कुराहट भरी जिंदगी बतीत करदे सी।
0: बिल्कुल अमृत, हुण तां असीं जदों हसन लगदे हां ते सानूं सोचना पैंदा वी असीं फोटो खिंच रहे हां तां असीं हसीए
1: जी। बिल्कुल,
0: पर जिहड़ी बच्चे दी मुस्कान हुंदी है ना उह बिना वजह हुंदी है
1: जी। बिल्कुल, उह तां छोटियां छोटियां जिहड़ियां गल्लां हुंदियां ने जिवें छोटियां छोटियां चीज़ां दे विच खुशियां मिलदियां ने, जिवें साडे माँ बाप साडे लई कुछ करदे आ उहनां छोटियां छोटियां निक्कियां निक्कियां चीज़ां दे विचों सानूं खुशी मिलदी है। सानूं पैसा ये सब जो वड्डे होके सानूं देखिया ना वी हाँ पैसा जरूरी है या फिर किता जरूरी है, उस वक्त इन्हां चीज़ां दी कोई अहमियत नहीं सी। उस वक्त तां बस खेडना जरूरी हुंदा सी ते स्कूल जरूरी हुंदा सी, दोस्त मित्र जरूरी हुंदे सी, दोस्त मित्रां दे नाल लड़ाइयां हुंदियां सी, पर अज वालियां लड़ाइयां नहीं हुंदियां सी। क्योंकि अजकल की हुंदा है कि आपां लड़ पैंदे आं पर बहुत टाइम बाद बोलदे आं जां फिर कदे बोलदे ही नहीं। पर उस वक्त की हुंदा सी जो लड़ भी पैंदे सी ना ते फिर घंटे बाद फिर कुछ हो जाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, असी मन दे विच कुछ भी नहीं सी रखदे ते प्यारे छोटे छोटे बच्चे जेड़े साडे सानू सुन रहे ते जेड़े वड्डे बच्चे भी सानू सुन रहे ओ भी सुन लो कि दिल विच आपां कुछ नहीं रखना है ना। जदों अपनी छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई तो बाद फिर प्यार होर भी वध जांदा ते फिर तुसी लड़ाई भुल के दोबारा तो प्यार करना है छोटे बच्चों की तरह।
1: ते आपां अज स्कूल दी ओह जिंदगी नूं याद करांगे, बहुत सारियां चीज़ां ने जदों चलो अज तां मोबाइल दा युग है क्योंकि अजकल मोबाइल जरूरी है। जदों असीं स्कूल दे विच पढ़दे हुंदे सी ना जी उदों सानूं टीचर कहिंदे हुंदे सी टीवी नहीं देखना, ज़्यादा टीवी नहीं देखना ते इस वक्त जिहड़ा ओह अजकल मोबाइल दा जमाना है, अजकल कहिंदे ने कि मोबाइल नहीं
0: देखना। हां जी बिल्कुल, पर की बच्चे तुसी ये गल मनदे हो अपने टीचर्स दी अपने अध्यापकां दी? बिल्कुल तुसी मननी है गल, क्योंकि जे तुसी ज़्यादा मोबाइल दी वरतों करोगे या टीवी ज़्यादा देखोगे तो तुहाड़ियां अखां ते बुरा प्रभाव पै सकदा है ते तुहाड़ियां जे अखां कमज़ोर हो जाणगियां फिर तुसी पढ़ोगे किवें, वड्डे अफसर किवें बनोगे, है ना।
1: होर गल

0: जी प्रोग्राम चल रहा निके निके तारे ते मैं हाँ थोड़े नाल दीपा छाबड़ा ते मेरे नाल ने
1: अमृत ढिल्लों
0: ते अमृत ते सारे बच्चों तैयार हो जाओ एक सोहनी जी खूबसूरत जी कहानी दे लई। जी प्यारी जी कहानी थोड़े लई मैं लेके आई हूँ। पुराने समय की गल है, एक जंगल दे विच ठंडे ते साफ पानी का तालाब सी। उस तालाब के आले दुआले कुछ खरगोश भी रहिंदे सी। जद भी खरगोशां नूं प्यास लगदी तां ओह उसे तालाब तों पानी पी के अपनी प्यास बुझाउंदे। फिर एक दिन हाथियां दा एक झुंड उस जंगल दे विच आया। हाथी भी रोज़ाना उस तालाब दा पानी पीण लगे। खरगोशां नूं हाथियां दा आउणा चंगा नहीं लग्या। दोस्तों कई बार हुंदा है ना, जदों कोई स्कूल दे विच नवां बच्चा आंदा ते सानूं ओह चंगा नहीं लगदा एक बार, पर बाद च साडी दोस्ती हो जांदी है। पर आपां देखदे हां कि खरगोशां ते हाथियां दा की दोस्ती होई। अच्छा जी, खरगोशां नूं बिल्कुल भी चंगा नहीं लग्या कि उत्थे हाथी आ गए ते, क्योंकि वह अपनी मर्जी नाल हुण पानी भी नहीं पी सकते सी। हाथियां तो उन्हां नूं डर लगता सी ते जदों भी खरगोश तालाब दे कोल जांदे ते उन्हां नूं कुछ हाथी तालाब दे कोल जरूर मिलते। इस लई खरगोश तालाब दे कोल जाण तों झिझकदे सी। इस तों इलावा हाथी उस तालाब नूं गंदा भी कर दिंदे सी। एक दिन सारे खरगोशां ने इस हालत तो छुटकारा पाउण लई आपस विच मशवरा कीता। एक बुढ़े ते बुद्धिमान खरगोश ने कहा, मैं इस समस्या दा हल लभ लिया है। मैं छेती ही एहो जिहा कदम चुकांगा कि हाथी कदे भी तालाब दे कोल नहीं आउणगे। बाकी खरगोशां ने हैरानी नाल पुछया कि ओह किवें। हुण बच्चों देखो, जदों कोई साडा वड्डा बजुर्ग सानूं कुछ कहिंदा है ना कि ये चीज़ मैं इहदा हल कर देवांगा, तो आपां नूं ओह किवें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि साडे बजुर्गां कोल बहुत चंगीआं सलाहां बहुत तजर्बे हुंदे आ ते उस तजर्बे नाल ओह साडी वड्डी तों वड्डी समस्या भी हल कर लैंदे आ। ते उहनां ने कहा, यानी कि वड्डे जिहड़े खरगोश जी सन उहनां ने कहा कि मेरे कोल इक जुगत है ते उहनां दी जुगत दी गल सुण के ओह सारे बेफिकर हो गए। उस रात चौदवीं दा चंद अपनी चमक बिखेर रहा सी। बुढ़ा खरगोश पहाड़ ते जाके उच्ची आवाज विच बोलन लग्या, हाथियों मैं चंद्रमा दा दूत हाँ अते उस वल्लों तुहाडे नाल गल करन आया। चंद्रमा ने हुक्म दिता है कि किसी भी हाथी नू तालाब दे नेड़े दी आग्या नहीं है, क्योंकि तालाब ते खरगोशां दा अधिकार है। चंद्रमा भी खरगोशां दे नाल है, मैं उस दा दूत हाँ अते उस दा सुनेहा तुहाडे लई पहुंचा रहा हाँ। उस खरगोश दी इस तरह दी आवाज़ सुन के एक बारी तां हाथियां नूं लग्या कि ये की हो गया है ना। वह घबरा गए, क्योंकि जदों आपां पूरे होशो हवास दे विच पूरे जोर नाल कोई गल कहने आ ते सामने वाले नूं उस दा विश्वास करना पैंदा। पर उन्होंने कहा कि जेकर तुसी तालाब दे कोल गए तां चंद्रमा तुहानूं अन्ना

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की भी अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को भी श्री मोदी ने धन्यवाद दिया। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। संत श्री रामकृष्ण परमहंस की पुण्यतिथि पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। शतरंज में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिक लाजविक को 2-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: खेल के क्षेत्र में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए।
1: और राजा रमन जी, अब तो ये जाहिर सी बात है कि जब खुद प्रधानमंत्री जी खेल में इतनी रुचि लेते हो तो खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो आप मानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी खुद इतना इंटरेस्ट लेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा तो आएगा ही आएगा।
2: 2014 से ये देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा ही खिलाड़ियों से गेम्स के पहले मिलते हैं, गेम्स के बाद मिलते हैं। खिलाड़ी को पता है कि देश के सबसे बड़ी व्यक्ति का प्यार उनको मिला है, उनके मार्गदर्शन में अच्छे नतीजे आए हैं। चाहे वो टोक्यो ओलंपिक गेम्स की बात क्यों ना हो, पेरिस की बात क्यों ना हो, पिछले बार एशियाई खेलों की बात क्यों ना हो, या कोई भी राष्ट्रमंडल खेल की बात क्यों ना कर ले, खिलाड़ियों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमारा देश हमारे साथ है। जब भारत सरकार का इतना सपोर्ट मिलता है, एक टाइम था जब आपको 3-3 महीने वेट करना पड़ता था, आप अपना प्रपोजल दे रहे और प्रपोजल के 3 महीने बाद आपको पता चला कि क्लियरेंस आधा हुआ है या नहीं हुआ है। आज की तारीख में क्लियरेंस 3 या 4 दिन में मिल जाता है, खिलाड़ी जब मांगता है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और जो सॉफ्ट पावर है खेल, इसको प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, उसका पूरा फायदा भारत देश को मिल रहा है। आप देखेंगे पिछले सालों में भारत का जो स्तर है वो उठता जा रहा है और इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: और मैम जी, हमने अन्य क्षेत्रों की तरह नए भारत में खेल के क्षेत्र में भी बदलाव को देखा है और महसूस किया है। प्रधानमंत्री जी के मैदान से पोडियम तक की सोच और खेलों को भी अन्य क्षेत्रों की तरह महत्व देने की रणनीति का भारत के खेलों पर कितना सकारात्मक असर हुआ है?
0: निश्चित रूप से पहले भी बात कर चुका हूँ उनके विजन की, उनकी दूरदृष्टि की और किस प्रकार से भारत सरकार ने नई योजनाएं ले आई है। खेलो इंडिया और टॉप्स, ये दोनों स्कीम इसी मोटो को चरितार्थ करती हैं जिसको आपने अभी कहा, मैदान से पोडियम तक को, क्योंकि खेलो इंडिया आपको ग्रास रूट क्षेत्र में सपोर्ट प्रारंभ करती है। और ये पहले जो खेलो इंडिया का स्वरूप था, मैं उसको 360 डिग्री सपोर्ट बोलता था, एक खिलाड़ी को, इकोसिस्टम को वो 360 डिग्री सपोर्ट करती थी। अभी जो नई खेलो इंडिया कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश और उनके मार्गदर्शन में पास की है वो 720 डिग्री सपोर्ट है। और टॉप्स को तो मैं तथास्तु स्कीम बोलता हूँ, शायद ही ऐसी योजना कभी भी आई हो कि जिसमें खिलाड़ी जो कि टॉप्स एथलीट है, एलीट एथलीट है, टॉप्स का कोर एथलीट है, वो कुछ भी मांगता है जनरली उसको दिया जाता है। ये इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम इन दोनों योजनाओं ने खड़ा किया है कि आज खिलाड़ियों के लिए किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे और किसी भी करियर के उनके किसी भी पड़ाव पे जो समस्याएं हैं उसका कोई असर नहीं होता है
1: जी। और राजा, एक कहावत बड़ी मशहूर हुआ करती थी या है भी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। क्या आज भी ये कहावत सच दिखती है? अगर नहीं तो आम लोगों के बीच खेलों को लेकर सोच में कितना और कैसा परिवर्तन आपने महसूस किया?
2: रविंद्र, पूर्ण रूप से बदल चुका है। आज की तारीख में आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब वाली बात है, ये मेरी बात नहीं प्रधानमंत्री जी की बात है। और ये सच है कि खिलाड़ी को आज पता है, खिलाड़ी के घर वालों को पता है कि आप खेल के माध्यम से अपना पूरा जीवन संभाल सकते हैं। आपको पढ़ाई की जितनी जरूरत थी वही जरूरत आज खेल की महसूस हो रही है लोगों को। अगर आप एक्सेलेंस की ओर बढ़े जा रहे हो तो आप पढ़ाई शायद कम कर लें, लेकिन आप खेल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के दिल को जीत सकते हैं, राज कर सकते हैं। ये कई खिलाड़ियों को समझ आ गया है। और अगर हम खेलो इंडिया मिशन, जो नई मिशन पिछले दिनों लॉन्च हुई है, उसकी अगर बात करें तो पिछले खेलो इंडिया स्कीम से अगर कंपेयर करते हैं तो 8 गुना पैसा बढ़ा है 5 सालों में, करीब 36,000 करोड़ की बात हो रही है। ये कम पैसे नहीं होते धर्मेंद्र। एक देश की सरकार अगर जुड़ जाता है खेलों के साथ इस तरीके से, जाहिर सी बात है कि आगे ही बढ़ेगा देश, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे एथलीट का डेवलपमेंट हो, चाहे कोचेस का डेवलपमेंट हो, चाहे सपोर्ट स्टाफ का या स्पोर्ट्स साइंस की बात करें, हर तरीके से आगे बढ़ने की बात हो रही है। अगर हम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं और पूरा फायदा उठाते हैं इस स्कीम का, तो भारत 2036 के जो ओलंपिक गेम होपफुली भारत में ही आयोजन होंगे, वहां पे अच्छा प्रदर्शन, अच्छे नतीजे, 20 मेडल उनके आसपास या टॉप 5 वाली पोजीशन का पूरा उम्मीद लेके बैठ सकते हैं
1: जी। तो मैं जी, पहले हमारे खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंचते थे लेकिन पोडियम तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। इसकी वजह खेल संसाधनों की कमी थी, मैदान की कमी थी और साथ ही साथ खेलों के जरिए नौकरी ना मिल पाने की एक जो सोच थी वो बड़ी समस्या थी। बहुत से बच्चे इन दुश्वारियों के चलते चाहकर भी खेलों की तरफ नहीं जा पाते थे, करियर नहीं बना पाते थे। अब नए भारत में इन बुनियादी मुद्दों पर कितना काम हुआ है?
0: मैं तो ये बोलूंगा कि आपने जो पहली लाइन बोली कि खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंच जाते थे, वहां से ही शुरू करता हूं, एक्चुअली मैदान तक भी नहीं पहुंच पाते थे। वजह ये थी कि अगर आप एनालाइज करें, विश्लेषण करें,

0: हैं तो आप ये पाएंगे कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में हमारे करीब 750 से थोड़े से ऊपर डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी जगह खेलों का एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। खेलो इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से उद्भूत ये योजना है, इसमें सबसे पहले ये कमी महसूस की गई कि सारे जगहों पे सारे स्थानों पे कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। तो ये तय किया गया कि हर जिले में हम कम से कम एक खेलो इंडिया सेंटर खोलेंगे। खेलो इंडिया सेंटर वो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होगा, वो जगह होगी जहां पे खिलाड़ी आएगा और खेलेगा। कम से कम 25 खिलाड़ी वहां पे खेलेंगे एक पर्टिकुलर खेल का, हर जगह पे एक एक खेल का हम सहायता देंगे। तब ये दूसरा भी प्रश्न आया कि भाई इतने कोच हैं, कोच ही नहीं थे, तो जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको पास्ट चैंपियन एथलीट बना करके उनको एम्प्लॉय किया गया, उनको बतौर कोच इन खेलो इंडिया सेंटर्स में रखा गया, तो पुराने खिलाड़ियों को भी रोजगार मिला। तो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ हर जगह पे, ग्रास रूट पे। दूसरी बात यह है कि सिर्फ ग्रास रूट पे करने से तो काम चलेगा नहीं, थोड़ा एलीट लेवल पे भी होना चाहिए। तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हर राज्य की राजधानी, हर यूटी की राजधानी में ये खड़ा किया गया। भारत सरकार ने इसका पैसा दिया और इसमें स्पोर्ट्स साइंस जो अब तक भारत के खेलों में सम्मिलित नहीं होता था उसमें बहुत बड़ा एक निवेश था। इसमें स्पोर्ट्स साइंस के जो जितने पद होते थे भारत सरकार सभी का पे देगी और इत्यादि इत्यादि मशीनें देगी,
1: जी
0: उसका सामान देगी। तो एक एलीट सिस्टम भी खड़ा हो गया। भारत सरकार को यह भी गुमान था कि सारा कुछ वही नहीं कर पाएगी, तो कुछ लोग प्राइवेट लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनको खेलो इंडिया अक्रेडिटेड अकेडमी बनाया गया। तो इस प्रकार से एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ। अब ये खिलाड़ी खेलेंगे तो इनको खेलने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अनुभव वाला एक हमें खेल का प्रतियोगिता देनी चाहिए। तो खेलो इंडिया गेम्स का एक सिस्टम शुरू हुआ, यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम, विंटर गेम, पैरा गेम। विंटर गेम मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से पहले जब से ये शुरू हुआ है खेलो इंडिया में, भारत में कोई जानता नहीं था विंटर गेम। नेशनल गेम्स तो होते हैं, ओलंपिक और एशियन गेम्स के साथ पैरा गेम्स भी होते हैं, परंतु ये प्रथा नहीं थी। और ये पैरा गेम्स शुरू हुआ खेलो इंडिया में, वो भारत में एक तरह से नेशनल गेम है पैरा स्पोर्ट्स में। तो अब यहाँ से खिलाड़ी जो खेले, जिनको हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव दिया, अपनी कम्पिटेटिव स्किल को निखार सके, उनको एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी, खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में एंड डेवलपमेंट वाले वर्टिकल में से उन्होंने उसमें से प्रतिभाशाली खिलाड़ी चुने, उन खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट बनाया, जिनको 10,000 रुपए आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस और जहां पे ट्रेनिंग करते हैं उनको वित्तीय सहायता करीब 6 लाख की वो भारत सरकार ने दिया। 360 डिग्री सपोर्ट था, ये वो सिस्टम है। अब इसी में से जो खिलाड़ी उन्नति किया वो टॉप्स जैसे सुपर एलीट लेवल पे आ गया। टॉप्स में एलीट खिलाड़ी जो मांगता है जनरली वो मिलता है। अब नए वाले सिस्टम में क्या है, 720 डिग्री सपोर्ट कैसा है, पहले जिन चीजों की चिंता की थी उससे आगे बढ़ गए। हमने देखा कि आईटी सपोर्ट नहीं है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को नहीं है, साई को नहीं है, तो इसमें नए वाले खेलो इंडिया में आईटी सपोर्ट का एक वर्टिकल खड़ा हुआ। सबसे बड़ी समस्या इस देश में है कोच की, कोच कहाँ है और स्तरीय कोच कहाँ है। तो कोच का विकास के लिए एक कोच डेवलपमेंट एंड सपोर्ट स्टाफ डेवलपमेंट का वर्टिकल खड़ा हुआ। तो सिर्फ कोच की बात नहीं है, स्पोर्ट साइंस जिसकी मैंने अभी बात की उसका पूरा एक सिस्टम खड़ा होगा, इको सिस्टम खड़ा होगा। उसमें लोग खड़े होंगे, वैज्ञानिक खड़े होंगे, बायो मैकेनिक्स खड़ी होगी, मैसर खड़ा होगा, न्यूट्रिशनिस्ट खड़ा होगा। अब ये पूरा एक सिस्टम जो है बन के आ रहा है। और ऑन टॉप ऑफ दैट खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने, जो एक वर्टिकल है खेलो इंडिया का, उसने पूरे देश में जो अधोसंरचना रचना है उसकी एक समझ लीजिए उसमें क्रांति ला दी है। पूर्व में 300 से भी अधिक अधोसंरचनाएं खड़ी हुई थी, नए वाला जो खेलो इंडिया है इसमें और ज्यादा इसमें सपोर्ट है और त्रिस्तरीय सपोर्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हमने पहले खेलो इंडिया सेंटर की ही बात की जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात की, अब नए वाले में स्कूलों में भी खेलो इंडिया सेंटर होंगे। स्कूल में न बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि खेलेंगे भी और भारत सरकार उसको फंड करेगी ऐसे खिलाड़ियों को। साथ ही साथ और बहुत से कॉलेजेस उनको भी खेलो इंडिया सेंटर या सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना पाएंगे हम लोग। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम खड़ा हो रहा है। पहले तो मैदान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अब न सिर्फ वो मैदान पे पहुंचेंगे बल्कि अपनी खेल प्रतिभाओं को कंपटीशन और लीग से निखारेंगे, उनकी प्रतिभाओं का सम्मान होगा, टैलेंट स्काउट होंगे, कम्युनिटी कोच होंगे जो उनकी प्रतिभाएं देखेंगे, ग्राम स्तर पे भी देख पाएंगे क्योंकि कम्युनिटी कोच और जो टैलेंट स्काउट है वो ग्राम ग्राम स्तर तक जा सकेंगे। जोनल टैलेंट सर्च कमेटी बनेगी और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी तो पहले से थी। तो इस प्रकार से ये पूरा एक इको सिस्टम खड़ा हो गया है जिसने भारत के खेल जगत को एक क्रांति उसने कर दी है।
1: बिल्कुल क्रांति आई है। और जो खिलाड़ियों के ऊपर मानसिक दबाव हुआ करता था कि खेल के मैदान नहीं है, सुविधाएं नहीं है, वो सारे दबाव उनके मन से हटे हैं। और हमने बहुत सारी गंभीर बातें कर ली हैं और इन गंभीर बातों के बीच अब थोड़ा सा मूड को हल्का किया जाए और हम जानना चाहेंगे कि आपको वो कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं। और अगर अभी हम

0: को सुनाना चाहें तो वो कौन सा गीत होगा?
1: एक्चुअली मैं बचपन से बहुत सारे गाने सुनता हूँ. अगर आप उनमें से एक सुनने को बोलते हैं तो वो मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे बहुत पुराना गाना याद आ रहा है, किसी की मुस्कुराहटों पे वो निसार. मैं तो कुंदन लाल सहगल इरा से अभी अरिजीत सिंह के इरा तक के गाने सुनता हूँ, तो वही मुझे पहले दिमाग में स्ट्राइक किया है.
0: तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: और इस सुमधुर गीत के बाद फिर लौटते हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात और अपने विषय मैदान से पोडियम तक की तरफ। और राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पीवी सिंधु की जापान की सफलता का जिक्र किया और वो जीत सचमुच अविस्मरणीय रही, क्योंकि किसी भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन में ट्रॉफी जीती है। सिंधु की ये जो जीत रही, इसने ट्रॉफी का जो एक लंबे समय का उनका सूखा था, न सिर्फ उसको खत्म किया बल्कि एक उम्मीद भी जगाई है। उनकी इस सफलता से आप कितने प्रभावित हुए हैं?
1: कोई भी खिलाड़ी जब ऐसा प्रदर्शन करता है या करती है, जाहिर सी

0: बात है, देश का हर वो व्यक्ति खुश हो जाता है, खास करके पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ी की बात करें, क्योंकि आप देखिए उनके पास 5 विश्व चैंपियनशिप के मेडल्स हैं, वो चैंपियन भी रही है, उसके अलावा उनके पास 2 ओलंपिक पदक भी है और बेहतरीन खिलाड़ी रही है, कई सालों से भारत का रिप्रेजेंटेशन करते आई है और 2 साल से उनके पास कुछ था नहीं दिखाने के लिए, सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, फर्स्ट राउंड में जब हार एक खिलाड़ी के पीछे लगातार पड़ जाती है तो उस खिलाड़ी के अंदर शंका पैदा हो जाती है कि एम आई गुड इनफ, क्या मैं अभी भी अच्छा खिलाड़ी हूं, क्या मैं कुछ कर सकती हूं। वो शंका को दूर करने वाली बात हो गई टोक्यो में, और जापान में जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि रही है सिंधु के लिए। शादी के बाद एक महिला खेल सकती है, उन्होंने दिखाया है, टोटल फोकस के साथ दिखाया। हम सबके लिए एक सबक है कि किसी को राइट ऑफ ना करें, शायद उनमें से मैं भी था कि सिंधु पे डाउट होने लग गया कि सिंधु अभी आगे करेगी क्या, सिंधु के बाद कौन होगा, ये सारे सवाल आ गए थे, लेकिन सिंधु ने एक बार फिर अपने और ध्यान को आकर्षित किया है, टेरिफिक परफॉर्मेंस, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सिंधु एक प्रेरणा है और हमेशा रहेगी।
1: जी, और मैंग जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि सिंधु से हम लगातार सफलता की उम्मीद करते हैं, एक आदत सी हो गई उनकी सफलता की, उनकी ट्रॉफियों की। पिछले कुछ वर्षों में अगर हम खासतौर पर पिछले 2 साल की बात करें तो वो पीक पर अपने नजर नहीं आ रही थी, तो ऐसे में जापान ओपन की ये जो कामयाबी है उनकी वापसी की तरफ इशारा करती है, या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि देश के लिए वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुकी।
2: नहीं, बिल्कुल मैं राजा राम जी की बात से सहमत हूँ, इसको वापसी ही मानेंगे हम लोग तो, बिल्कुल मानते हैं। और मैं आपको कुछ अंदरूनी जैसी बातें बता सकूं तो सिंधु बहुत फोकस्ड प्लेयर है,
1: जी
2: और सिंधु की जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो तो वो लाजवाब है, मानसिक क्षमताओं में भी उसके अंदर बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है, उसका फोकस बहुत बड़ा है। फोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हमारा बेंगलुरु केंद्र है, रीजनल सेंटर, वहां के जो स्पोर्ट्स साइंस सेटअप है, मैंने एक बार वहां पे देखा था, सिंधु आई थी, उनका फोकस एकदम क्लियर है कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, इसका क्या है। उन्होंने बकायदा चेकअप कराया, उसका एक सोल्यूशन निकलवाया और उस चीज पे वर्क किया। तो अगर ये खिलाड़ी इतने अनुभवी होने के बाद ये इस स्तर पे स्पोर्ट्स साइंस के लेवल पे चीजें सोच रहे हैं, तो ये उनका फोकस, उनका एक ये दिखाता है कि वो उसमें पूरी तरह से रमे हुए हैं। मुझे लगता है कि सिंधु में अभी मतलब Elite 28 तक मुझे वो काफी सक्रिय और काफी सक्सेसफुल दिखाई देती हैं।
1: जी, और अगर रमन जी, साल 2028 ओलंपिक ईयर है, ऐसे में 31 साल की 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु के लिए टूर्नामेंट को चूज करना और अगले 2 सालों तक फिटनेस को बनाए रखना कितना जरूरी है?
0: बहुत जरूरी है धर्मेंद्र, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि प्लेयर के सामने चुनौती है, लगातार टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं रैंकिंग पॉइंट्स जमाने के लिए और
1: जी
0: रैंकिंग बना के रखने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि ओलंपिक गेम्स में क्वालिफिकेशन रैंकिंग के बदौलत होती है, अगर आप टॉप 16 में है तो आपका गारंटीड स्पॉट बन जाता है, उसके बाहर होते हैं तो मुश्किल होता है आपका क्वालिफिकेशन, क्योंकि कम खिलाड़ियों को बुलाते हैं, कुछ कोटा देना पड़ता है, या तो फिर आप एशियन गेम्स जीत के दिखा दें, या फिर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बने, या फिर टॉप रैंकिंग में बने रहे। तो सिंधु के सामने एक चुनौती रहेगी कि अपना रैंकिंग बना के रखना होगा और इसके लिए लगातार खेलते रहना पड़ेगा उन्हें, और दिस इज अ चैलेंज, क्योंकि एक तो उम्र उनका बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनके अंदर जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में चैनलाइज करके सिंधु इज फेसिंग द चैलेंजेस, और मुझे पूरा विश्वास है कि लॉस एंजलिस 2028 तक वो रैंकिंग भी बना के रखेगी और फिर वहां पे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भी करेगी।
1: बैडमिंटन से जुड़ा एक और सवाल है कि भारत में जो है बैडमिंटन की बेहद मजबूत परंपरा रही है, उस परंपरा को खासकर महिला बैडमिंटन के जरिए साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने एक बड़ा ऊंचा मकाम दिया है, उस स्तर को बनाए रखने के लिए बैडमिंटन की नई पौध मयंक जी कितनी दमदार दिखाई देती है?
2: बैडमिंटन में बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं। आपने तो केवल महिला खिलाड़ियों की बात की, पर मुझे लगता है कि पुरुष खिलाड़ी भी इसमें कम नहीं है। बहुत सारे अभी खिलाड़ी, Under 18 हालिया एक टूर्नामेंट हुआ है, उस टूर्नामेंट में उस Under 18 प्लेयर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बॉडीली भी वो बहुत अच्छा एडवांटेजियस पोजिशन में है। इसके अलावा जो आपने बात की कि महिला खिलाड़ी विशेष रूप से ज्यादा उनके अंदर संभावना है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। मैंने जितना इन लोगों का प्रदर्शन देखा है, न सिर्फ प्रदर्शन की बात है, जिस प्रकार से अपने खेल को ये अप्रोच करती हैं, जिस प्रकार से अपने खेल को सीरियसली लेती हैं और जिस प्रकार से इनका फोकस है, ये सभी खिलाड़ी, मेरा काडर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के ऐसे खिलाड़ियों को देख करके, अभी गुवाहाटी कुछ दिन पहले मैं गया था जहां पे एक बहुत अच्छी एकेडमी है और कोरियन, रशियन और मलेशियन कोच वहां पे हैं, जिनके भाई जो है BAI, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो वहां पे ट्रेनिंग कराती है अपने प्लेयर्स को। तो इनका फोकस देखकर, उनका प्रोफेशनलिज्म देख करके और उनका अम्बिशन देख

0: करके मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आगे आने वाले समय में मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि एशियन गेम्स में कुछ सरप्राइज भी हो जाए। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाला जो ओलंपिक है उसमें भी कुछ सरप्राइज हो जाए।
1: मैं आपको बता दूं,
0: जी
1: उन्नति हुडा जैसे प्लेयर उभर कर आई है, अस्मिता चलिहा जैसे प्लेयर उभर कर आई है, और न सिर्फ सिंधु और साइना नेहवाल की बात कर सकते हैं, हम ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोन्नप्पा की भी बात कर सकते हैं, और गायत्री गोपीचंद और ट्रिशा जॉली, ये भी दुनिया में अच्छा प्रदर्शन देते आए हैं। खिलाड़ी को चोट लगता है, कुछ खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं, लेकिन भारत का बैडमिंटन बहुत अच्छे हेल्थ में है। मेरा ये मानना है कि हमें हमेशा डाउट होता है कि सिंधु के बाद कौन, लेकिन ये युवा खिलाड़ी आई है, ये जवाब दे रही है हम सबको।
0: मैं इसमें चिराग और उसको भी हम लोग राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं।
1: सात्विक साईराज को,
0: सात्विक और चिराग को आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं।
1: लक्ष्य
0: वो
1: सेन खेल ही रहा है अच्छे से।
0: लक्ष्य सेन भी अच्छा खेल रहा है और अभी भले उसकी कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि उसने, लेकिन ही स्टिल इन द फ्रे एंड चिराग और ये लोग तो बहुत अच्छे उसमें हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एशियन गेम्स में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, हम लोग बिल्कुल इसका एक मुजाहिरा जरूर देखेंगे वहां।
1: बिल्कुल। अब आगे बढ़ने से पहले एक गीत सुनते हैं। राजा, अब आप बताइए कि आपकी पसंद का वो कौन सा गीत सुना जाए।
2: मयंक जी ने मुकेश जी का गाना चुना था, मैं भी मुकेश जी का ही गाना चुनूंगा। मेरे से भी पहले एक गाना था जो आज भी मेरे ख्याल से हम सबके लिए रेलेवेंट है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
1: वाह क्या बात है।
3: वो तो

0: है।
1: दोस्तों, इस गीत के बाद कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आपका फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात में खेलों के बारे में की गई चर्चा की। हमारे आज के दो मेहमान हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक और IPS मयंक श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लॉर्ड्स मैदान में खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम की शानदार सफलता का जिक्र किया था। इसे उन्होंने भारतीय

0: टीम की 1983 की विश्व कप की विजय से जुड़ा। ये जुड़ाव स्वाभाविक भी है क्योंकि उस कामयाबी के बाद हमने दुनिया को अपनी क्रिकेट महाशक्ति होने का एहसास कराया था। महिला टीम की टेस्ट क्रिकेट में ये जीत उसे इस लॉन्ग फॉर्मेट का सुपर बनाने की दिशा में कितना मदद करेगी?
1: बहुत ज्यादा। मुझे ये लगता है कि भारत कई सालों से महिला क्रिकेट की अगर बात करें तो टेस्ट मैचेस की ओर ध्यान नहीं दिया था, और लॉर्ड्स में जाकर टेस्ट मैच खेलना और पहले ही मैच में मेजबान इंग्लैंड को पराजित करना, ये बहुत बड़ी बात है और दिखाता है कि हमारी महिला टीम के अंदर जो जोश है, जो ऊर्जा है, जो बिलीफ है, जो एक स्वाभिमान वाली बात है, ये बहुत अच्छी बात है तो देखने को मिला है। वहां पे शतक भी जड़े हैं हमारे खिलाड़ी, 5 विकेट्स इन एन इनिंग्स वाली भी बात हुई है। अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहला ही मैच जीतना, हालांकि कंपैरिजन गलत होगा, लेकिन पुरुष टीम की अगर बात करें, कई साल लग गए भारतीय पुरुष टीम को टेस्ट मैच जीतने में लॉर्ड्स में, और महिलाओं ने वो कर दिखाया कि हम इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड को हराएंगे।
0: राजा, वनडे विश्व कप जीतने और लॉर्ड्स में ऐतिहासिक टेस्ट जीत के बाद महिला टीम की सोच और अप्रोच में कितना बदलाव आया है और कितना बदलाव आना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि भारतीय महिला टीम में सोच और अप्रोच दोनों सही थे, लेकिन अब विश्वास बढ़ जाएगा कि हम दूसरे देश के मैदान में, वो भी सर्वश्रेष्ठ मैदानों में से माना जाता है, इट इज नोन एज द होलीएस्ट ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, वहां पे जाके जीतना पहले ही मैच में, टीम का हौसला बुलंद हो जाता है। पहले से बुलंद है, विश्व चैंपियन रही है भारतीय टीम, लेकिन इंग्लैंड में जाकर जीतना हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक स्पेशल मीनिंग आ जाता है कि ब्रिटेन में जाके इंग्लैंड को हराना, देयर इज अ स्पेशलिटी टू इट। और मुझे लगता है कि महिला टीम ये कर दिखाई है, और फिर उनके अंदर जो हौसला अफजाई चाहिए था उन्हें, खुद उन्होंने ढूंढ के निकाला है और फिर सबको दे भी दिया है।
0: और मयंक जी, प्रधानमंत्री जी ने खेल के मैदान पर नारी शक्ति का भी अपनी बातों में जिक्र किया, ये स्वाभाविक भी है क्योंकि नारी शक्ति की वजह से ही हम ग्लासगो में 13 गोल्ड मेडल जीतकर मेडल टैली में चौथे स्थान पर पहुंच सके, और उसमें 8 गोल्ड मेडल महिलाओं के थे। यानी हम कह सकते हैं कि हम खेल महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमारी नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है।
2: ये बात न सिर्फ मौजूद है, रेलेवेंट है, बल्कि ये बात बहुत, एक तरह से कह लें कि ये टैक्ट फुलनेस की भी बात है, ये एक रणनीति की भी बात है। मैं ऐसे ही एक बार अध्ययन कर रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, जो कि ओलंपिक खेलों में पहले दूसरे उस पर रहते हैं, इनका क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनके स्वर्ण पदकों का, और मैंने पाया कि इनके अधिकतर जो पदक हैं वो महिला खिलाड़ी जीत रही हैं। और कुछ ऐसा अभी भी पूरे विश्व में जो वातावरण है, खेल परिदृश्य जो है, मैं समझता हूं कि भारतीय महिला खिलाड़ियों का जो अभी पूरी क्षमता का निर्माण नहीं हुआ है, अब ऑब्वियसली उसमें लग गए हैं, और इसमें बहुत स्कोप है। हमने यदि महिला खिलाड़ियों को सशक्त कर दिया और उनको अच्छी ट्रेनिंग दे दी, तो निश्चित रूप से हमारा वो जो लक्ष्य है कि हम 2036 तक पहले 10 खेल महाशक्ति होंगे, वो बिल्कुल संभव है। और आपने जो उदाहरण दिया, निश्चित रूप से वो एक फैक्ट तो है ही है कि 13 में से 8 मेडल जो है वो महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं। आप अगर विश्लेषण कीजिए पिछले कुछ सालों में रेसलिंग में, जो कि हमारी वैसे भी ताकत रही है, और हमारा पहला जो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक में, वो भी रेसलिंग में मिला था, पुरुष खिलाड़ी ने दिया था, पर अगर आप अभी आप देखें तो महिला रेसलर्स जो हैं उनके अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं, महिला बॉक्सर्स उनके अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं। सबसे बड़ा सुखद क्षण मुझे लगा इस कॉमनवेल्थ में वो जूडो में खिलाड़ियों का आगे आना। जूडो एक ऐसा खेल है कि जिसमें हम लोग संभवतः पहली बार ऐसे मेडल जीते हैं, और उसमें भी महिला खिलाड़ियों का ही प्रमुखता रही है, और ये बहुत ही अच्छा एक सुखद संकेत है आगे आने वाले समय के लिए। तो निश्चित रूप से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और ये मेरा मानना है कि महिला खिलाड़ी न सिर्फ अभी योगदान दे रही हैं, बल्कि आगे भी हमारे खेल परिदृश्य में बहुत अच्छा योगदान करने वाली हैं।
0: और राजा, खेलों को आम जन से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी छोटी जगहों और छोटी घटनाओं का भी जिक्र करते रहते हैं, जैसा कि उन्होंने केरलम के एर्नाकुलम के एक स्कूल के संस्कृत शिक्षक की फुटबॉल पहल का जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरक उदाहरण आम लोगों के मन में खेलों के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए कितने अहम होते हैं?
1: बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो खेल की ओर ध्यान देते हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है 2020 का, और जो अभी स्पोर्ट्स का पॉलिसी बना है, इसमें खेल और पढ़ाई दोनों को मिलाने का, मिश्रण बनाने का एक प्लान है, तब जाके भारत का खेल आगे बढ़ेगा। और उनका ध्यान देखिए एक अध्यापक पे गई है, जहां पे वो संस्कृत को यूज करते हुए खिलाड़ियों को फुटबॉल खेलने में प्रोत्साहित करती है। हालांकि केरला में फुटबॉल के लिए कमी नहीं होती है, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है, लेकिन एक और महिला है जो साड़ी पहनकर कोचिंग करती है, फुटबॉल की ही बात

0: करें, अगर हालांकि कईयों को पता नहीं है ये, अगर हम विश्व में रैंकिंग की बात करें, हमारे महिला टीम फुटबॉल की टीम की बात कर रहा हूं मैं, उनका बहुत बेहतर रैंकिंग है व्हेन कंपेयर टू मेन, और हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं इस बात को। बहुत बेहतरीन प्लेयर्स आए हैं, और जाहिर सी बात है कि एक अध्यापक अगर संस्कृत को लेके खिलाड़ियों को संस्कृत और खेल दोनों को मिला के एक अच्छा मैसेज, और ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंची है
1: जी
0: और ही हैज ओनली एलाबोरेटेड इट, और ये अच्छी बात है, और भी अध्यापक में एक जोश और ऊर्जा पैदा हो जाएगा कि हम भी कुछ ऐसा करें ताकि उनकी नजर हम पे भी पड़े।
1: जी सवालों और जवाबों का ये सिलसिला तो जारी रहेगा, फिलहाल बारी है एक और गीत की। बहन जी, अपनी पसंद का एक और गीत बताइए।
2: इस बार थोड़ा सा नया गीत बजाता
1: जी
2: हूं। दिल समझ जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू।

0: और इस गीत के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी की बात पर लौटते हैं, जो देश में खेलों के विकास और भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए बेहद गंभीर हैं। इसी का नतीजा है कि अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, साथ ही 2036 में हमारी ओलंपिक मेजबानी की भी योजना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ संशोधित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी है। मैंग जी, इस संशोधित खेलो इंडिया योजना का प्राइमरी लॉन्ग टर्म गोल क्या है और जो पैसों का आवंटन है वो किस तरह से किया गया है?
1: संभवतः हमारी किसी बात में ये जिक्र आया था कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 2036 तक हम खेलों में प्रथम 10 स्थानों पर रहने वाले देश बन सके, 2047 तक हम प्रथम 5 देशों में से एक हों, ऐसा एक बृहद लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जैसा मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा खेलो इंडिया जो योजना है उसके बारे में बताया था कि कैसे वो 720 डिग्री सपोर्ट देती है और 360 डिग्री सपोर्ट के आगे वो कोच की भी बात करती है, स्पोर्ट्स साइंस की भी बात करती है, आईटी सपोर्ट की भी बात करती है, हर जिले में और स्कूलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल की बात करती है, इसके अलावा जो राज्य के साथ भागीदारी में अधोसंरचना की बात करती है जिसमें केंद्र सरकार 60% योगदान देगी और राज्य सरकारें 40% और नॉर्थ ईस्ट में 90% तक का योगदान भारत सरकार देगी। इसी प्रकार से एक ट्रेनिंग इकोसिस्टम खड़ा किया गया जिसमें साई के जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अंग है, एनसीओई, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, साई ट्रेनिंग सेंटर्स, इन सब का भी एक पूरा एक वो चलेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं पहले बात किया था कि आईएससी ओकेआईसी वो तो रहेंगी, तो एक पूरा एक अधोसंरचना, पूरा एक सपोर्ट सिस्टम हर क्षेत्र में इसमें आ गया। जहां तक पैसों के आवंटन का प्रश्न आपने किया है, तो पैसों का आवंटन अभी इसको बोल सकते हैं कि अभी फ्लूइड है और आवश्यकता अनुसार इसमें किया जाएगा, जो एक तरह से कह लें कि एलोकेशन इसमें आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। निश्चित रूप से जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी एलिमेंट है उनमें चूंकि उसका संगठन ऐसा होता है कि उसमें पैसा ज्यादा लगता है, तो निश्चित रूप से वहां पे ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन जो लक्ष्य है वो है ट्रेनिंग में खर्चा करने का, एथलीट के ऊपर खर्चा करने का और अकेडमिक या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बनाना है उसमें खर्चा करने का।
0: जी, तो राजारमन जी, खेलो इंडिया के नए स्वरूप के तहत खिलाड़ियों को मिलने वाले साइंटिफिक ट्रेनिंग में बदलाव की कितनी आवश्यकता है, जैसे कि चर्चा कर रहे थे कि ट्रेनिंग भी एक फोकस विषय है इस संशोधित खेलो इंडिया का।
2: धर्मेंद्र, जितना भी मैं खेला हूँ और देखा हूँ, करीब 50 साल तो हो गए होंगे इन सबको, स्पोर्ट्स साइंस का बहुत जरूरी होता है। अभी तक बहुत कम यूज हुआ है स्पोर्ट्स साइंस, हम सिर्फ एलीट लेवल पे यूज करते आए हैं स्पोर्ट्स साइंस को। मयंक जी ने कोचिंग की बात की, कोचेस हमारे पास कम है जो विश्व स्तर का कोचिंग कर सकें, जो स्टैंडर्ड कोचिंग करें, ताकि जो खिलाड़ी मैदान में सीखता है, बेसिक्स जहां पे उसके पढ़ते हैं, फंडामेंटल जहां पे आते हैं, अगर वहां से उठना है तो वो फंडामेंटल सही पढ़े। फाउंडेशन अगर सही गिरता है, नींव अगर सही पड़ता है, तो आगे चल के वो स्टार बन सकता है। धर्मेंद्र, आप भी सुन चुके होंगे, मैं भी सुनता हूँ, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोचेस आते हैं वो कहते हैं कि आपका टेक्निक ही गलत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिखाना पड़ता है कि टेक्निक कैसे सुधारा जाए। अगर हम इस पे फोकस करते हैं, और अब फोकस आ रहा है, कोचिंग और स्पोर्ट्स साइंस दोनों में फोकस आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो खेलो इंडिया के ट्रेनिंग फैसिलिटीज होंगे हर जिले में होगा और हर स्कूल में शायद एक अच्छा सा कोच होगा जो स्पोर्ट्स साइंस को समझ सके। जब तक आप इसको जोड़ नहीं लेते हैं, आपके खिलाड़ियों को भी समझ नहीं आता है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से झिझकते हैं,

0: कि वो कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास हम क्यों जाएं, हमें कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी तो नहीं है। ये सब बदल रहा है और ये नया देश देखने को मिल रहा है। हमारे खिलाड़ी फियरलेस होते जा रहे हैं, उनके अंदर जो डर था वो दूर हो रहा है और वो चाहते हैं कि दुनिया को जाके कॉन्कर कर कर आए और फिर अपने घर में राज करें। दे आर सेलिब्रेटेड और हम क्यों ना पूजे उनको। वो ऐसे इंसान है जो विदेश में भी हमारे झंडा को लहरा के आते हैं। बहुत कम लोग कर सकते हैं ये काम और खिलाड़ी ही करते हैं, लगातार करते हैं। क्या कहूं, राष्ट्रगान जब बजता है विथ द फ्लैग गोइंग अप, चाहे वो ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स हो, रोंगटे खड़े होते हैं और ये खिलाड़ी ही कर सकता है। अगर 20 मेडल चाहिए, 30 मेडल चाहिए, हमें चाहिए कि ग्रास रूट में स्पोर्ट्स साइंस लाए। और ये खेलो इंडिया मिशन का एक बहुत अच्छा फोकस है कि कोचिंग भी सही हो और फिर स्पोर्ट्स साइंस भी सही हो।
1: मैन जी, इस संशोधित योजना में प्रतिभाशाली एथलीटों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता के लिए क्या कुछ नए नियम बनाए गए हैं?
2: जहां तक नियमों का सवाल है, नियम तो लगभग वही रहेंगे। नियमों से परे जो चीज हुई है, जो क्रांति इसमें हुई है, पहले हम मात्र 3,000 खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट बनाते थे और उनको आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस और जहां पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन संस्थानों को वित्तीय सहायता देते थे। अब ये संख्या बढ़ के 30,000 हो जाएगी।
1: जी
2: 30,000 लोगों को वित्तीय सहायता मिलेगी, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस मिलेगा। वो जिन संस्थानों में अभ्यास करते हैं उन संस्थानों को इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में और अनुकूल सहायता देने के लिए वो जो वित्तीय सहायता थी वो मिला करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 8 गुना वृद्धि हुई है टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन में और 10 गुना वृद्धि हुई है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बकेट में। 10 गुना अधिक खिलाड़ियों को डायरेक्ट सपोर्ट हम बोल सकते हैं कि मिला करेगा।
1: स्पॉन्सरशिप बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन जैसा कि मयंक जी ने बताया कि जो स्कॉलरशिप है उसके लिए खिलाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई है, इसका कितना पॉजिटिव असर खेलों पर खिलाड़ियों पर पड़ेगा?
0: बहुत ज्यादा पड़ेगा और एक विश्वास बढ़ जाएगा खिलाड़ी के अंदर। और जो हमेशा डाउट रहता है कि अगर मुझे चोट लग गया, मैं बीमार हो गया या खेल से बाहर हो गया तो मेरा क्या होगा, इस सवाल का जवाब अब शायद मिलने लगा है खिलाड़ी को। वो निडर होके खेलने लगे हैं धर्मेंद्र। और मुझे लगता है कि जो खेलो इंडिया का स्कॉलरशिप स्कीम है, अगर 3,000 से बढ़कर 30,000 खिलाड़ी तक जा रहा है
1: जी
0: तो आपका जो बेस है वो और ब्रॉड होता जा रहा है। मुझे लगता है कि क्रीम और बेहतर होगा आगे चल के। 2036 की ओर ध्यान है, आज शुरू करना चाहिए और शुरू हो गया है। अच्छे नतीजे आएंगे, वी विल सी वेरी गुड रिजल्ट। और मेरा ये मानना है कि हर वो एंगल कवर्ड है, पॉजिटिविटी भरा हुआ है देश के अंदर और खिलाड़ियों के अंदर और भी ज्यादा हुआ है। मेरा ये मानना है कि अगर उसको सही दिशा दे, सही चैनलाइज करें तो हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खेल के देशों में हम एक जरूर बन सकते हैं।
1: और मैं जी, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो हमने खेलो इंडिया स्कीम से निकले खिलाड़ियों का जलवा देखा। ढेर सारे मेडल खेलो इंडिया के खिलाड़ियों की तरफ से आए। जो प्रदर्शन रहा है अद्भुत रहा है, क्या कहेंगे?
2: बिल्कुल, वो जो आपने शुरू में एक स्लोगन कहा था मैदान से पोडियम तक का, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दिया गया था आपने उसे दोहराया। तो ये खेलो इंडिया इस कॉमनवेल्थ गेम में आप बिल्कुल उसको फलीभूत होते हुए देख पाएंगे। 122 खिलाड़ी थे, उनमें से 70 खिलाड़ी खेलो इंडिया से किसी न किसी रूप में संबद्ध रहे हैं। और जो मेडल विनर्स थे, 39 मेडल्स हमारे आए, 39 मेडल्स में से 16 मेडल्स, 16 पदक
1: जी
2: वो खेलो इंडिया से संबद्ध खिलाड़ियों के रहे।
1: जी
2: तो आप देख सकते हैं कि वो जो मैदान से पोडियम तक यहाँ पे एकदम साकार हो रहा है, एकदम फलीभूत हो रहा है।
1: जी और राजा, कहते हैं कि खेल प्रतिभाएं वो गांवों में भी बहुत छुपी हुई हैं और उनके पहचान की आवश्यकता है। वहां से बहुत सारे ऐसे एथलीट, ऐसे खिलाड़ी निकलकर सामने भी आते हैं जिन्होंने देश के लिए ढेर सारे मेडल जीते हैं। अभी इस दिशा में खेलो इंडिया के तहत और कितना काम करने की आवश्यकता है?
0: धर्मेंद्र, मेरा यह मानना है कि भारत के जो मेडल्स अभी तक आए हैं वो हिंटरलैंड से ही आए हैं। ज्यादातर आप खेलों में देखें तो वो खिलाड़ी रूरल एरिया से हैं, बैकवर्ड एरिया से हैं। उनके अंदर एक भूख है जो शायद शहरी खिलाड़ियों में कम है। मैं नहीं कह रहा कि शहरी खिलाड़ी कम है, किसी स्तर पे भी कम है, लेकिन भूख उनके अंदर ज्यादा दिखता है। और इनको खोजने में जो खेलो इंडिया का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम है ये अभी मदद करेगा। मेरा ये मानना है कि खेलो इंडिया के जो अधिकारी है उनको समझ आया होगा, 2 साल पहले उन्होंने एक स्कीम चलाया था उसमें से सीख मिली होगी। कीर्ति स्कीम था, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम, उसमें से कुछ सीख मिला होगा। और आगे जो करना है हमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में, इसमें सुधार लाकर अच्छे टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। जो
1: जी
0: 30,000 खिलाड़ियों की बात हो रही है खेलो इंडिया स्कॉलर्स की, ये हमारा भविष्य होंगे। और मेरा ये मानना है कि ये

0: सारे अच्छे खिलाड़ी होंगे और बेहतरीन रिजल्ट्स भारत के लिए लेकर आएंगे आगे चलकर। ये कोई भी देश में ये होता है धर्मेंद्र, के आज अगर आपके पास 30,000 खिलाड़ी हैं, वो सारे 30,000 वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे, उनमें से छाट कर आपको 30 वर्ल्ड क्लास एथलीट मिलेंगे। अगर आपके पास बेस 3,000 का ही है तो 3 खिलाड़ी आपको मिलते हैं। अच्छी बात है कि बेस हम बढ़ा रहे हैं और वहां से हमारे खिलाड़ी उभर कर आएंगे और विश्व स्तर पर अच्छे चैंपियंस बनेंगे और फिर गर्व से हमारा दिल धड़कने लगेगा।
1: अरमैन जी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स जो है देश में, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी तक आए हैं और भविष्य में क्या योजनाएं हैं?
2: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है भारत सरकार ने इस उद्देश्य से शुरू की थी कि जो हमारे एलीट एथलीट हैं, एलीट एथलीट का आशय उन एथलीट से है जिनको कि हम ये मान करके चलते हैं कि इनके अंदर इतनी प्रतिभा है और उनकी स्किल लेवल इतनी अच्छी है कि ओलंपिक और एशियन गेम्स इस तरह के जो टॉप नॉश जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें ये भारत को पदक दिलाने में सक्षम है, तो उनको इस तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, कोई फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल न फेस करना पड़े, कोई अन्य गतिरोध न फेस करना पड़े, ट्रेनिंग का हो, चाहे जगह का हो ट्रेनिंग के लिए, चाहे ट्रेनिंग के लिए सामानों का हो, या जो रिकवरी का हिस्सा है ना, मतलब उनके जो मैसर्स होते हैं, उनके जो फिजियो होते हैं, इन सभी की दृष्टि से उनको कोई ऑब्स्टिकल का सामना न करना पड़े और कोई उनके पास कमी न रह जाए, इसलिए टॉप्स जो है स्कीम लाई गई थी। और इसमें ऐसे एथलीटों का चयन किया जाता है, एक समिति होती है जो साई में कार्य करती है, उस समिति में रिनाउंड प्लेयर्स हैं, रिनाउंड कोचेस हैं, हमारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के भी रिनाउंड जो पुराने लोग हैं वो लोग हैं, और ऑफकोर्स अधिकारी है ही हैं, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीईओ टॉप्स एक अधिकारी है जो कि वर्तमान में कर्नल जोहल हैं, जो स्वयं भी ओलंपियन रह चुके हैं। तो ये अधिकारी जो है उनके अधीन ये समिति उनका निर्धारण करती है, उनके पैमाना बना होता है कि किस प्रकार के लोग इसमें टॉप स्कोर एथलीट बनेंगे। टॉप स्कोर एथलीट को ज्यादा स्कॉलरशिप बोल लें, अलाउंस बोल लें, वो मिलता है, एक टॉप्स डेवलपमेंट है जिनको हम दूसरी रंग मान सकते हैं कि ये कोर से तुरंत ही कोर बन सकते हैं, इनके अंदर भी मेडल क्षमताएं हैं, तो उनको थोड़ा सा कम पैसा मिलता है। और जो बाकी सुविधाएं जैसे मैंने आपको बताया, जितनी चीजें स्पोर्ट्स साइंस हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे
1: जी
2: उनकी रिकवरी के हिस्से हो, चाहे उनके स्पोर्ट्स के सामान हो, इत्यादि इत्यादि। उदाहरण के लिए नीरज चोपड़ा जैसे, तो साउथ अफ्रीका में जो उनकी ट्रेनिंग थी उसकी फंडिंग टॉप्स के द्वारा ही की गई थी। तो इस प्रकार से एलीट एथलीट को सहायता देने का एक प्रयास टॉप्स के माध्यम से होता है, और आप देख रहे होंगे कि एलीट एथलीट के हिसाब की ही चीजें उनको प्रदाय की जा रही है। जैसे नीरज चोपड़ा ने चाहा था कि साउथ अफ्रीका में वो प्रैक्टिस कर सके,
1: जी
2: तो वो सुविधा उनको टॉप्स के माध्यम से प्रदान की गई थी।
0: मयंक जी ने नीरज चोपड़ा की बात की, मैं मीराबाई चानू की बात करूंगा आपसे। मीराबाई चानू को चोट लग गया था, बैक में प्रॉब्लम था। मैं 2021 ओलंपिक गेम जो 20 में होने थे लेकिन 21 में हुआ है, उस गेम की बात कर रहा हूं। मीराबाई चानू को वहां पे मेडल मिला था, हम सब जानते हैं। लेकिन 3 महीने पहले मीराबाई चानू को चोट लगी थी और डाउट्स हो गए थे कि इनका क्या होगा। टॉप्स के सपोर्ट से वो गई अमेरिका, सेंट लुइस। वहां पे स्कॉट यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर है जिन्होंने उनका इलाज किया और उनका स्क्वाट लिफ्टिंग भी इंप्रूव कर दिया और तब जाके ओलंपिक में मेडल मिला है। कई सारी बातें टॉप्स की, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, इसकी हमारे सामने आती नहीं है, लेकिन जरूरी है कि जब खिलाड़ी को मदद की जरूरत पड़ती है, जैसे मीराबाई चानू को ऐन वक्त में पड़ गई थी और किसी का भी क्लियरेंस का टाइम नहीं वेस्ट हुआ है। एक टाइम था जब मीराबाई चानू चिट्ठी लिखती थी, 3 महीने वेट करो, फिर उसके बाद क्लियरेंस हो ना हो पता नहीं, तब तक आपके पीठ का क्या हाल हो रहा है पता ही नहीं। लेकिन ये मेडल अगर किसी को जाता है, हालांकि मीराबाई चानू के हुनर को जाता है, उनके कोच को जाता है, लेकिन अगर कहीं क्रेडिट जाना पड़ेगा किसी को तो वो टॉप्स को जाता है।
1: और राजा, इतनी सारी बातें हमने कर ली, सुना आप गाना भी बहुत बढ़िया गाते हैं।
0: नहीं, गाता तो नहीं हूं और मैं श्रोता को डराना नहीं चाहता हूं धर्मेंद्र, लेकिन खेल का जो मुहिम है, 1958 में एक ऐसा खिलाड़ी भारत के अंदर एक जोश पैदा कर दी, मैं मिल्खा सिंह की बात कर रहा हूं।
1: जी
0: आज की तारीख में जितना उनका तारीफ की जाए कम, वो फौजी रहे, बड़े मुश्किल परिस्थिति से उभर कर आए और फिर चल के कॉमनवेल्थ का मेडल जीता उन्होंने। अब क्योंकि हम कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं, रोम ओलंपिक्स में 4th प्लेस फिनिश किया उन्होंने। उनके एक बायोपिक बना था भाग मिल्खा भाग, उसमें एक बहुत बेहतरीन गाना है जो आज भी हम सबको प्रेरित करेगा, हम सबको दिखाएगा कि आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे।
1: जी वो कौन सा गाना है जो सुनना चाहते हैं आप?
0: भाग मिल का भाग।

0: तो ये गीत भी हमने सुन लिया। सच कहें तो नए भारत में खेलों के मैदान पर सफलता का सिलसिला जारी है और ये दौर लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है। खेलों के मैदान से पोडियम तक पहुंचने के लिए नई बुनियाद खड़ी की जा रही है, कामयाबी की नई कहानी लिखी जा रही है। खेल को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हमने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सारे कदम आगे बढ़ाने हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच में परिवर्तन लाएं, अपने बच्चों को भी खेलों के लिए प्रोत्साहित करें और प्रेरित करें। मैदान मार रहे अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में कोई कसर न छोड़ें, तभी मैदान से पोडियम तक पहुंचने का हमारा ये महाअभियान पूरा होगा। तो मयंक श्रीवास्तव जी, खेलों के क्षेत्र में भारत सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से किए जा रहे प्रयास के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू
0: जी राजारमन जी, खेलों में भारत के वर्तमान और भविष्य पर इतनी अच्छी बातचीत के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच धर्मेंद्र।
0: तो अब कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और प्रस्तुतकर्ता शहनवाज खान के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सबसे लेता हूं अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दवा नल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे।

आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे स्रोतियो, मिति 17 अगस्त दिन सोमवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार दे तहत तुसी सुनोगे महान कवि भगत पीलू दी कलम तो रचिया अमर काव किस्सा मिर्जा साहिबा।

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन सीमा मेहरा। ता फिर सुनना ना भुलना, मिति 17 अगस्त दिन सोमवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार, जिथे हर कहानी साडे विरसे दी आवाज बनदी है।

0: पा रही हूँ।
1: चलो ठीक है बेटा, फोन करने लिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह ही हंसते वसते रहो, घरदे खुश रखो, ठीक है?
0: ठीक है मैम,
1: ओके जी, ओके,
0: बाय मैम।
1: बाय।

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन सीमा मेहरा। ता फिर सुनना ना भुलना, मिति 17 अगस्त दिन सोमवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार, जिथे हर कहानी साडे विरसे दी आवाज बनदी है। एक

नमस्कार, ई आकाशवाणी ए। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किया है कि हुसैनी वाला हैरीटेज कॉम्पलैक्स का काम शुरू हो गया है और इस प्रोजेक्ट ते 24.99 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट साडे महान शहीदां दे सन्मान लिए एक यतन है और इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों लिए आजादी घुलाटियां दे शानदार विरसे नूं सुरक्षित रखना है। कल आजादी दिहाड़े मौके फिरोजपुर च राज पदरी समागम नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि सरकार दा मुख उद्देश हुसैनी वाला विखे विरासती खेतर नूं विकसित करना है अते इस विरासती कॉम्पलैक्स दे निर्माण नाल सैर सपाटे नूं भी हुलारा मिलेगा। प्रोजेक्ट दीआं विशेषतावां दा वेरवा दिंदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट विच कंपलैक्स लई इक शानदार विरासती एंट्रेंस गेट शहीदां दे जीवन नूं समर्पित दोवें पासे इक विरासती गलियारा कंध चित्तर दे नाल नाल पार्कां ते यादगारी खेतरां दा

0: सुंदरीकरण शामिल होएगा। कॉम्प्लेक्स विच मुहैया करवाईयां जाण वालियां होर सहूलतां ते चानणा पाउंदिया मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉम्प्लेक्स विच बच्चियां लई इक समर्पित खेड खेतर, बुजुर्ग नागरिकां लई मनोरंजन ते आरामदायक थावां ते हर जरूरत दा ख्याल रख्या जाएगा। पंजाब दे राज्यपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने बीते कल स्वतंत्रता दिवस दे मौके ते शाम नूं पंजाब लोक भवन चंडीगढ़ विखे रवायती एट होम समारोह दी मेजबानी कीती। इस मौके सभना ने राष्ट्रीय एकता, सद्भावना ते भाईचारे दी भावना नाल एकजुट हो के स्वतंत्रता दिवस मनाया। समारोह विच हरियाणा दे राज्यपाल प्रोफेसर अशीम कुमार घोष, पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान, हरियाणा दे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, पंजाब विधानसभा दे स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवा, हरियाणा विधानसभा दे स्पीकर श्री हरविंदर कल्याण, पार्लियामेंट मैंबर श्री मनीष तिवाड़ी ते सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत अनेक पतवंते शामिल सन। समारोह विच वन सवन्ने खेतरां नाल जुड़े हर पतवंते मेहमाना विच संविधानक अधिकारी, चुने हुए प्रतिनिधि, पंजाब ते चंडीगढ़ दे सिविल ते पुलिस प्रशासन दे सीनियर अधिकारी, हथियारबंद बलां दे अधिकारी, सिक्ख्या शास्त्री, वाइस चांसलर, वख वख बोर्डां ते कारपोरेशनां दे मुखी, डॉक्टर, पत्रकार, सनतकार ते होर उग्गे नागरिक शामिल सन। राजपाल कटारिया वल्लों मेहमाना दा गर्मजोशी नाल स्वागत कीता गया ते उन्हां ने सारयां नूं स्वतंत्रता दिवस दीआं शुभकामनावां दित्तीआं। राष्ट्रीय पुरब दे मौके ते पंजाब लोक भवन नूं आकर्षक ढंग नाल सजाया गया सी। पंजाब दे रक्षा सेवावां भलाई, स्वतंत्रता सेनानियां ते बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने सूबे विचों नशियां दे जड़ों खात्मे लई शुरू कीती गई मुहिम, युद्ध नशियां विरुद्ध विच सरगर्म योगदान पाउण वालियां 65 शख्सियतां दा सन्मान कीता, जिन्हां विच औरतां वी शामिल सन। बीते कल जलंधर विच स्वतंत्रता दिवस मौके करवाए गए जिला पदरी समागम दौरान उन्हां ने जिले विच वख वख खेतरां विच शानदार कारगुजारी वालियां 170 होर शख्सियतां दा वी प्रशंसा पत्र ते मैडलां नाल सन्मान कीता। सन्मान पाउण वालियां शख्सियतां च पुलिस कमिश्नर दफ्तर, जिला अटॉर्नी दफ्तर, डिप्टी डायरेक्टर पशु पालन बागवानी, सकत्तर जिला रेडक्रॉस सोसायटी सुरजीत लाल, जिला टाउन प्लानर, जनरल मैनेजर जिला सनत केंद्र, डिप्टी डायरेक्टर रक्षा सेवावां भलाई, कमांडर बलजिंदर सिंह बिरक, जिला रोजगार ब्यूरो, सेहत विभाग, डिप्टी कमिश्नर दफ्तर दे मुलाजम ते अध्यापक शामिल सन। इस मौके श्री भगत वल्लों करतारपुर स्थित जंगे आजादी यादगार विखे भी देश लई अपनियां जाना कुर्बान करन वाले महान शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती गई। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ते तरनप्रीत सिंह सौन ने बीते कल शहीद मास्टर करनैल सिंह ईसड़ू दे खन्ना नेड़े स्थित जद्दी पिंड ईसड़ू विखे उन्हां दे शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित राज पदरी समागम दौरान उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल भेंट कीते। शहीद मास्टर करनैल सिंह ईसड़ू ने पुर्तगाली शासन तों गोवा नूं आजाद कराउण समय अपनी जान कुर्बान कर दित्ती सी। मंत्रियां ने उन्हां दे बुत ते फुलमालावां भेंट कीतियां अते उन्हां दीआं भतीजियां जसविंदर कौर ते नरिंदर कौर नूं सन्मानित भी कीता। श्रोमणी अकाली दल दी लीडरशिप वल्लों भी शहीद ईसड़ू दे पिंड पहुंच के उन्हां दी शहादत नूं सिजदा कीता गया। इस मौके साबका केंद्रीय मंत्री ते अकाली दल आगू हरसिमरत कौर बादल, बलविंदर सिंह भूंदड़ ते डॉ. दलजीत सिंह चीनम्मा समेत समुची सीनियर लीडरशिप हाजर रही। इस दे नाल ही प्रादेशिक खबरां खत्म हुईयां। साडा एक्स हैंडल है @AIRRN जलंधर। राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे दोपहर बाद 1:40 ते। नमस्कार।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ FM ਬੈਂਡ 101.1 MHz ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ 1:15 ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਿਲਾਓ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ।

दोस्त सुमनप्रीत, प्रोग्राम सुन रहे तमाम श्रोतियों नूं मेरे वल्लों प्यार ते सत्कार भरी नमस्कार। श्रोतियों, जिवें कि तुहानूं पता है कि तुसीं इस प्रोग्राम विच अपनी पसंद दे हिंदी फिल्मी गीत सुन सकदे हो। ते अपनी पसंदीदा गीत सुनने लई तुसीं डायल करना है जी साडे स्टूडियो दा नंबर 0164-2240-331, ते असीं इंतज़ार कर रहे हां जी तुहाडियां फोन कॉल्स दा। ते जदों तक कोई श्रोता साडे नाल फोन कॉल ते जुड़दे हन 0164-2240-331 डायल करके, तद तक तुसीं आनंद माणो मेरी पसंद दे इस गीत दा।

0: ਜੀ, ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਡਾਇਲ ਤੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਰੋਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ,
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासा कालदी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत दूर तो साडे नाल जुड़े हो जी तुसीं।
1: जी मैडम, छत्तीसगढ़ चिरमिरी कुरासा कालदी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ, बहुत दूर से बोल रहा हूँ।
0: जी
1: और
0: जी
1: कल स्वतंत्रता दिवस था, तो स्वतंत्रता दिवस की भी आपको ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी।
1: और दिशा मर्ते मॉडल के साथ में अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है सिलसिला और गीत के बोल है देखा एक कॉल पे सिलसिले हुए, गाय किशोर कुमार, लता मंगेशकर।

0: अमिताभ बच्चन, रेखा और क्या
1: जी
0: बोलते हैं जया भादुड़ी और संजीव कुमार जी को फिल्माया गया है।
1: ठीक
0: और
1: है जी।
0: सबसे पहले गीत आपको आकाशवाणी भटिंडा में जुड़े सभी लोगों को, सभी दोस्तों भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारी को, हेलो एक्टर रेडियो प्राइज गीत में जुड़े श्रोता को, पूरे भारत का राष्ट्र श्रोता को डिलीवर मैडम फोन साल की धन्यवाद। इसी फिल्म को, इसी गीत को पूरा सुनाएंगे। धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद। ते तुहाडी पसंद ते तुहानू गीत सुनवा रहे हैं जी।
0: जी मैडम,
1: प्रोग्राम दे
0: धन्यवाद
1: विच सानू फोन करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: जी, फोन शामिल किए मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।

0: India is set to host the BWF World Championship starting from tomorrow till August 23rd at the Indira Gandhi Stadium in New Delhi. This will be only the second time India hosts the tournament after the 2009 edition. Indian players have won at least one medal at every World Championships since 2011. The country has claimed 14 medals across the last 11 editions. A report.
1: PV Sindhu will lead India's challenge in women's singles. The former world champion is targeting a sixth world championships medal after winning the Japan Open earlier this year. In men's singles, Lakshya Sen will look to make a deep run, while Ayush Shetty faces defending champion and top seed China's Shi Yuqi in the opening round. The men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will be among India's strongest medal hopes. Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will spearhead India's women's doubles challenge, while Dhruv Kapila and Tanisha Krasto will lead the mixed doubles campaign. India is yet to win a world championship medal in the mixed doubles. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
0: In cricket, Bangladesh secured a historic 9-wicket victory over Australia in the first test match of Murara Oval in Darwin, Australia today. It was Bangladesh's first test win on Australian soil and only its second victory over Australia. Mehdi Hasan Miraz was the first key performer in the match. He scored a crucial half century in Bangladesh's first innings and then took 5 wickets in the second innings as Australia were bowled out for 284. Cameron Green offered Australia hope with a 104 runs, his third test century and first in Australia. But Bangladesh's bowlers kept control and restricted the host to lead of just 56 runs. Bangladesh then chased the modest target in only 14.2 overs. The Directorate of Revenue Intelligence has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NTA releases provisional answer keys for 84 subjects of UGC NET 2026. Objections window to remain open till Tuesday. Students protesting against JPSC-JSSC exam irregularities in Jharkhand demand resignation of Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah unveils statue of Atal Bihari Vajpayee in Rajasthan as nation pays homage on former Prime Minister's death anniversary. Fresh low pressure over Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए. आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय. झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की. राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है. गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया. बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा. बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी. और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत. ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं. एक रिपोर्ट.
3: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं. प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा. छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है. किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा. प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है. एनटीए ने बताया.

0: की शेष तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है, और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
3: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सबके बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
4: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस

0: पिता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
1: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथा चमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवयम ने किझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
4: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंदुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में

0: 270,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिषा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: जी ਸਰੋਤਿਓ, ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮਨਦੀਪ ਰਜੌਰਾ।
4: ਹੋ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਲਮਾ ਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਖੰਡੇ ਨਾਲ।
5: ਸਰੋਤਿਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੋਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਟ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਣਾ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ

पेश खिदमत है मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बूंदों के रथ पर चांदी सी चमक लिए आपके पसंदीदा गीत आपके शहर से हमारे पास तक आ चुके हैं। साथियों, ये पत्र बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। थकान तो इनमें कहीं दिखती नहीं, ताजगी गीतों की आप भी महसूस करेंगे। बस सुनते रहिए मन चाहे गीत। तो सुनिए जरा ये गीत, इसमें आपके प्यारे प्यारे खतों की खुशबू है। मन चाहे गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

पत्थर के सनम फिल्म का दो गाना आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद, अभयनंद और परमानंद आर्या ने हमें पत्र लिखे। पुलगाम जिला वर्धा से अब्दुल कलाम का पत्र आया। गंगा शहर बीकानेर के हमारे श्रोता हैं कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी और मिलोदास, जयदास, देवेश दास की फरमाइश आई है। धनवंतन बाई, मोतिन बाई मानिकपुरी का भी नाम इसमें है। गणेश धाम परसूली बालोद के हमारे श्रोता हैं और ये पत्र आया है शीशगढ़ बरेली का इलियास नईम और नदीम इदरीसी इसी गीत को सुनना चाहते थे।

साजिद फिल्म में आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना। कर्नाटका के ये हमारे श्रोता हैं, तिरुपंजी से इन्होंने पत्र लिखा है। प्रकाश, श्यामला, अश्विन और आनंद मनवित दाम भी है इस गीत के लिए। एक और श्रोता है शारदा, जिला नंदुरबार महाराष्ट्र के, का ये पत्र है। प्रकाश शील के, तुषार, किशांग और प्रियांगी ने इस गीत को सुनना चाहा। और ये हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ के शिखा, प्रीति, संध्या, शालू ठाकुर। और ये पत्र आया है जुनताज अकोले से, राजेश।

प्रिया और रोहन नेहा वाघमारे का ये पत्र है और महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस, जयेश, ऋषभ और संयम के साथ सिद्धांत जैन का भी नाम है। ये पेठ अकोला के हमारे श्रोता हैं।

वो भी नहीं, के संगीत निर्देशन में इसे गाया महेंद्र कपूर ने। एसएच बिहारी के बोल थे। आप सुन रहे थे किस्मत फिल्म का गीत पोरा अहिवारा। जिला छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता पत्र लिखते हैं, पोषण बंदौर और चंद्रकरण प्रीति और छाया बंदौर की ये फरमाइश है। और मीना तलरेजा जी का भी पत्र मेरे हाथ में है श्रोताओं। इन्होंने कहाँ से लिखा है, जगह का नाम नहीं लिखा। हमारे यहाँ का तो पता ठीक है। दत्तारेंगी भाड़ा पारा के हमारे श्रोता हैं हीरामन वर्मा, पारस मणि पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा ने इस गीत की फरमाइश भेजी। गेंदलाल श्रीवास और गेंदू भाई का पत्र आया है दुर्गा चौक रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवली कांशिवनी तालुका जिला अकोले से हमारे श्रोता हैं सचिन नीलखन, आयुष पीयूष आराध्या।

0: का मधुकर राउत, ये हमारे रंगनाथ देउल गांव के श्रोता हैं मधुकर, जया राउत, ओम कीर्ति राउत और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: अब अगर हमसे

0: अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए।
1: ये खूबसूरत तर्ज थी मदन मोहन की, साहिल धनवी की रचना आपने सुनी। लैला मजनू फिल्म का ये दो गाना था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया। आप सभी की फरमाइश, शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल अनवर संगवाणी ने पत्र लिखा। और बलियापुर धनबाद के हमारे श्रोता हैं गिरधारी लाल अग्रवाल, कंवर कॉलोनी बाड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली ने हमें पत्र लिखे। हुसैन चौक रामनाथ परा जंक्शन प्लॉट राजकोट के हमारे श्रोता हैं मोइन अहमद अजमेरी, लियाकत अहमद इरफान, प्रभुदास कोटेचा, हंसाबेन कोटेचा और आशीष कोटेचा ने पत्र लिखे। और इसी गीत को सुनना चाहा सरूद चौक अमरावती के हमारे श्रोताओं ने, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम, आयशा, हदिया आसमा और मुश्तबा खान सादिक भाई और शाहिद ने।

मेरा साया फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, राजा महदेली खां के बोलों को सुरों में ढाला मदन मोहन ने और फरमाइश भेजी आप सभी ने। छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता, दरियापुर बाबली से गजानन नवदीप और विश्वदीप येले की ये फरमाइश है। और शाहिद दीपक और ऋषि की फरमाइश आई है सूरत उन गांव से, गांधी चौक बाड़मेर के हमारे श्रोता बबलेश डैनी और मनीष पवार। और नई सड़क एमपी शाजापुर के हमारे श्रोताओं ने ये फरमाइश भेजी है मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि चित्रंजन, सरोज, रितिका स्वीटी, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं कार्यक्रम में अपने पत्र भेजने के लिए। भेजते रहिए इसी तरह से अपने पत्र और हम भी सुनवाते रहेंगे आपके पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। और अब इस कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक पुराना मर्ज नया इलाज। मूल लेखक मॉलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी।
1: अरे भाई कृपण साहब, अरे भाई मैंने कहा क्या जनान खाने में ही घुसे रहोगे यार?
2: आओ भाई साहब,
1: अरे जल्दी आओ ना।
2: कहो भाई, आज कैसे रास्ता भूल पड़े?
1: अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
2: नहीं, आज मैं बहुत दुखी हूँ।
1: क्यों?
2: तुम तो जानते हो भाई, मेरी इकलौती पत्नी स्वर्ग सिधार गई।
1: अरे भाई वो तो मालूम है, लेकिन आज महीनों के बाद तुम्हें
2: आज फिर उसकी याद आ रही है। दिल करता है तुम टूट कर रहा हूँ।
1: अरे तो फिर रोते क्यों नहीं? देखो आंसू बहाने में कंजूसी ठीक नहीं होती।
2: मजाक ना करो दोस्ता, प्यारी पत्नी की याद में कलेजा मुंह को आ रहा है। कितना चाहती थी मुझे।
1: अरे भाई मैं ये कह रहा था कि बीवी को भूल भाल कर अब तुम बेटी की तरफ ध्यान दो। अगर तुम इस तरह दुखी रहोगे तो तुम्हारी रूपा बेटी भी।
2: रूपा के कारण तो और भी परेशान हूँ भाई।
1: क्यों क्यों, क्या हुआ उसे?
2: अरे न जाने क्या हुआ, हर दम उदास रहती कोई कोई सी। चांद सा गोरा चेहरा पीला पड़ गया, समझ में नहीं आता क्या करूं भाई।
1: तो तुमने उदासी का कारण जानना चाहा?
2: अरे यही तो नहीं मालूम, पूछता हूँ तो कुछ जवाब ही नहीं देती। भाई उधार चल।
1: हाँ उधार चल।
2: भाई तुम मेरे दोस्त ही नहीं, सगे भाई की तरह हो।
1: सो तो
2: बोलो ना। तुम ऐसा करो, तुम ही कोई तरकीब बताओ, रूपा बेटी को कैसे खुश करूं।
1: देखो भाई कृपण चंद, मैं तो स्त्रियों को प्रसन्न करने का बस एक ही नुस्खा जानता हूँ।
2: बताओ बताओ जल्दी बताओ।
1: बताओ
2: बताओ
1: बताओ
2: बताओ। अरे
1: देखो भाई, तुम रूपा बेटी को जरी के काम की कुछ अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिलवा दो।
2: जरी के काम की साड़ियाँ?
1: अरे इतना ही नहीं, साथ ही जड़ाऊ जेवर भी।
2: तो साड़ियाँ और जेवर? नहीं नहीं भाई, ये तो बहुत महंगा उसका
1: है। महंगा?
2: मेरा तो दिवाली निकल जाएगा। उदाचन भाई उदाचन, कोई सस्ती तरकीब सोचो।
1: तुम रहे कृपण के कृपण ही। अरे भाई तुम अपनी बेटी

0: के लिए इतना भी नहीं कर सकते?
1: नहीं भाई, जिसने भी अपनी गाड़ी कमाई,
2: हाँ,
1: सारी जेवर पर कमाई,
2: हाँ,
1: समझो उसकी आफत आई,
2: हाँ, तो फिर खोजो जमाई और कर दो सगाई।
0: क्या मतलब? अरे भाई, जमाई का मतलब भी नहीं समझते? तुम्हारी बेटी सयानी हो गई,
1: हाँ, तो
0: उसकी शादी कर दो और छुट्टी पा जाओ।
1: शादी? शादी के बाद बेटी खुश रहेगी, इसकी क्या गारंटी है? बोलो भाई, है तो गारंटी नहीं? अरे भाई, तुम जानते नहीं हो, अक्सर शादी लाती है बर्बादी।
2: अच्छा जी, अब जरा ये भी बता दो कि फिर तुमने क्यों की थी शादी?
1: एक ही बार तो की थी।
0: हाँ, एक ही बार की। अरे, तुम्हारी बहानेबाजी मैं समझता हूँ, तुम पक्के कंजूस हो कंजूस। बेटी की शादी में खर्च हो जाएगा ना, इसीलिए बातें बना रहे हो।
1: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, क्या तुम भी बात करते हो।
0: हाँ,
1: कोई और नुस्खा?
0: नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं जानता, बेटी तुम्हारी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं चला, दुकान खोलने का वक्त हो रहा है।
1: मैंने कहा कि अपनी दुलारी बेटी को भेजते जाना है।
0: अच्छा?
1: वो रूपा की सहेली है, शायद कोई रास्ता निकाल ले।
2: ठीक है, मैं दुलारी को भेजवा देता हूँ।
1: दीदी को भेजना जरूर।
2: हाँ, भेज दूंगा।
1: चला गया, लगता है उधार चंद की बुद्धि भी उधार की है, तभी तो दिमाग नहीं चलता। साड़ी, जेवर, शादी, आय आय आय आय आय आय, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, न जाने क्या हो गया मेरी बेटी को। आय आय आय।
3: चाचा जी,
1: आ दिलाड़ी तुम आ गई।
3: क्या बात है, मुझे बताइए। चाचा जी, मुझे मालूम हो गया है, रूपा का मर्ज है प्यार और उसका इलाज है शादी।
1: अरे बाबा, शादी नहीं बर्बादी है। मैं कहता हूँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता।
3: लेकिन चाचा जी,
1: उसने इसलिए बड़ा दिया।
3: चाचा जी, रूपा किसी को चाहती
1: है? किस चिड़िया का नाम है जी?
3: उसे पति चाहिए।
1: मैं कुछ नहीं जानता।
3: पति चाहिए चाचा जी, रूपा को पति चाहिए, उसकी शादी कर दीजिए। रूपा, देखा दुलारी, चिंता की कोई बात नहीं। रूपा, तुम तो कहती थी कि कहने भर की देर है, पिताजी हंसते हंसते प्रेम के साथ शादी कर देंगे। मैं चाचा जी को ऐसा नहीं समझती थी। अब क्या होगा दुलारी, पिताजी शादी करेंगे नहीं और मैं प्रेम के बगैर जिंदा रह नहीं सकती। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारी शादी प्रेम बाबू से ही होगी, विश्वास रखो। लेकिन पिताजी की जिद के आगे तू क्या कर पाएगी? कहा ना, तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। अरे, चाचा जी आ रहे हैं, चलो अंदर चलें।
1: प्यार हो गया, शादी करेंगे, दिन रात एक एक करके मैंने धन कमाया है, क्या इसीलिए कि लड़की की दहेज में स्वाहा कर दूं? कृपण चंद ऐसा मूर्ख नहीं है, मैं अपनी संपत्ति घर में ही रखूंगा और बेटी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा।
3: चाचा जी, चाचा जी, गजब हो गया। रूपा,
1: क्या हुआ मेरी बेटी को?
3: बदकिस्मती।
1: अरे तुम्हारी बोलो तो,
3: दुर्भाग्य।
1: बता दी, क्या हुआ?
3: रूपा बहन,
1: क्या हुआ उसे?
3: आपकी बातों से हताश होकर रूपा अपने कमरे में गई।
1: अच्छा,
3: पीछे वाली खिड़की खोली
1: और
3: आसमान की तरफ आंखें उठाकर कहा, पिता का स्नेह खोकर मैं जीवित नहीं रह सकती, मेरे लिए एक ही रास्ता है, मौत।
1: और वो नीचे कूद गई?
3: नहीं चाचा जी, मैंने पकड़ लिया।
1: क्यों?
3: चाचा जी, अब वो बिस्तर पर पड़ी है, पहले रोती रही, फिर अचानक चेहरा पीला पड़ गया और वो मूर्छित हो
1: गई। मूर्छित हो गई। मैं दुला रही, मैं अभी डॉक्टर बुलाता हूँ।
3: जल्दी जाइए,
1: तब तक रूपा को देख लेना। मैं अभी डॉक्टर।
3: रूपा, लाइन क्लियर है, आ जा। क्या कहा पिताजी ने? घबराकर डॉक्टर बुलाने गए हैं।
4: डॉक्टर?
3: हाँ,
4: अब क्या होगा? डॉक्टर के सामने पोल खुल जाएगी।
3: चिंता न करो, चाचा जी हैं पक्के कंजूस, अच्छे डॉक्टर को लाने से रहे, फटीचर डॉक्टर आएगा, उसे धोखे में रखना मुश्किल नहीं होगा। अरे चाचा जी तो तीन तीन डॉक्टर ला रहे हैं। चाचा, तू जल्दी से अंदर जाकर मूर्छित हो जा। चाचा जी, आप तीन तीन डॉक्टर ले आए?
1: हाँ बेटी, एक डॉक्टर है, दूसरा वैद्य।

0: तीसरा हकीम। हाँ बेटी क्या बात है?
1: चाचा जी रूपा, पर ये तीनों मिलकर भी शायद शायद बेचारी रूपा को ठीक कर पाए।
0: नहीं ऐसी बात नहीं है।
2: मैं डॉक्टर बोगसचंद।
0: हाँ बोगसचंद, बिल्कुल बोगस।
2: मैं मर्ज के साथ मरीज को भी साफ कर देता हूँ।
3: और मैं हूँ कविराज
1: मूढ़ानंद,
3: नाड़ी देखकर पूर्व जन्म तक का रोग बता सकता हूँ। मेरा चेहरा देखकर ही रोग पलायन कर जाता
4: है। कम नहीं हूँ हकीम अहमक, ठोठवी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। चाहूँ तो मुर्दे में जान डाल लूँ और चाहूँ तो जिंदा को।
0: अरे भाई मैंने कहा अपने मुंह में मिट्टू बाद में बनिएगा, आप लोग पहले मेरी बेटी को देख लें।
2: क्या तकलीफ है आपको?
3: मुझे अपनी नाड़ी दिखाई है।
4: अरे नहीं, मैं तो चेहरा देख कर ही बता सकता हूँ कि इसे कम समय।
0: सावधान के मेरी बेटी नहीं उसकी सहेली है।
2: आपने पहले क्यों नहीं बताया?
3: हमें धोखे में रखा। खैर कोई बात नहीं, हम सहेली की नाड़ी देख कर ही आपके बेटी का रोग बता।
4: तो मरीजा मरीजा आखिर है कहाँ भाई? मरीजा कहाँ है?
0: आप मरीजा पूछ रहे हैं जी? वो अंदर कमरे में है। इन लोगों को अंदर ले
4: जाइए।
0: वो आ गया है। क्या हाल है मेरी बेटी का?
2: हमने अच्छी तरह एग्जामिन कर लिया। बॉडी में काफी फॉरेन मैटर है।
0: क्या वक्त हो जी? मेरी बेटी एकदम देसी है। देसी
3: वायु के साथ साथ पित्त प्रकोप भी।
4: इससे पहले कि हम कोई दवा तजवीज करें, हम आपस में कुछ मशविरा करना चाहते हैं। क्यों डॉक्टर बोगसचंद?
2: आपने सेंट पर्सन सही बात कही है हकीम सोठनीता।
3: मैं भी आप दोनों से शत प्रतिशत सहमत हूँ।
0: अच्छा,
3: परामर्श के पश्चात ही निदान और उपचार हो सके।
0: ठीक है, ऐसा करिए आप लोग सलाह कर ले। बेटी को देख लो।
2: आजकल मौसम बहुत खराब है कविराज मूढ़ानंद जी।
3: ऐसे ही मौसम में पित्त प्रकोप और वायु विकार होता है।
4: हमारे यहाँ फिर भी तो मरीज नहीं आते।
2: अरे आपके यहाँ नहीं आते होंगे, मेरी डिस्पेंसरी तो खचाखच भरी रहती है।
3: अरे क्यों मिथ्या खत्म करते हो, जैसे मुझे ज्ञाते ही नहीं। हमारा औषधालय भी तो वही है, दिन रात बैठे बैठे मक्खियाँ मारा करते हैं।
2: और आप कौन सा तीर मारा करते हैं? छठे छमाए कोई दवा लेने आ जाता है।
3: देखिए डॉक्टर साहब, मेरा मुंह मत खुलवाइए।
4: अरे भाई,
3: हमारे यहाँ तो छठे छमाए कोई आ भी जाता है, आपके यहाँ तो कोई फटकता भी नहीं।
4: आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है भाईजान। हाथ में शफा होनी चाहिए शफा, मरीजों की कमी नहीं रहती। हाँ एक बार का जिक्र है कि एक धोबी को बुखार आ गया, मैं देखने गया। आप यकीन मानिए साहिबान, मैंने गलती से दवा उसके गधे को खिला दी।
3: अच्छा,
4: और धोबी चंगा हो गया।
2: तो ये क्यों नहीं कहते अहमद साहब कि आप जानवरों के हकीम हैं?
4: जानवरों के डॉक्टर होंगे आप? मैं तो जनाब खानदानी
2: गधों का इलाज करता हूँ।
3: दीजिए, आप लोग फिर लड़ने लगे।
0: बेटी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप लोगों ने क्या किया?
3: देखिए, रक्त दोष के साथ साथ वायु विकार और पित्त प्रकोप है, किंतु चिंता की कोई बात नहीं।
0: अच्छा,
3: साथ से असाध रोग भी कविराज मूढ़ानंद के चंगुल से बचकर नहीं जाता।
0: तो जल्दी कोई इलाज बताइए।
3: मतलब आप निश्चिंत रहें, मैं रोगिणी का कायाकल्प कर दूंगा।
2: और आपकी जेब का भी कायाकल्प हो जाएगा सर जी। कविराज मूढ़ानंद ठगानंद के नाम से मशहूर है।
3: और अपनी भी तो कहो सेठ जी, डॉक्टर बोगसचंद के चक्कर में फंसकर आज तक कोई रोगी जीवित नहीं बचा।
4: हाँ सेठ जी, हम डॉक्टर साहब और कविराज दोनों वजह फरमाते हैं। दोनों ही जहीर और ठग हैं।
3: हाँ बिल्कुल ठीक।
4: अरे खानदानी हकीम का जनाब, सिर्फ मैं हूँ खानदानी हकीम। ये देखिए, ये लीजिए एक पुड़िया सोंठ की, फौरन गर्म पानी के साथ खा लीजिए, पलक झपकते ही मर्द काफूर हो जाएगा।
0: मगर हकीम साहब,
4: हाँ जी
0: मरीज मैं नहीं।

0: मेरी बेटी है ना।
1: तो क्या हुआ, एक बार हकीम साहब ने गधे को दवा खिलाकर धोबी का मजदूर कर दिया।
2: हाँ, और धोबी ने प्रसन्न होकर वो गधा इन्हें पुरस्कार में दे दिया।
1: और उसी पर सवार होकर आजकल हकीम साहब दूर दूर तक मरीजों को देखने जाते
0: हैं। सुनिए तो मेरी बात, आप लोगों की नोक झोंक मेरे लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। अब मेहरबानी करके ये लीजिए अपनी फीस, और आप भी लीजिए अपनी फीस,
1: और
0: तशरीफ ले जाइए
3: के लिए दवा।
0: अजीब नामासूलों से पाला पड़ा।
4: चाचा जी, क्या बताया उन लोगों ने?
0: अरे वे लोग गधे थे दुलारी।
4: मैं तो पहले कह रही थी,
0: लगता है मेरी रूपा को मन कोई दूर कर नहीं पाएगा।
4: चाचा जी, आप कहें तो मैं एक डॉक्टर को ले आऊं।
0: बेटी तू भी चलाएगी।
4: एक नया डॉक्टर आया है, उसके हाथ में बहुत यश है, भगवान ने चाहा तो उसका हाथ लगते ही रूपा ठीक हो जाएगी।
0: अरे तो जाना, जब मेरा मुंह बता रही है, जाकर जल्दी से बुला ला। और देख बेटी, फीस पहले से तय कर लेना, नहीं तो बाद में
4: मैं सब पक्का कर लूंगी। अभी गई और अभी आई।
0: अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी रूपा को भी इसी वक्त बीमार होना था। अरे भगवान, सैकड़ों रुपया पर पानी फिर जाएगा। न जाने कौन से जन्म का बैर निकाल रही है ये।
3: अरे भाई कृपा डॉक्टर बोगस सर ने बताया कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है।
0: हाँ भाई, बेहोश पड़ी है।
3: अरे भाई, डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर क्यों रुपए बर्बाद कर रहे हो? मेरी बात मानो, पल भर में रूपा को होश आ जाएगा।
0: क्या करूं बताओ ना।
3: उसके कान में धीरे से कहो, बेटी देख तेरे लिए सुंदर सुंदर साड़ियां और जेवर लाया हूँ, बस वो आंखें खोल देगी, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है।
0: अपनी बकवास बंद करो। चंद्रा, मैं जानता हूँ तुम क्यों बार बार साड़ियों और जेवरों का जिक्र कर रहे हो।
3: अरे भाई, मेरा भला क्या स्वार्थ हो सकता है इसमें? मैं तो
0: तुम साड़ियों और जेवरों का धंधा करते हो नहीं? बोलो करते हो नहीं? बोलो।
3: तो
0: अपनी दुकान का रहतिया माल मुझे बनाना चाहते हो? मगर कान खोल कर सुन लो उधार चंद।
3: हाँ, बोलो।
0: मेरा नाम भी कृपण चंद है। मैं तुम्हारी बात में फंसने वाला नहीं हूँ।
3: लेकिन मेरी बात तो सुनो।
0: मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बेटी है, जो बिना स्वार्थ के दौड़ धूप कर रही है। चले जाओ, जाओ।
3: ठीक है, अब मुझे क्या?
0: हाँ, जाओ दूर कहीं का। मुझे उल्लू बनाने आया था। अरे बाप रे, आया आया आया आया, अभी तक दुलारी नहीं आई। देखो देखो देखो जरा रूपा का क्या हाल है।
4: चले आइए प्रेम बाबू, चाचा जी अंदर हैं।
5: मैं एकदम डॉक्टर लग रहा हूँ ना।
4: मगर जरा सोच समझ कर बात करिएगा, चाचा जी बड़े काइयां हैं, कहीं पोल खुल गई तो आपका पत्ता तो गोल होगा ही, मेरी भी खैर नहीं रहेगी।
5: मेरी एक्टिंग देखकर तुम तंग रह जाओगी, लेकिन अगर रूपा ने गड़बड़ी कर दी तो?
4: रूपा को मैंने सब कुछ समझा दिया है, बस आप चाचा जी को किसी तरह की शक न होने दें। बस
5: फिक्र ना करो तुम, मैं बेटी के साथ साथ बाप का भी इलाज करती हूं।
0: अरे बेटी, दुलारी दुलारी रूपा की हालत
4: अब ठीक हो जाएगी चाचा जी, डॉक्टर साहब आ गए हैं।
0: हाँ। अरे ये डॉक्टर है
4: क्यों?
0: एकदम छोकरा
5: श्रीमान जी।
0: ये क्या इलाज करेगा?
5: आप मुझे मामूली डॉक्टर ना समझें।
0: अच्छा,
5: मैं मनोचिकित्सक हूँ।
0: ये क्या बला है जी?
5: ना मैं सुई लगाता हूँ। अच्छा? और ना मिक्सचर देता हूँ, ना नब्ज देखता हूँ और ना आला लगाता
0: हूँ। कैसे इलाज करते हो जी तुम?
5: जी चेहरा देखकर श्रीमान जी, मैं आपका चेहरा देखकर आपकी बेटी का मर्द बता सकता हूँ।
0: अच्छा
5: जी। हाँ,
4: हाँ चाचा जी, इन्होंने मेरी मौसी की ननद के सास की छोटी लड़की का इलाज इसी तरह किया था। अरे चाचा जी, इनके हाथ में जादू है, जादू।
0: तब तो मेरी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, देख लीजिए।
5: मैं मरीज के पास नहीं जाता श्रीमान जी।
4: मगर वो तो बेहोश है।
5: जी हाँ, है नहीं थी। मैं पिता का चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि पुत्री को होश आ गया है, जाकर मरीजा को ले आओ।
4: अभी लाई, अभी लाई।
0: कमाल है, वाह वाह वाह वाह, आप तो डॉक्टर नहीं जादूगर है।
5: जी नहीं, भगवान का दास हूँ, उसी की कृपा।

0: कुछ सिद्धियां मिल गई हैं। देखिए आपकी बेटी आ रही है।
1: मगर डॉक्टर साहब
0: जी,
1: चेहरा अभी भी पीला है। आया आया आया, कितनी दुर्बल हो गई है, देखिए ऐसे बिल्कुल देख के चल नहीं पाती।
0: सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए।
2: लीजिए, मरीज आ गई।
0: ठीक है, मुझे इनसे बातें करने दीजिए। अब आप लोग
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मैं मैं मैं मेरे सामने ही बातें करो।
2: मगर चाचा जी ये ठीक नहीं है, आपके सामने रूपा खुलकर बातें नहीं कर पाएगी।
1: लेकिन मैं अपनी बेटी को जवान डॉक्टर के पास अकेले नहीं छोड़ सकता।
0: डॉक्टर पर अविश्वास नहीं करना चाहिए श्रीमान जी।
1: श्रीमान जी, विश्वास तो मैंने कभी अपने बाप पर भी नहीं किया।
2: चाचा जी आइए, हम लोग उस कोने में चले, रूपा आपकी आंखों के सामने रहेगी।
1: ये ठीक है, जाओ डॉक्टर जाओ। देखो
0: मैं आ गया,
2: मेरी प्राण
1: दुलारी,
2: मेरी आंखें तुम्हें
1: डॉक्टर क्या कर रहा है।
2: अरे चाचा जी, रूपा से मर्ज की बातें पूछ रहे हैं।
1: अरे मगर वो तो एकदम सच कर खड़ा है।
2: तो क्या हुआ चाचा जी, रूपा की आंखें देख रहे हैं, जुबान देख रहे हैं, डॉक्टर को सब कुछ देखना पड़ता है ना।
1: डॉक्टर साहब
0: जी,
1: डॉक्टर साहब कुछ पता चला?
0: मैंने इलाज शुरू कर दिया है।
1: अच्छा अच्छा,
0: आपको फर्क नहीं नजर आ रहा
1: जी? हाँ, पहले से तो ठीक लग रही है, चेहरे पर मुस्कान और ताजगी भी आ गई है। दुलारी बेटी, रूपा फोन पर ले जा, जाने
2: ले जा। अच्छा, अच्छा।
0: देखिए, दिमाग का असर जिस्म पर पड़ता है।
1: अच्छा
0: जी हाँ
1: जी,
0: अगर मन प्रसन्न है तो तन चंगा है, और मन में चिंता हुई कि शरीर को घुन लग जाता है। इसलिए मैं शरीर के रोग का निदान मानसिक स्थिति के आधार पर करता हूँ।
1: तो क्या मेरी बेटी का दिमाग खराब है?
0: जी हाँ
1: जी,
0: मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इनके दिमाग में शादी करने का
1: भूत। शादी?
0: मैं गलत कह रहा हूँ?
2: जी नहीं प्रेम बाबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर चाचा जी शादी के खिलाफ हैं।
1: बिल्कुल
0: होना ही चाहिए, शादी बर्बादी का मूल है।
1: क्या बात है, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी।
0: देखिए ना
1: जी, हाँ।
0: मैं इसीलिए अब तक कुंवारा हूँ।
1: क्यों नहीं?
2: तब फिर इसका इलाज क्या है, क्या रूपा ठीक नहीं होगी?
1: डॉक्टर, क्या मेरी बेटी हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी?
0: जी नहीं
1: जी,
0: इसका भी अचूक इलाज है।
1: जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
0: इनके दिमाग में जो गांठ लग गई है उसे खोलना पड़ेगा।
1: अरे अच्छा,
0: रोगी को प्रसन्न करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी इच्छा पूरी कर दे।
1: क्या मतलब कि इसकी हम शादी कर दे?
0: जी नहीं जी नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, शादी करने की जरूरत नहीं है।
1: फिर क्या करें बताइए।
0: देखिए, शादी करने का नाटक तो करना ही पड़ेगा।
1: नाटक?
0: जी हाँ, मेरा मतलब है रोग को जड़ से उखाड़ने के लिए ये जरूरी है कि मरीजा को ये यकीन हो जाए कि उसकी शादी की जा रही है।
1: आपका मतलब है कि?
0: हाँ हाँ, नकली शादी कीजिए, शादी का ढोंग रचाइए।
1: मगर डॉक्टर, ये कैसे मुमकिन है?
2: इसमें कठिनाई क्या है चाचा जी, नाटक ही तो करना है।
1: अरे बेटी, मगर नाटक के लिए नायक भी तो चाहिए। दूल्हा कौन बनेगा? हाँ बोलो, दूल्हा कौन बनेगा?
0: हाँ, ये समस्या।
1: हाँ, वही वही ना।
2: डॉक्टर साहब
0: जी,
2: आप चाहें तो समस्या हल हो सकती है।
0: वो कैसे?
2: आप ही दूल्हा बन जाइए। बोलिए चाचा जी, क्या राय है आपकी?
1: हो तो सकता है, लेकिन
2: अरे लेकिन लेकिन छोड़िए चाचा जी, जो करना है जल्दी कीजिए, रूपा अंदर पहुँच कर फिर शिथिल पड़ गई है।
0: देखिए, इलाज फौरन होना चाहिए, नहीं तो मरीजा हमेशा के लिए पागल हो जाएगी, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती।
2: डॉक्टर साहब, आप कृपा करके हमारी विनती माननी, दूल्हा बनकर शादी का नाटक रचा दे, मैं अभी रूपा को लाती
1: हूँ। बचाइए डॉक्टर, मेरी बेटी को बचाइए डॉक्टर, जैसे भी हो बचा लीजिए। डॉक्टर, आप चाहेंगे तो दूल्हा बनने की फीस अलग से दे दूंगा।
0: ठीक है, इंसानियत के नाते मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं।
1: वेरी गुड गुड,
0: रोगी का उपचार करना डॉक्टर का परम पुनीत कर्तव्य।
1: सही है, सही है, बिल्कुल सही।
0: नाटक सुखांत हो, मैं यही कोशिश करूंगा।
2: रूपा आ गई चाचा जी।
1: बहुत अच्छा बेटी, नौजवान पसंद है, मैंने तुम्हारी शादी इसके साथ करने को।
2: क्या ये सच है पिताजी?
1: हाँ पसंद है।
2: तो आप शादी के लिए सहमति दे रहे हैं?
1: सच्चे दिल से बेटी, बेटी की खुशी में तो आपकी खुशी है।
2: मैं भी पंडित जी को बुलाकर लाती हूँ।
1: अरे सुन दो।

0: दादी, अरे पंडित जी की क्या जरूरत है, ये तो नाटक है, नाटक।
1: मगर नाटक भी सही ढंग से होना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब के कंपाउंडर को पंडित बनाकर ले आती हूँ।
0: अच्छा ठीक है, जाओ। बेटी बेटी, अब तो तुम अपने पिता से नाराज नहीं होना।
1: नहीं, लेकिन
0: बेटी लाओ तो अपना हाथ। ऐसे हाँ, और भाई तुम भी अपना हाथ।
1: लेकिन वो
0: अरे नाटक अच्छा जा रहा है, चलवाते क्यों? ला बेटी हाथ तो। हाँ ए जिनो, अपने हाथ से मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया।
1: हाथ छोड़ना मत, इसी तरह पकड़े रहो, पंडित जी भी आ गए हैं।
2: वाह जजमान वाह। अरे बिना पंडित लठानंद के ब्याह कैसे हो सकता है?
0: ये तो ठीक है।
2: जजमान मैं कराऊंगा ब्याह।
0: लेकिन पंडित जी, पंडित जी, अरे ये तो नाटक है।
2: अरे नाटक तो सारी सृष्टि में हो रहा है जो है जजमान है। कहा है ये संसार जो है ये रंगशाला है जिसमें हम आप सब अभिनेता है। तो जजमान वरवधु का हाथ आपने ही मिलवाया था ना?
0: जी हाँ बिल्कुल।
2: तब ठीक है, तब ठीक है। तो बच्चा लोग अब तुम जरा इसके आसपास फेरे लगा लो जो है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनु हरी। समझ लो यजमान, हमारे भी पल कहीं है। हाँ सदा से भाग्यवती रहो, सदा से भाग्यवती रहो। हाँ यजमान, अब सुनिए यजमान, अब आप कन्या और भर को आशीर्वाद दे दे जो है और कहें कि ये जोड़ी जुग जुग बनी रहे।
0: मेरी बात तो
1: चाचा जी, आशीर्वाद में कंजूसी कैसी, दीजिए ना। नाटक पक्का होना चाहिए।
0: पक्का होना चाहिए, बिल्कुल। मैं आशीर्वाद देता हूँ। बोली ये जोड़ी
3: चल भाई वाह, यानी कि चट मांगनी और पट ब्याह भी कर दिया तुमने। अरे और हमें खबर भी नहीं भेजी। मैं अभी जाकर साड़ियां और जेवर।
0: अरे उसकी जरूरत नहीं है भैया, बैठो तुम, बैठो।
2: अच्छा अच्छा जी मैं बोले तो अब हमारी रक्षणा तो मेरे जाए जो है।
0: कैसी रक्षणा? शादी तो
1: दे दीजिए दक्षिणा चाचा जी, पंडित जी ने कैसे ढंग से ब्याह कराया है।
2: ये क्या केवल भीषाने पैसे जो है? अरे राम राम जब जजमान, एकदम पक्की शादी कराई है, कम से कम सवा 5 रुपए तो दीजिए।
0: मैं अब एक कानी कौड़ी नहीं दूंगा, ये समझ लीजिए। और लेना हो तो लो, नहीं तो उसे भी लौटा देना।
2: अरे तुम नाराज क्या होते हैं जजमान, मैं जाता हूँ।
4: अब हमें भी आज्ञा दीजिए, चलो रुपा।
0: अरे तुम लोग कहाँ जाओगे भाई?
1: शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है पिताजी, वहीं जा रहे हैं।
0: ये क्या मजाक है? देखा तुमने, देखा कल की छोकरी हमें बना रही है।
3: अरे इसमें बनाने की क्या बात है? अरे भाई जब शादी तुमने कर ही दिया है किरमन चंद, तो उसे विदा भी कर दो।
0: कैसी शादी, कैसी विदा? अरे उदासन तुम नहीं समझते भाई, तुम नहीं समझते। अरे ये शादी तो सिर्फ मेरा मतलब है कि वो इलाज के लिए शादी का नाटक किया गया था। देखते नहीं, देखो देखो मेरी बेटी की तबीयत एकदम ठीक हो गई।
3: इलाज नाटक भाई, ये सब क्या चक्कर है? यानी कि
4: अब हमें क्या मालूम, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे को प्यार करते हैं। आज पहली बार मैं इनसे मिला और मैंने रूपा से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। इन्होंने कृपा करके अपनी सहमति दे दी और हमारा ब्याह हो गया। चलो रूपा।
0: अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे हाँ भैया कृपण चंद गए।
1: जाने भी
0: तो जाने तो क्या हुआ? उदाजन के बकवास, ये बिल्कुल बकवास।

0: उधार से ये डॉक्टर था डॉक्टर मेरी लड़की को ले भागा, मेरी लड़की को ले भागा उधार से। मुझसे कहने लगा कि नए ढंग से इलाज करूंगा। दुलारी से पूछ लो,
1: दुलारी क्या बात है?
2: कुछ नहीं पिताजी, रूपा प्रेम बाबू को चाहती है,
1: ठीक है,
2: मगर चाचा जी शादी करने को तैयार नहीं।
0: बिल्कुल,
2: इसीलिए हमें बीमारी और इलाज का नाटक करना
0: नाटक।

0: करना
1: भाई कृपाण चंद, आज बच्चा तुम अपने ही जाल में फंस गए।
2: भगवान, अरे ये क्या हो गया? मैं तो समझता था शादी का ढोंग पुराने मर्ज का नया इलाज है। मेरी बेटी के साथ साथ मेरी दौलत पर भी प्रेम का अधिकार होगा। अरे अरे भाई उधार चल।
1: हाँ कृपाण चल।
2: अरे संभाल लो।
1: हो गया।
2: अरे चक्कर।
1: हाँ चक्कर चक्कर।
2: अरे नहीं अरे चक्कर।
3: पुराना मर्ज नया इलाज, ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। मूल लेखक मौलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी। ये आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस समय हमारे साथ हैं जाने माने रंग निर्देशक थिएटर की दुनिया में जिनका बहुत अमूल्य योगदान है पद्मश्री वामन केंद्रे साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: बहुत लंबे इंतजार के बाद आपका विविध भारती आना हुआ है
2: जी। जी
1: इन स्टूडियोज में आके कैसा महसूस होता है सर?
2: मैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है कि आकाशवाणी से जो पुराना रिश्ता है, मुझे लगता है कि मनोरंजन के जब साधन सीमित थे
1: जी,
2: उस समय की सारी यादें जो हैं, चाहे वो बीड आकाशवाणी केंद्र था, पहले तो नहीं था पर बाद में हुआ, तब का औरंगाबाद और अभी का छत्रपति संभाजी नगर में जो आकाशवाणी केंद्र था उससे काफी जुड़ा हुआ था मैं, फिर मुंबई आकाशवाणी केंद्र, फिर दिल्ली आकाशवाणी केंद्र। और एक ऐसा याद आता है कि नाटक के अलावा कभी कभी बीच में सिनेमा एक माध्यम था, नाटक एक था, और दूरदर्शन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से आकाशवाणी में आना जाना रहा है और वही एक जो संस्कार है, चाहे वो छोटे छोटे जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे, सुबह की धुन से उठना होता था और वो अभी भी कान में गूंजती हैं, तो आकाशवाणी का जो रिश्ता है वो मुझे लगता है कि बड़ा नॉस्टैल्जिक रिश्ता है। तो यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद कुछ बिना कैमरा
1: जी जी जी
2: कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ बातचीत होगी, इसलिए बड़ा आनंद आ रहा है
1: जी। आप एक ऐसे गांव से आते हैं, वहां आपके बचपन में तब क्या रेडियो था?
2: रेडियो था, मैं जब छोटा था तब रेडियो था, पर ऐसा था कि गांव में सिग्नल्स नहीं आते थे, पर जैसे

0: चौथी क्लास के बाद में, पांचवी क्लास में, थोड़ा सा गांव छोड़ के, बिल्कुल छोटा सा जो देहात है उसको छोड़ के, एक जिला परिषद के स्कूल में आया। उस गांव का नाम था नेकनूर।
1: जी सुंदर नाम है।
0: हाँ, तो तब वो कहीं ना कहीं एक रेडियो भी बजता है पानपट्टी पे खासकर।
1: अच्छा, क्या बात है,
0: हाँ,
1: क्या बात है
0: और बहुत मशहूर प्रोग्राम तो था बीना का गीतमाला, तो वो
1: जी।
0: तो बिल्कुल दिल हाथ में पकड़ कर सुनते थे।
1: वाह,
0: और वो एक रेडियो होता था और उसके इर्द गिर्द 200-300 लोग बैठ के सुनते थे। तो ये सारी जो स्मृतियां हैं अभी भी आकाशवाणी की, और ऐसा लगा था कि ये माध्यम खत्म होगा टेलीविजन के आने की वजह से, इतने चैनल खुलने की वजह से, पर क्योंकि ये भी एक माध्यम है, एक शक्ति है, व्यक्त होने की शैली है, तो ये तो मालूम था कि ये खत्म नहीं होगा। फिर वो सारे रेडियो मिर्ची और सारे जितने भी चैनल वापस आ गए, और जब आप कैमरे के सामने नहीं होते हो, आप जर्नी में हो, कहीं टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो, कार में जा रहे हो, घर में हो, तो वो फिर दोबारा उसकी शक्ति जो है लोगों को पता चली, जिसको हम वाचिक अभिनय की शक्ति कहते हैं।
1: वाह
0: तो
1: जी,
0: मूल गांव में जहां मैं रहता हूं या मेरी फैमिली रहती है, वो वैसा ही है, पतरे के घर है, मिट्टी की दीवारें हैं, पहले तो झोपड़ियां होती थी, उसी में रहता था, मेरा बचपन तो उसी में गया।
1: तो पिता काश्तकार थे।
0: पिता मेरे यहाँ किसान थे, तो इसीलिए वो जो संस्कार है वो किसानी के या खेती के हैं या उस माहौल के हैं। तो ऐसा ही गांव है अभी भी, मुझे लगता है कि 8-10 साल पहले एक सड़क जैसे तैसे गांव तक पहुंची है,
1: जी,
0: तो इसीलिए वो अभी भी घर तक बहुत सीधे तरीके से हम पहुंच नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो काली मिट्टी वाला एरिया है।
1: जी,
0: मतलब आप खोदते जाओ जमीन में तो 8-10 फीट कोई पत्थर नहीं दिखता, मिट्टी ही मिट्टी है।
1: जी,
0: तो इसलिए बरसात में बहुत ज्यादा तकलीफ वाला है कि पैर फंसते रहते हैं, आप एक पैर फंसाओ और दूसरा निकाल के आगे डालो, फिर पहला निकालो फिर दूसरा, इस तरीके से। वो जब हम स्कूल में भी जाते थे बगल वाले गांव में, मेरे गांव में एक शिक्षक की स्कूल था,
1: जी
0: उस स्कूल को कोई बिल्डिंग भी नहीं थी।
1: मैंने सुना है पेड़ के नीचे पढ़ते थे।
0: यस, तो जो हनुमान का एक मंदिर था, और
1: जी
0: वो बहुत पुराना पत्थर वाला, वो पत्थर भी, वो क्या कहते हैं, बहुत तराशे हुए पत्थर नहीं होते थे, ऐसे ही हनुमान मंदिर के दीवार को लगाए और उसके सामने एक चबूतरा बनाया था ताकि लोग आके बैठे, और बहुत बड़ा इमली के पेड़ था उसके ऊपर,
1: जी
0: मतलब
1: जी
0: कई सैकड़ों साल पुराना। तो उसके नीचे उस चबूतरे पे हमारी स्कूल शुरू होती थी,
1: अच्छा
0: और जब बारिश आती थी तो बगल में एक चावड़ी बोलते हैं मराठी में,
1: जी
0: एक
1: जी
0: धर्मशाला टाइप थोड़ा सा एक पाइस पतरे की शेड था,
1: हाँ,
0: तो उसको दरवाजे नहीं होते थे, तो जो गांव की गायें हैं, भैंसे हैं,
1: घुस
0: बकरियां
1: जाते
0: हैं,
1: थे।
0: वो घुस जाते थे रात भर वहां, और फिर हमको सबको उसको हकाल के बाहर निकालते, सुबह 8-9 बजे स्कूल जब जाते थे तो वो सारा गोबर ये सब
1: साफ करना है।
0: साफ करके, उसके बाद बरसात पतरे के नीचे भरती थी। तो ऐसा था हमारा स्कूलिंग,
1: जी, तो
0: जिसको
1: यहां शिक्षा की असली ताकत समझ में
0: नहीं,
1: आती
0: मेरे समझ में आता है कि हम अब आज की तारीख में इतना स्कूल के बारे में सजग है, अवेयर है, पर पढ़ना हो तो आदमी कहीं भी पढ़ सकता है। मैं
1: बिल्कुल।
0: अपने अनुभव से तो कह ही सकता हूं कि जिला परिषद का स्कूल है, एक शिक्षक आता था, वो बीच में एक नदी थी, बाढ़ आ गई तो शिक्षक उधर है, हम नदी के इस किनारे, शिक्षक उस किनारे, तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता था, तो स्कूल नहीं होता था। पर बहुत अच्छे शिक्षक, एक जो शिक्षक आके गांव में रहे, उन्होंने शिक्षण का वातावरण बनाया। अब उनका मुझे नाम भी और सरनेम भी याद नहीं है, इतना पुरानी बातें हैं,
1: जी
0: पर एक शिक्षक जब आपके जीवन में आता है तो इंस्पायर करता है, कहीं भी पढ़िए। मुझे लगता है बिल्डिंग से शिक्षण नहीं होता है, पढ़ाने वाले से शिक्षण होता है और पढ़ने वाले से शिक्षण होता है। इसलिए ऐसे छोटे से गांव में जहां कोई खेल का माहौल नहीं है, जहां कुछ नहीं है, पर एक बहुत अच्छी चीज थी कि किसान के घर में पैदा होने की वजह, एक तो खेती की वजह से एग्रीकल्चरल बेस है मेरे जीवन का, तो इसीलिए कौन से पौधे को क्या कहते हैं, कौन से पौधे को क्या फल आते हैं, ये सारा का सारा जो ज्ञान है उस समय हुआ। फिर जानवर पंछी, ये सारा का सारा माहौल हो मेरे संस्कार का, एक्सपोजर का हिस्सा है। दूसरी सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जो हमारा फोक कल्चर है, लोक कलाएं जो हैं, वो किसान के घर के सामने जाए बिना, आंगन में जाए बिना उनकी रोजी रोटी नहीं चलती है।
1: जी
0: वो सुबह 4 बजे आने वाला जो कुड़मुड़िया बोलते हैं, 4 बजे आता है, 6 बजे वासुदेव आता है, फिर गोसावी आते हैं, डवरी आते हैं, गोंधली आते हैं, ये आता है, वो आता है, तो ऐसे सारे जितने

0: भी कल्चर को कैरी करने वाले मुसाफिर है या थे, वो किसान के आंगन में आके वो नाच गाना जो भी है उसका भिक्षा मांग कर वो अपना चरितार्थ चलाते हैं। तो हमारा सारा कल्चर जो है भारतीय वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है,
1: बिल्कुल
0: वर्तुल से चलता है। किस समय दिवाली आएगी, किस समय पंचमी आएगी, कब होली आएगी, कब फलाना आएगा, ये एग्रीकल्चर में जब किसान को कब फुर्सत होती है उससे वो कैलेंडर बंधा हुआ है। तो
1: बिल्कुल
0: उसका फायदा ये हुआ कि वहां कीर्तन है, भजन है, भारूड है। एक मेरे घर में ही था,
1: जी
0: मेरे एक चाचा तो कीर्तनकार थे और पिताजी को भजन और भारूड बहुत अच्छा लगता था। उनका मेन व्यवसाय तो ये था,
1: खेती
0: खेती था, पर वो अपने आनंद के लिए ये सारा करते थे। कभी भजन गाते थे एकादशी के दिन, कभी कहीं बगल के गांव में भंडारा लगा तो वहां बुलाते थे इन गांव वालों को, वहां जाके वो भारूड इनेक्ट करते थे संतों की कविताएं। तो गाते भी थे, नाचते भी थे और इनेक्टमेंट भी था। तो ये टोटल मुझे लगा कि मेरे गांव में पैदा होने का जो बड़ा मेरे जीवन में है, मेरे सोच में है, वो इसीलिए कि ये सारा मुझे मुफ्त में मिला। ये संस्कार, लोक कलाएं, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, चाहे तमाशा है, चाहे कीर्तन, जो भी है, मतलब एक मनोरंजन से प्रबोधन तक की जितनी भी लोक कलाएं हैं वो मुझे घर में बैठे बैठे देखने को मिली, उसकी अनुभूति मिली, उनका संस्कार मिला। तो ये छोटा गांव जो है वो मेरे जीवन का अहम हिस्सा है और इसीलिए मुझे मालूम है उस गांव का योगदान मेरे अपब्रिंगिंग में, मेरे करियर में क्या है। इसलिए मैं अभी भी गांव से जुड़ा हुआ हूं।
1: जी
0: मेरी माताजी गांव में रहती हैं, मेरे भाई, मेरे चाचा जी सारे गांव में रहते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, कहीं और जगह पे बिखरी हुई फैमिली है, लेकिन उस गांव से मेरा रिश्ता अभी भी कायम है।
1: क्या बात है, गांव और पढ़ाई लिखाई और ये सारी बातें हो रही है तो यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। मुझे लगता है यहाँ ये गाना ठीक रहेगा, लिखोगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे।
0: ओ
1: ये गाना सुनते हैं।
0: यस।

अलिफ से बोलो क्या होता है।

0: क्या होता है?
1: टीचर
0: तकदीर।

0: वामन केंद्र जी, सुंदर बात आपने कही कि एक पूरी लोक कलाएं किसान के घर उसके द्वार तक आती हैं, और जो खेती का एक पूरा चक्र है उसके आधार पर हमारे त्योहार बंधे हुए हैं,
1: जी
0: कैलेंडर बंधा हुआ है, और उस तरह से जीवन चलता है, उस तरह से पर्व और उत्सव चलते हैं, और वो हमारे जीवन का हिस्सा है और कलाएं उसमें अंतर्निहित है। भारूड आपके बचपन और आपके संस्कारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आपने बताया पिताजी को भी बहुत ज्यादा वो लुभाता था, उससे जुड़ी यादें बांटिए।
1: नहीं, मुझे लग रहा है कि भारूड एक ऐसी कला है जो संतों ने जो कविताएं लिखी है, जो कविताएं ऐसी कविताएं जिनका इनैक्टमेंट भी हो सकता है, ऐसी कविताओं को भारूड कहते हैं। बहुरूढ़
0: जी
1: जो लोगों में रूढ़ है, प्रसिद्ध है, ऐसी कविताओं का उसमें गाना भी है,
0: जी
1: नृत्य भी है, और उसके बाद इनैक्टमेंट भी है। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसको एक आधे आधे घंटे का एक भारूड के ऊपर इनैक्टमेंट, आधा घंटा पौना घंटा जितनी जितनी कैपेसिटी है, क्योंकि होता तो सारा इम्प्रोवाइजेशन है, वहां कोई
0: हाँ
1: स्क्रिप्ट तो लिखा होता नहीं है। स्क्रिप्ट तो जो है वो संत एकनाथ ने लिखे भारूड है, जनाबाई ने लिखे भारूड है, तुकाराम जी ने लिखे भारूड है, ज्ञानेश्वर ने लिखे कुछ भारूड है। तो ऐसे जितने भी ये संत परंपरा है महाराष्ट्र की, मुझे लगता है उनकी कविताओं का एक तरीके से सअभिनय सादरीकरण है ये।
0: जी
1: तो वो और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें मस्ती भी है, नाचने नचवाने वाला रिदम भी है, ताल भी है, लय भी,
0: अभी
1: सामाजिक जागृति भी है और प्रबोधन भी है। तो इसीलिए वो फॉर्म बहुत, और वो कंटेम्प्रेरी है, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
0: वाह
1: मतलब इतना लचीला भी है वो, क्योंकि वो जो किसान है या मजदूर है या जो भी इनैक्ट कर रहा है वही, और उसमें इनफॉर्मेलिटी बहुत है, मतलब कोई औपचारिकता नहीं है। मतलब एक बड़ी बड़ी मूंछ वाला आदमी औरत का काम कर रहा है
0: ओके
1: मान लीजिए, और चारों तरफ ऑडियंस बैठी हुई है, हस्बैंड और वाइफ के बीच का झगड़ा हो रहा है यहाँ पर, जो गीत से भी हो रहा है और गीत के बाद एक्चुअल संवाद में भी आ रहा है। तो औरत बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो एक पल्लू चाहिए, तो किसी ने ओढ़ी हुई शाल है उसको खींच लिया, कमर में जो धोती पहना हुआ है उसने अपने कमर में एक उसका सिरा जो है खोच लिया, और ऊपर से पल्लू,
0: डाल
1: सर के
0: लिया
1: ऊपर से पल्लू लगा लिया, और एक बिंदी लगा ली या कुमकुम लगाते थे, हो गया वो औरत।
0: वाह
1: बड़ी बड़ी
0: वाह
1: मूंछ है, इतनी लंबी दाढ़ी है, फिर भी उसको औरत मानते थे लोग।
0: यस
1: और जो दूल्हा है वो गांव का है, तो वो कोई लकड़ी ले ली है, लाठी ले ली है, और कोई एक पगड़ी बांध ली कि हो गया वो दूल्हा। तो और वो दोनों के बीच में कभी गाते हैं, कभी संवाद प्रस्थापित हो रहा है, ह्यूमर हो रहा है, हजारों की तादाद में लोग आ गए, वो लोटपोट हो रहा है, और उसमें से प्रबोधन तक पहुंच रही है बातें।
0: क्या बात है।
1: मनोरंजन के द्वारा प्रबोधन तक पहुंचाना, जीवन के किसी एक वृत्ति प्रवृत्ति के सामने उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना और हंसाते गुदगुदाते हुए ये सब करने वाला फॉर्म है, इसलिए कोई भी आदमी उसकी तरफ आकर्षित होगा। मेरे पिताजी को कई सैकड़ों भारूड याद थे और वो परफॉर्म भी करते थे, वो कोई उनका व्यवसाय नहीं, अपने आनंद के लिए परफॉर्म करते थे। जो मेरा गांव है दरडवाड़ी, वहां की भारूड मंडली बहुत फेमस थी, तो वो पंचक्रोशी जो है वहां 150 गांवों में कहीं भी ये भंडारा होता था तो भारूड मंडलियों को हर गांव के बुलाया जाता था, न्योता दिया जाता था। तो वो न्योते में ये जब जाते थे तो पूरा हंगामा करके आते थे।
0: वाह
1: वहां एक तरीके का आपने एक भारूड गाया, सवाल जवाब जैसे होते हैं कुछ
0: हाँ
1: मनोरंजन की लोक कलाओं में, ऐसे भारूड के द्वारा एक दूसरे को तू हारेगा क्या मैं जीतूंगा, या मैं
0: जैसे
1: आज जीतूंगा कि आप
0: जैसे
1: हारोगे,
0: कव्वालियों के
1: जैसे
0: मुकाबले हो।
1: कव्वालियों के मुकाबले में भी होता
0: ओहो
1: है। तो ये सुबह जब सूरज उदय होता था तब तक चलता था,
0: हो पूरी रात।
1: पूरी रात, और पूरा एक उस गांव की जो भंडारे में 4-5 हजार तो लोग आते ही आते थे। तो ये मुझे लग रहा कि इस फॉर्म ने मुझे बहुत आकर्षित किया, और वो आज भी मेरे आकर्षण का केंद्र वैसे ही है।
0: बचपन में याद हो गए थे भारूड।
1: बहुत सारी भारूड मैंने प्रस्तुतियां कभी नहीं की, आई वॉज साइलेंट एडमायरर और साइलेंट ऑडियंस,
0: अरे
1: तब
0: वाह
1: मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस क्षेत्र में आऊंगा और कुछ हो जाएगा। ये तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि अब उधर जाना चाहिए, जो मेरे अंदर का

0: संस्कारित कलाकार है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो कहीं ना कहीं उछल मार रहा था या वो कुछ उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। तो वो बारूद वाले तो बहुत सारी चीजें हैं।
1: बिल्कुल, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: लेकिन कठिन थी पढ़ाई, आपने जैसा कि बताया, अपने गांव से दूर जाके
1: माहौल नहीं था, पढ़ने का माहौल नहीं था जो मेरे साथी थे। जैसे अब नेकनूर से सातवीं तक पढ़ लिया मैंने
0: जी,
1: और फिर आठवीं से आगे मेरे चाचा के साथ मैं रहता था एक रूम किराया करके, नेकनूर गांव में एक रूम में तीन चार बच्चे अपना उसको किराए से लेते थे, उसी में चूल्हा, उसी में ईंधन लाना, लकड़ियां लाना, उसी में चूल्हा जला के खाना बनाना, अपने कपड़े खुद धोना, तो इसलिए स्वावलंबन भी उस सारी जीवन शैली का एक हिस्सा हो गया। पानी भी लाना, सब कुछ आपको अपना अपना करना पड़ता था। तो खाना भी जब बनाते तो इकट्ठा, कोई सब्जी काट रहा है तो कोई रोटियां बेल रहा है, तो कोई तवे पे सेक रहा है, तो कोई सब्जी बगल वाले चूल्हे पे चढ़ा रहा है, तो इस तरीके का वो माहौल था। तो मेरे चाचा जी मेरे साथ थे, तो उनका वहां एसएससी खत्म हो गया, अब उनको आगे कॉलेज में जाना था, तो बीड जो जिला है हमारा,

0: वहां पर उनको जाना पड़ा क्योंकि उनके पास यहां पढ़ने के खत्म हो गई कक्षा। तो फिर ऑब्वियसली मैं उनके साथ चला गया क्योंकि चाचा साथ में है, तो थोड़ा सा ये भी सुकून भी था घर वालों को भी। तो 8वीं से फिर मैं बीड जिले पे आ गया, और जिले पे आने का मतलब ये है कि थोड़ा सा माहौल भी बड़ा बन गया, जिले का स्तर है तो एजुकेशन भी थोड़ा अलग किस्म का था, थोड़ा बड़प्पन या एक दृष्टि का विस्तार होने की जो संभावनाएं बनती है छोटे गांव से थोड़ा अर्बन एक टाउन में जाओ, टाउन से थोड़े बड़े टाउन में जाओ। तो फिर बीड में मैंने 8वीं से लेके ग्रेजुएशन तक मैं बीड में ही पढ़ता रहा।
1: जी, एक नई दुनिया खुली
0: एक
1: बीड़
0: नई
1: शहर में
0: दुनिया
1: आने के बाद।
0: खुली। एक क्या होता था कि यहाँ साइकिल ही बहुत ज्यादा एक ग्लैमरस चीज होती, किसी के पास साइकिल है तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो साइकिल से अब रिक्शा तक आ गए हम लोग। अरे रिक्शा भी होती है, कार भी होती है, पूरे जिले के गांव में 3-4 कार होती थी, वो बड़े अमीर लोगों के पास होती थी। पर दूर दराज की गाड़ियों का आना जाना, लोगों से मिलना मिलाना, फिर एक क्या कहते हैं एक्टिविटी में हिस्सा लेना, तो जहां पर आप 200-400-500 बच्चों के साथ पढ़ते थे, अब अचानक मेरे कॉलेज में उस समय 4-4.5 हजार स्टूडेंट थे।
1: ओहो
0: दूसरा कॉलेज था एक हमारे ही बीड शहर में बलभीम कॉलेज, मैं पढ़ा हूं नवगण महाविद्यालय में, वहां 1-4.5 हजार थे। तीसरा एक बंकट स्वामी महाविद्यालय था, उसमें 2-3 हजार गांव गांव से आए और शहर के लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जिला स्तर पर आप जब आते हैं। तो मेरा हमेशा विजन जो बढ़ता रहा, छोटे 30-35 मकान के गांव से फिर 2-3 हजार वाले मकान के शहर में, छोटे से तालुका प्लेस भी नहीं था, अभी भी वो तालुका नहीं हुआ है, पर उस वाले शहर पे, वहां से फिर डिस्ट्रिक्ट। तो आपका जितना शहर का आकार बढ़ता है उतनी आपकी सोच का भी आकार बढ़ता है।
1: बहुत सही बात है।
0: उसके बाद फिर औरंगाबाद संभाजीनगर चला गया यूनिवर्सिटी के लिए, फिर वो और भी बड़ा है, पांचों जिलों का जो 5 जिले थे मराठवाड़ा में, तो कमिश्नर ऑफिस था वो, तो वो
1: जी
0: और भी बढ़ गया, वहां यूनिवर्सिटी भी थी। तो यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी बात होती है,
1: जी
0: 300-400 एकड़ में आप इतनी सारी बिल्डिंगें, इतने सारे डिपार्टमेंट, और पढ़ने पढ़ाने का बहुत बड़ा माहौल बन जाता है,
1: जी
0: कई सारे कॉलेजेस थे वहां। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो आपके पढ़ने का भी विस्तार होता है, सोचने का भी विस्तार होता है, और जीवन को आप जो सामना कर रहे हैं उस सामना का भी विस्तार होता है, तो जीवन अनुभव का भी तो विस्तार होता है।
1: एकदम
0: तो ये ऐसा वो माहौल था।
1: जी, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: जब आप बीड शहर में आ गए अपने चाचा के साथ, चाचा की अपनी पढ़ाई, आपकी अपनी पढ़ाई, वहां सिनेमा और रंगमंच की दुनिया से किस तरह का संपर्क बना देखने सुनने और समझने का?
1: नहीं, क्योंकि बीड नेकनूर में तो ये सारा कुछ नहीं था, जो गैदरिंग में एक आध छोटा मोटा नाटक होता था वही उसी में हिस्सा लेता था मैं। पर बीड में आने के बाद, बीड एक शहर बड़ा है तो दो तीन सिनेमा हॉल थे, तो सिनेमा देखने की शुरुआत हो गई। कोई एक रिश्तेदार आते थे और वो जब भी दो तीन महीने के बाद आते थे, हम सारे बच्चों को वो पांच आने का सिनेमा का टिकट निकाल के हम सब सिनेमा देखते थे।
0: वाह वाह, कुछ फिल्में याद है
1: बहुत
0: शुरुआती तौर पर?
1: शोले याद है, इतनी सारी फिल्में याद है, जितने भी हमारे हीरो हैं उस समय के पॉपुलर
0: जी
1: हीरोइंस हैं, हेमा मालिनी के सिनेमे देखे हैं, शर्मिला टैगोर के देखे हैं, रेखा जी के देखे हैं, कई मतलब सिनेमा के नाम, जंजीर देखा हुआ है, शोले देखा हुआ है, उसके पहले जितेंद्र जी के सिनेमा देखे हुए हैं, अपने ये जो पहलवान
0: दारा सिंह,
1: दारा सिंह के सिनेमे बहुत देखे हुए हैं। तो ये मतलब ऐसा होता था कि साल में पांच छह सिनेमा तो देख ही लेते थे पैसे
0: कितना
1: को,
0: रोमांचक था ये।
1: बहुत रोमांच। वो सिनेमा का टिकट निकालना अपने आप में एक जो कल्पना से परे शर्त होती थी, वो टिकट पाना,
0: वाह वाह
1: वो
0: वाह,
1: झुंड जो पड़ता था उस छोटी सी खिड़की में,
0: हाँ,
1: अरे बाप रे बाप, कोई किसी के ऊपर कंधे
0: चढ़
1: पे
0: रहा
1: चढ़
0: है।
1: रहा है, कोई जूते से सर पे खड़ा है, कोई उल्टा खड़ा होके, कोई बहुत स्किलफुल लोग होते थे वो टिकट निकलने वाले। तो ये सारा जो माहौल है वो देखा है। उसके बाद जो गैदरिंग में नाटक होते थे, खासकर कॉलेज में, मेरे स्कूल में कोई नाटक नहीं होता था,
0: जी
1: तो वो एक बहुत ज्यादा गंभीर पढ़ाई वाला था, पर वहां पर दूसरा माहौल था। वो एक जो माहौल में एक किस्म की जो मूवमेंट चली थी उस समय, विद्यार्थियों की समस्याओं के आंदोलन हुए, किसानों की समस्याओं के आंदोलन हो गए, वो मुझे लगा कि वो सारे आंदोलन का हिस्सा मुझे बनाया गया,
0: जी जी
1: क्योंकि मेरी तरफ देखने के बाद चुलबुला था, थोड़ा भाषण वाषण करता था, जो नेकनूर में ही स्कूल में पढ़ता था तभी से वो शुरुआत हुआ था।
0: तब तो आपने एक्टिंग भी की थी।
1: तब भी एक बार एक एक्टिंग की थी मैंने, जहां एक ही बार नाटक हुआ था तो उसमें एक्टिंग भी की थी,
0: लड़की बने थे।
1: लड़की बना था मैं, और अब वो नाटक का नाम तो याद नहीं, एक छोटा एकांकी नाटक था, पर
0: जी
1: उसमें लड़की बना था और मेरे से मोटी लड़की का फ्रॉक मैंने लाया था और सेफ्टी पिन लगाया था, तो सेफ्टी पिन डायलॉग बोलते बोलते खिसक गया, तो
0: ओ
1: पूरा नाटक जो है वो कहीं और चला गया।
0: जी
1: तो ऐसा भी एक वो अनुभव था। बीड में आने के बाद मुझे लगा कि वो जो माहौल मुझे दूसरा मिला, सोशल जागरूकता का माहौल मिला,
0: बड़ी आसानी से आप राजनीति में जा सकते थे।
1: हाँ जा सकता था मैं, और वो भी एक ऑप्शन मेरे सामने था राजनीति में जाने का, पर वो कॉलेज में आते आते ऐसा लगा कि जो राजनीति हमारी मोड़ ले रही है उस समय की, जो अंगड़ाई ले रही है, वो मूल्याधिष्ठित राजनीति नहीं रहेगी। बहुत अनुभव किया उसका और ऐसा लगा कि ये कुछ सही नहीं है। वो मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ा कि अब यहां जाना सही इंसान का काम नहीं है, पर जाना जरूर चाहिए वहां की राजनीति में। ऐसा लगा कि सही इंसानों का होना बहुत जरूरी है, सेंसिटिव लोगों का होना जरूरी है, वहां नहीं है ऐसा नहीं है, जो जाते हैं उसके बावजूद वो बदलना पड़ता है, वो दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का। तो इसीलिए मैंने चुना कि कहां पर जाके हम अपना करियर बना सकते हैं, जो मैं ये आंदोलन से काम कर रहा हूं, गरीबों के लिए लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, ये मुझे निरंतर आगे चलाना था। तो मुझे लगा कि

0: का जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट हजारों भाषणों से ज्यादा होता है।
1: जी
0: सिनेमा का इम्पैक्ट है वो कई कई गुना ज्यादा होता है, नाटक से भी कई गुना ज्यादा होता है। पर नाटक जो बहुत अच्छा नाटक अगर आप करते हो तो उसका परिणाम इतना प्रभावी होता है कि देखने वाला अंतर्मुख हुए बिना घर नहीं जा सकता। तो इसीलिए मैंने चुना कि नहीं, जो करियर करना है, जब कॉलेज में आया 2-3 साल गैदरिंग में काम किया और सेकंड ईयर में आया तो मैंने फुल लेंथ प्ले में लीड रोल किया, मुझे दिया गया। तो मैं तो इतना छोटा सा था और 2.5 अक्षर प्रेम का वो नाटक हो रहा था गैदरिंग के लिए और उसमें मेन रोल था प्रोफेसर बल्लाड़ का। अब वो रोल निभाने के बाद ऐसा लगा कि यार ये कुछ जादू है इस सारी प्रोसेस में, तो तय किया कि नहीं, नाटक में जाऊंगा तो मैं एक तो सेंसिटिव रह पाऊंगा, मैं अपनी हिसाब से जिंदगी जी पाऊंगा, अपनी सोच के नाटक करूंगा, जिनकी मैं आवाज बनना चाहता हूं, चाहे वो वंचित है, चाहे वो गरीब है, जो समाज के सीढ़ी के आखिरी सीढ़ी पे भी जिनको जगह नहीं है, ऐसे लोगों की आवाज बनने की संभावना इसमें ज्यादा है। तो इसलिए मैंने ये जानबूझकर ये चुनाव जो किया मैंने माध्यम का वो सोच समझ के किया, और इसीलिए फिर वहां जाना ही है नाटक में तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे,
1: जी,
0: तो इसीलिए फिर औरंगाबाद शिफ्ट हो गया और वहां 1 साल ड्रामा डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। वो इसीलिए कि मुझे अंतिम में जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही था, तैयारी करके जाना है मुझे, कोई इंटरव्यू में जाऊंगा तो वापसी का टिकट के पैसे लेके नहीं जाऊंगा,
1: वाह,
0: ये मन में तय किया था। और वाकई जब पहली बार इंटरव्यू दिया तो उसी इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया और वो भी टॉप 4 में सेलेक्ट हो गया। वो टॉप 4 में इसलिए मुझे पता चला कि मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली।
1: जी
0: अगर वो नेशनल स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो सेलेक्ट होने के बाद भी मैं एनएसडी नहीं जा पाता, क्योंकि मेरी जो आर्थिक परिस्थिति तब भी थी वो इतनी ही, क्या कहती थी, कि बहुत गरीब किसान का बेटा था तो इसीलिए वो संभव नहीं था वहां जाकर वो सारा खर्चा करना। पर वो स्कॉलरशिप मिली इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूं।
1: क्या बात है, बहुत लंबी यात्रा हमने आपकी देखी, यहां तक कि यहां एक गाने की जगह बनाते हैं। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब आप सिनेमा से परिचित हो
0: जी
1: रहे
0: जी
1: थे,
0: जी
1: आपने
0: जी
1: बताया कि इतने तरह की फिल्में देखी।
0: मुगले आजम देखी,
1: वाह, मुगले आजम का गाना सुन,
0: मुगले आजम का गाना सुनते हैं,
1: जब प्यार किया तो डरना
0: डरना
1: क्या।
0: क्या, क्या बात है।

0: मुगले आजम का ये गाना प्यार की बात करता है और कॉलेज के जमाने में लड़कों को किसी न किसी तरह से प्रेम तो हो ही जाता है। आपके साथ क्या मामला था?
1: बहुत हुआ, उसमें क्या है, शर्माने की क्या बात है। पर मैं फोकस्ड बहुत था,
0: जी
1: क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है और मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि मैं तो लीडर था,
0: जी
1: तो हमेशा 10-20 लोगों के बीच में रहने की आदत थी। तो इसीलिए वो वाला जो सिलसिला था, बहुत सारी लड़कियों से बातें होती थी, पर एक पर्टिकुलर फोकस हो के किसी के प्यार में पड़ो, वो वाला माहौल लगा कि ये ठीक नहीं है। इसके लिए और बहुत सारी जिंदगी पड़ी है वो करने के लिए। तो मुझे जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था। आकर्षण का केंद्र तो आप वैसे भी होते हो, अच्छा बोलते हो, मंचों से अच्छा बोलते हो, आपको मॉब मैनेज करने आता है, आपको ह्यूमन मैनेजमेंट पता है, तो आप लीड में हो तो अपने आप में लोगों के आकर्षण का केंद्र तो आप बन जाते हो। पर
0: जी
1: आपके आकर्षण का केंद्र कोई इंडिविजुअल बनने की वो क्या कहते हैं वो समय नहीं था, इसलिए मैं वो सारा पार करके फिर सीधा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गया।
0: क्या बात है। लेकिन इस दौरान आपने जो बुनियादी नाटकों की दिशा में जो काम किया, जो बीड में या औरंगाबाद में जाके किया, उसके बारे में बताइए।
1: नहीं, भीड़ में क्या था कि हम ये नाटक करते थे, कौन सा, गैदरिंग के नाटक
0: जी
1: करते
0: जी
1: थे।
0: जी गैदरिंग का मामला
1: उसके
0: था।
1: बाद हमारे एक मित्र श्रीराम बड़े ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सेलेक्ट हो गए।
0: जी
1: तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो वो सेलेक्ट हो गए वहां। तो उनका जो छुट्टियों में आना जाना होता था, तो हम उनसे सीखने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते थे। मैं लीडर था तो कॉलेज में समर वेकेशन में 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की कार्यशालाएं आयोजित करते थे। फिर उसका कोई एक नाटक होता था, वो फिर अभी जुलूस, मुझे याद आ रहा है, नाटक हमने किया बादल सरकार का,
0: जी
1: वो जुलूस के शहर भर में शो किए।
0: वाह,
1: अब ऐसा लगता है कि वो कितने लोगों को समझ में आ गया, रास्ते के आदमी को तो ठेठ बात होनी चाहिए। तो पथनाट्य भी बहुत सारे किए। तो इस तरीके के वो छुट्टियों के माहौल में एक दो नाटक तो करते ही थे। तो गंभीर नाटक क्या होता है, उसकी तरफ जो खिंचाव या आपका आकर्षण का केंद्र बना, गैदरिंग के नाटक से एंटरटेनिंग नाटक क्या होते हैं, उसका संस्कार अपने आप मिलता रहा।
0: जी
1: जो शिक्षक थे उस समय के, पढ़ाने वाले, नाटक या डायरेक्ट करने वाले, उन सबसे जो भी उनका आकलन था, वो बगल वाले जो कॉलेज होते थे उनके नाटक देखने जाते थे, तो वो क्या हमसे बेहतर करते हैं, ये तुलनात्मक अध्ययन भी होता रहा। तो पथनाट्य से लेके मनोरंजन का नाटक मैं भीड़ में ही समझ गया।
0: वाह वाह,
1: फिर वहां से मैं औरंगाबाद जब गया, तो मुझे किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन होना था, जहां पर राज्य नाट्य स्पर्धा के लिए नाटक होता था। पर मेरा टेम्परामेंट वो राज्य नाट्य स्पर्धा वाला भी नहीं था, और उनका अपना अपना ग्रुप में लोग होते थे, तो उनके साथ वो अपना काम करते थे। तो अचानक वहां एक दिन पता चल गया कि यहाँ दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत हो रही है।
0: ओ,
1: तो उनके कुछ मित्रों से मेरी जान पहचान हुई थी, मूवमेंट में था मैं, स्टूडेंट एक्टिविटी में था, तो जान पहचान तो हुई थी। तो एक हमारे साहेबराव गायकवाड़, ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे वहां के अंबेडकर कॉलेज में या मिलिन कॉलेज में, उनसे राबता था, आना जाना रहता था उनके घर में। तो एक दिन पता चला कि वो एक नाटक कर रहे हैं वहां, दलित साहित्य सम्मेलन पहली बार हो रहा है, और जो मिलिन कॉलेज के परिसर में हो रहा है, और उसमें दत्ता भगत लिखित आवर्त नाम का नाटक करना है, और वो हीरो की तलाश में है। तो मुझे बुलाया गया, और मुझे देखते ही अविनाश डोड़स प्रोफेसर थे वो भी, और मेरे ही गुरु त्र्यंबक महाजन,
0: जी
1: वो पढ़ाने आते थे, तो वो मुझे जानते थे कि ये बच्चा रॉ है पर बहुत

0: अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो रोल दे दिया और मैं वो रोल निभाया और उसके 10-15 शो हमने किए।
1: वाह,
0: तो दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत जो हुई उस मूवमेंट में एक काइंड ऑफ फाउंडर मेंबर के हैसियत से या एक एक्टर के हैसियत से मुझे मौका मिला। उसके बाद दलित थिएटर ने ही दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाटक खेला, थांबा राम राज्य तय,
1: ओहो,
0: रुकिए राम राज आ रहा है।
1: हाँ,
0: ये प्रकाश त्रिभुवन ने लिखा हुआ नाटक है, मेरे मित्र थे तो उन्होंने लिखा हुआ नाटक है। उसमें फिर बड़ा नाटक था ये लगभग, तो उसमें फिर लीड रोल करने का मौका मिला। तो ये दो जो फाउंडेशन प्ले हैं दलित थिएटर मूवमेंट के, महाराष्ट्र के और खासकर औरंगाबाद के, तो उस मूवमेंट का मैं हिस्सा बन गया और उस थांबा राम राज्य थे बहुत पॉपुलर हो गया वो
1: जी
0: नाटक। वो दिल्ली के श्रीराम सेंटर तक, जो फेस्टिवल होता था नेशनल फेस्टिवल, वहां तक पहुंचा। वो
1: वाह,
0: पीटर ब्रुक ने देखा,
1: गजब गजब,
0: हाँ, और पीटर ब्रुक ने उस नाटक की इतनी तारीफ की, दूसरे दिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आकर उनका व्याख्यान रखा था। तो उसके पहले दिन वाले शो में मैं लीड रोल कर रहा था, वो भी स्पेशल परमिशन लेके, एनएसडी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था।
1: अरे
0: हाँ, तो अचानक पीटर ब्रुक उस नाटक की तारीफ कर रहे, तो लोगों को लगा, अरे बाप रे, हमारा ही क्लासमेट उसमें तो कल लीड रोल कर रहा था, उन्होंने भी नाटक देखा था। तो इस तरीके से उस नाटक की तारीफें हुई। फिर यहाँ मुंबई में भी छबीलदास थिएटर में भी उसके शो हुए, क्योंकि हमें लगा कि ये केवल मराठवाड़ा तक रहना नहीं चाहिए, अलग अलग जाके उसको परफॉर्म, तो ये परफॉर्मेंस करते रहे। पर जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर मुझे उस नाटक को दुर्भाग्य से छोड़ना पड़ा।
1: जी
0: फिर और वो नाटक चलता रहा, किसी और ने रोल कर लिया, पर उस नाटक में उस संवेदना ने मुझे एक और एक मौका दिया कि जो वंचित है, जो दलित है, वो उस आदमी की आवाज बनना पड़ेगा थिएटर को, या कहीं भी, या गरीब किसान है, गरीब मजदूर है। तो ये मोमेंट में जो जो मैं कर रहा था, सौभाग्य से मुझे उसी मंच पे एक कदम रखने का मौका मिला जहां और किसी की आवाज बनकर आप उस माध्यम के द्वारा लोगों के मन में और क्या मस्तिष्क पे, या ये नाटक का अनुभव ले जा रहे हो और उनको अंतर्मुख करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये औरंगाबाद का दौर रहा। फिर जो छुटपुट छोटे मोटे नाटक एकांक किया, क्लास में किया, यहां किया, वहां किया, ये सारा अनुभव लेकर मैं दिल्ली पहुंच गया।
1: जी, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: एनएसडी की एडमिशन की जो प्रोसेस थी, क्योंकि आप बहुत छोटे बैकग्राउंड से आ रहे थे
1: जी
0: और
1: जी जी
0: एनएसडी राष्ट्रीय मुकाबला होता है,
1: जी
0: तो वहां आपने अपनी एक बहुत जोरदार उपस्थिति उस परीक्षा में दर्ज की, वो
1: जी
0: कैसे हुआ?
1: तो एक तो हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मालूम हुआ था, एक
0: जी
1: तो हमारा ही सीनियर श्रीराम बड़े वहां सेलेक्ट हुआ था, उसके दूसरे साल शिवदास घोड़के
0: जी
1: वो सेलेक्ट हो गए, तो दोनों मेरे मित्र थे, और तीसरे साल मैं सेलेक्ट हो गया। तो मैंने एक साल
0: जी
1: नाट्य शास्त्र से लेके जितना भी नाटक के ऊपर लिखा गया वो सब पढ़ा, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के, मतलब तब की मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और अब की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है।
0: जी
1: मैं
0: जी
1: हर दिन शाम को क्लास होता था क्योंकि इवनिंग डिपार्टमेंट था, तो दिन भर क्या करे, तो दिन भर लाइब्रेरी में जाके बैठता था और हर दिन एक नाटक पढ़ता था। ये
0: अरे
1: कसम खाई
0: बाप
1: थी
0: रे,
1: मैं, जब तक यहां रहूंगा मैं हर दिन एक स्क्रिप्ट पढ़ूंगा।
0: तो सैकड़ों नाटक पढ़ लिए
1: तो
0: होंगे।
1: मैंने तो, मुझे लगता है उस पूरे 8-9 महीने के दरमियान 200-250 नाटक तो पढ़ लिए।
0: बाप
1: मान लो किसी वजह से आज कोई मित्र आ गए, कहीं सिनेमा देखने गए, कोई नाटक देखने गए, कुछ हुआ और आज नाटक नहीं पढ़ पाया, तो दूसरे दिन दो पढ़ना।
0: वाह वाह वाह,
1: और उसके साथ साथ फिर जितना भी सैद्धांतिक पक्ष था नाटक का, चाहे वो मराठी की किताबें, मराठी में जो आए आर्टिकल्स है, हिंदी में जो आए, अंग्रेजी में जितना समझ में आता था, वो सारे आर्टिकल स्टैनिस्लावस्की से लेके जितनी भी थियरीज है वो सब पढ़ ली।
0: जी
1: समझ में कितनी आई वो बाद में पता चला, पर पढ़ तो लिया। और दुनिया भर किस किस्म का थिएटर होता है, नाटक होता है, क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में बहुत सारे जो मैगजीन आते थे, इंटरनेशनल भी आते थे, हमारे यहाँ भी नाट्य दर्पण निकलता था, कोई भरत शास्त्र निकलता था मराठी के भी, ये सारा पढ़ने का मौका मिला
0: तो एक
1: उस
0: सॉलिड बैकग्राउंड
1: यूनिवर्सिटी।
0: लेके
1: एक
0: गए।
1: सॉलिड बैकग्राउंड, और प्रैक्टिकली भी आप फोक से तो थे ही, फोक का था आपके ऊपर। और कॉलेज में 2-3 साल जो आइटम्स हमने किए, जैसे अम्बेसा गोंधड़ एक आइटम किया था मैं और श्रीराम बड़े, वो इतना पॉपुलर हो गया कि साल भर का जो हमारा शिक्षण का खर्चा उस एक आइटम से निकलता था। लोग एक्चुअली
0: पैसे
1: स्टेज पे
0: फेंकते थे।
1: इतने पैसे फेंकते थे।
0: वाह,
1: एक बार तो जो बड़ा कॉइन फेंका किसी ने, बड़ा रुपए का कॉइन होता था उस समय, वो ढोलकी के, हाँ,
0: पेट में लगा।
1: पेट में लगा और वो ढोलकी फट गई,
0: अरे बाप
1: उसके
0: रे।
1: बाद भी वो रुका नहीं है। तो ऐसी सारी, कोई 10 रुपया दे रहा है, मुझे याद है कि वहां तब हमारी जो कॉलेज की और खासदार रही है, एमपी रही है, थी वो केशर बाई, केशर काकू, हम उनको
0: जी
1: काकू बोलते थे अब, तो उन्होंने 100 रुपये का जो नोट दिया हमको, इतना बड़ा लंबा नोट था। अब
0: हाँ
1: वो 100 रुपया तो बहुत हो गए हमारे लिए, एक आदमी के लिए, एक साल के लिए,
0: जी,
1: उससे ज्यादा खर्चा होता नहीं था। तो ये सारा का सारा, तो वो भी एक अनुभव था। और ये सारा अनुभव लेके आप, और फिर मैंने आषाढ़ का एक दिन का मैं सेट डिजाइन किया था, उसका मॉडल भी लेके गया था,
0: मॉडल भी लेके गए।
1: मॉडल भी साथ में लेके गया, फिर कॉस्ट्यूम प्लेट्स कुछ की थी वो भी लेके गया, ताकि आप दिखाएं कि मुझे बाबा बहुत सारा है
0: अनुभव
1: और
0: है।
1: सीखने की इच्छा है और आगे बढ़ाइए। तो वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि कारण जी जो डायरेक्टर थे, बीवी कारण जी जो आगे भी मेरे गुरु रहे, तो वो थे। और मेरा इंटरव्यू बड़ौदा सेंटर में हुआ, तब मुंबई सेंटर हुआ करता था, पर वो उस समय पता नहीं किसी और कारण वो बड़ौदा में शिफ्ट हो गया, तो बड़ौदा में मेरा इंटरव्यू हो गया। और उसके एक 15-20 दिन के बाद चिट्ठी आ गई कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, आप फलाना तारीख को आके ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस शुरू हो रहे।
0: वाह क्या बात है। मैं इस पूरी यात्रा से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प बात पूछने वाला हूं, पर यहां एक गाना सुनना है।
1: ए आर रहमान का लगाइए
0: ठीक है, दिल से गाना सुनते हैं,
1: या
0: दिल से।

0: इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: उजाले उनकी यादों के।
2: हुणे तुसी सुन रहे सी विविध भारती मुंबई दे प्रसारण FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक शाम दे 5:25 हो रहे ने ते हुण वेला हो रहा है प्रोग्राम मिट्टी आवाज़ां मारदी दा।
3: मिट्टी वाजा मार दी।

जी श्रोतियो, प्रोग्राम मिट्टी वाजा मारदी विच आप सब दा स्वागत करदी हां मैं सुनीता। नाल ही श्रोतियो तुहानू दस दईए तुसी इस प्रोग्राम विच शिरकत कर सकदे हो साडे स्टूडियो दा नंबर 0164-2240-331 डायल करके। प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां इक प्यारे जे गीत नाल ते श्रोतियां दी फोन कॉल दी उड़ीक दे नाल।

0: जी, मिलते हाँ अपने पहले स्रोते कौन ने ते कित्थों ने। हेलो,
1: जी
0: हाँ जी, सत श्री
1: जी
0: अकाल जी।
1: सत श्री
0: थोड़ा प्रोग्राम च फोन करने लिए पहला तो बहुत बहुत शुक्रिया। ते हुणे दसो
1: अकाल
0: जी, कित्थों बोलते हो ते कौन बोलते हो?

0: हेलो, सत
1: हाँ, सत श्री अकाल जी।
0: श्रीकाल जी। कौन बोल रहे हो? तो कितों बोल रही हो?
1: नाजर सिंह बोल रहा हूँ, गलघाट वाली तो जी, तलवंडी साहब को।
0: नाजर सिंह जी, थोड़ा पहला तो प्रोग्राम विच फोन करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद जी, थोड़ा भी
0: ते
1: शुक्रिया। कोई
0: हाँ जी, ते मैंने ये दसो केड़ा गीत सुनोगे?
1: मोहम्मद सिद्दीक का ला दियो जी,
0: मोहम्मद सिद्दीक का कोई भी गीत ला दिए,
1: कोई भी ला दियो जी।
0: आप दी पसंद दा ला दिए।
1: हाँ जी, आप भी ला दियो जी।
0: ठीक है जी नाजर सिंह जी, ठीक है, थोड़ी
1: चंगा जी,
0: पसंद है गीत
1: मेहरबानी जी।
0: थोड़े रेडियो सेट ते आ रहे हैं, सुनो
1: ठीक
0: फिर।
1: है, धन्यवाद जी।

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन सीमा मेहरा। तां फिर सुनना ना भुलना, मिति 17 अगस्त दिन सोमवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार, जिथे हर कहानी साडे विरसे दी आवाज बनदी है।

0: जी 0164 2240 331 डायल हो चुके हैं। देखते हैं साढ़े अगले श्रोता कौन ने थे कितों ने। हेलो,
1: हाँ मैडम जी, सत श्रीकाल।
0: सत श्रीकाल जी, कौन बोल रहे हो ते कितों बोल रहे हो।
1: मैं जी मनकीर सिंह, उठे काम है के नेड़े घर जी।
0: स्वागत है जी थोड़ा प्रोग्राम च। फोन करने लिए पहला था, हुन ये दसो कि केड़ा गीत सुनना तुसी।
1: मैं पहले नराते मां मस्तीक संगीत गाउंदा जी।
0: पहले नराते मोहम्मद सदीक दा गीत सुनना
1: हाँ जी
0: तुसी, है ना।
1: हाँ
0: ठीक है
1: जी
0: जी,
1: हाँ जी
0: मलकीत सिंह जी थोड़ी फरमाइश ते ये गीत हाजिर है थोड़े रेडियो सेट ते। सुनते हैं सारे मिलके फिर।
1: हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम
0: बहुत
1: जी,
0: बहुत धन्यवाद जी फोन करने लिए।
1: शुक्रिया मैडम।

सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। जय हिंद।

20 मई 1918 जन्म 18 जुलाई 1948 शहादत। उम्र सिर्फ 30 साल। 30 साल एक मनुख की जिंदगी विच किन्ना कुछ हो सकता है। परिवार, सुपने, दोस्त, भविख, एक आम जीवन दियां किन्नियां ही ख्वाहिशां। पर पीरू सिंह जी ने अपने जीवन की सब तो वड्डी ख्वाहिश चुनी देश की सेवा। उन्हां दी इस अद्भुत बहादुरी लई उन्हां नूं मरण उपरंत परमवीर चक्कर नाल सन्मानित किया गया। परमवीर चक्कर भारत का सर्वोच्च सैनिक बहादुरी सन्मान है। यह जंग दे समय दुश्मन दे सामने असाधारण बहादुरी लई दिता जांदा। पीरू सिंह जी का नाम उन्हां बहादुर सैनिकां विच दर्ज हो गया जिन्हां ने देश की रक्षा लई अपनी जान तक वार दी।

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन सीमा मेहरा। ता फिर सुनना ना भुलना, मिति 17 अगस्त दिन सोमवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार, जिथे हर कहानी साडे विरसे दी आवाज बनदी है।

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन सीमा मेहरा। ता फिर सुनना ना भुलना, मिति 17 अगस्त दिन सोमवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार, जिथे हर कहानी साडे विरसे दी आवाज बनदी है।

जी, सारे ही श्रोतियों का स्वागत है प्रोग्राम शाम सुहानी विच। जी श्रोतियो, सानू पता है कि तुहानू बेसब्री नाल इंतजार रहिंदा है इस प्रोग्राम का, शाम सुहानी का, क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए अपनी पसंद के गीत सुन सकते हो तुसी ते दिल दियां गल्लां भी सांझियां कर सकते हो। तो इसलिए तुहानू डायल करना पवेगा साडे स्टूडियो का नंबर 0100-0164-2240-331। जो तक पहले श्रोता साढ़े नाल जुड़ते हैं, सुनते हैं एक प्यारा जिहा गीत कंवर ग्रेवाल ते कौरवी दियां आवाज़ां विच।

0: 22 दिन 22 दिन
1: 22 दिन हो गए।
0: हाँ जी
1: ठीक है जी। गीत जिहड़ा सुनना, इसकी कोई खास वजह है? दाना पानी ठीक है जी, ठीक है। फिर तुसी वखरा गीत सुनना चाहने हो तां करके।
0: हाँ जी
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी थोड़ा फोन करन दे लई, ते सुनदे हां थोड़ी पसंद दा गीत दाना पानी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो। हाँ जी मैडम जी, सत श्रीकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे हो, कित्थों बोल रहे हो?
1: मैडम परमजीत कौर बोल रही है बठिंडा तो।
0: परमजीत जी,
1: हाँ
0: केड़ा
1: जी
0: गीत सुनोगे तुसी?
1: मैडम, कोई भी सुना दो, सतिंदर सरताज का।
0: सतिंदर सरताज दा कोई भी गीत,
1: हाँ जी,
0: ठीक है जी?
1: जो रुक रहेगा तो वो सुना दो।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूर। थोड़ी पसंद है गीत, रेडियो सेट ते जरूर आऊंगा
1: ओके जी।
0: जी। धन्यवाद जी।
2: हुणे तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम शाम सुहानी दा पहला भाग, ते इसे दे अंतर्गत हुणे तुहानूं सुनवाउण जा रहे हां साडा अज दा एक विशेष स्पोंसर प्रोग्राम, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ते अज तुसीं इस प्रोग्राम दा 8वां भाग सुनोगे।
3: A talk on protection of women from domestic violence act, access to justice and Sakhi one stop center scheme by Ankita Sarkar, migration and asylum project, and Sanju Kumari, member one stop center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
4: घरेलू हिंसा का अधिनियम है, टीबी एक्ट है, ये 2005 में आया है। तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं

कोई उपाय नहीं था, अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का, और ऐसा तो नहीं है। तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे, लेकिन घरेलू हिंसा का अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासाई क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है, और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज है, जो रिलीफ है, वो चले नहीं जाते हैं, बट ये उनके साथ साथ उनको और मजबूत बनाने में कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम सोचे कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में आया क्यों, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो अगर हम एक्ट का थोड़ा मुआवजा करें तो हम देखेंगे कि इसमें पनिशमेंट जो है, सजा देना, इससे फोकस हटा के दूसरी चीजों पे फोकस कई ज्यादा दिया गया है कि हम सुरक्षा कैसे करें, रेसिडेंस का किस तरह से करा जाए, क्या टेम्परेरी कस्टडी की क्या बात हो सकती है, मॉनिटरी रिलीफ यानी कि पैसों के भरण पोषण की जो सुविधाएं हैं वो, इन टाइप के प्रोसेसेस कैसे किए जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीवी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक एक्ट के अंतर्गत, जब हमारे पास सजा देने की, जो जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा देने का मौका है। पहला सवाल ये कि पीड़िता को किस चीज की जरूरत है, और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या पीड़िता को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नजरिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और कोई भी पीड़िता को अगर वो घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज उनको जरूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन बर दिन डे टू डे भरण पोषण की जरूरत हो सकती है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं। सो पीड़िता की जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीवी एक्ट कई ज्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉज कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए वो डीवी एक्ट के अंतर्गत काफी आसान बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की जहां हम बात करते हैं, तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। और इसके लिए ना कि ये सिर्फ जरूरत है कि हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए। तो कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करे, और आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रोबोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, पीड़िता आके रिपोर्ट कर सके, तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जहाँ वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं ये सोचना भी जरूरी है। तो सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फायदा हो सकता है या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ, उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके, जिस चॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है तो हो सकता है शेयर्ड हाउसहोल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है, या फिर वो किसी तरह से अगर उसके साथ वापस घरेलू हिंसा होता है तो उसका प्रोटेक्शन मांग सकती है। हम संजू मैम से सुनेंगे कि पहले तो कि क्या एक्ट के अंतर्गत जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग प्रोटेक्शंस है सिर्फ सजा के बिना, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शंस है, और क्या ये प्रोटेक्शंस जब हम क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं तो हम मेनली मैरिज या मैरिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं।

0: क्या डीवी का प्रोटेक्शन मैरिज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है? कौन से और रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं डीवी के अंतर्गत? और इन प्रोटेक्शंस को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं, या पीड़िता किस तरह की रेमेडीज मांग रही है जिसमें ओएससी का मदद होता है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है नेविगेट करने के लिए।
1: यू वर लिसनिंग टू अ टॉक ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक्सेस टू जस्टिस एंड सखी वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of Department of Justice on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme.
2: Sakhi One Stop Center, Central Ministry की स्कीम है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसकी ओवरऑल इंडिया में 700 से 800 सेंटर्स रन कर रहे हैं। दिल्ली में ही 11 सेंटर्स हैं और ये जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत भी आती है, उनकी देखरेख में चलते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर एक्सेस करता नहीं था उस समय, महिलाओं को अपनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है, कोर्ट जाने में वो बहुत घबराती थी, डरती थी। लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जब वो आई हैं तो इस स्कीम में महिलाओं को एक अवेयरनेस मिली है। हम डे टू डे लोकल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंदर अगर आप आएंगी तो उनकी जो भी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाएगा। वो बहुत ज्यादा घबराती है इस बात को लेकर कि अगर परिवार में या सोसाइटी में ये चला जाता है, जो एक स्टिग्मा है कि हमारी बात लीक हो जाएगी। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, अगर वो आती है हमसे बात करने के लिए तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि हमारी जो, अब अभी मैं FIR या लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वहाँ पर साइकोसोशल काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल काउंसलर्स और पैरालीगल वर्कर्स भी होते हैं। साथ में ही विधिक सहायता के लिए वहाँ पर डालसा से ही रोस्टर लगते हैं, ऑल द टाइम लॉयर्स अवेलेबल होते हैं 10 to 5 की शिफ्ट में। और उस दौरान जो भी सर्वाइवर या जो भी महिला हमारे पास आती है, हम उनको जो भी लीगल अवेयरनेस अगर वो चाहती है, लीगल एड चाहती है, तो हम उसको वन रूम फैसिलिटी देते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का मोटो ही वन रूम फैसिलिटी देना है। उसको उसी प्रेमिसेस में मेडिकल भी प्रोवाइड होगा, उसको उसी प्रेमिसेस में लीगल काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, काउंसलिंग भी वही होगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार से या पति से कोई निकाल दी गई है, घर से निकाल दी गई है, रात के 2 बजे भी निकाल दी गई है, तो 181 हेल्पलाइन के द्वारा उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पहले 5 दिन का सेंटर मिलता था, परंतु अभी बढ़ा कर ये सेंटर 20 दिन का कर दिया गया है, ताकि उसे कहीं पर भी बिना आश्रय के ना रहना पड़े। उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं पर मौजूद स्टाफ के द्वारा देखी जाती है, वहां पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है, जिसे PFO बोला जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर। वो वहां पर उसकी कंप्लेंट लोकल थाने में रजिस्टर कराते हैं, साथ ही साथ उसकी DD एंट्री या FIR दर्ज कराने में जो भी मदद चाहती है वो उसको बहुत ईजी प्रोसेस के द्वारा मदद कर देते हैं। साथ ही वहां पर आश्रय में कपड़ा, खाना एवं मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको उस दौरान कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होती है। कौन सी महिलाएं एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इजी टू मूव सखी वन स्टॉप सेंटर में, कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज बार नहीं है, आप आ सकते हैं किसी भी टाइम पर। 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक का बच्चा वो आ सकता है, कोई भी, इवन उससे छोटे बच्चे भी वहां पर आ सकते हैं। और उस दौरान भी हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि चाइल्ड लाइन से कोलैब करा देते हैं, उसके द्वारा वहां पे

0: काउंसलर्स जो चाइल्ड लाइन के आते हैं वो भी आते हैं। 1-8-1 हेल्पलाइन किसी भी प्रकार के लिए महिलाओं के लिए एकदम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवेश में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हों या फिर घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी, चाहे 20 साल हो गए हो शादी को या 25 साल हो गए हो या 2 ही महीने क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा जो भी है। कई बार मैंने अवेयरनेस के दौरान या हमारी वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं आती हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या हैं, उन्हें इमोशनल हिंसा पता ही नहीं होती है। उनको ये लगता है कि बस गाली गलौज कोई बात नहीं है, पर वो बहुत इजीली मान लेती है गाली गलौज कोई बात नहीं है। सिर्फ उनके लिए हिंसा वही होती है जिससे मार दिया गया है, खून निकल गया है, वही उनके लिए एक हिंसा होती है। जब हम उनको बताते हैं कि इकोनॉमिकल हिंसा भी होती है कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप अपनी पसंद से खर्चा नहीं कर सकते, वो भी एक हिंसा होती है। जो समय समय पर हम छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने मैप में एनजीओ के साथ में है या फिर हमारे जो लोकल एनजीओज वहाँ पे जो भी काम करते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में है अजय कुमार जी, उनके सुपरविजन में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ पर से बहुत सारी महिलाएं निकल के आती हैं। मैं आपको सर बताना चाहूँगी यहाँ पर मुख्य वजह होती है कि उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी महिलाएं एजुकेशन तक रीच ही नहीं कर पा रही है, कई बार ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कई बार अलॉटमेंट्स के हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पा रहे। तो हम स्कूल के साथ में समय समय पर ऐसे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं ताकि एजुकेशन का महत्व उन बच्चों को समझाया जा सके। कुछ होता है सामाजिक परिवेश, कि कुछ सामाजिक परिवेश में ये होता है कि हम ज्यादा लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ सकती हैं, जो कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करता है। अब बात आती है कि वो किस किस अधिनियम के तहत जा सकती हैं, तो हम उन महिलाओं को ये समझाते हैं कि अगर आपका शेयर हाउस होल्ड है वहां पर भी आप उनका रेसिडेंशियल राइट ले सकते हैं, आश्रय का आपको अधिकार है, आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता कि शादी को कितना समय हो गया, आप अर्न करती हैं या नहीं करती हैं। पहले तो आप अपने उस परिवेश से निकलने की कोशिश करिए जब आपके साथ जो भी किस्म की हिंसा हो रही है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि जो भी हिंसा आप सहन करोगे तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलता है, हिंसा कभी भी सहन नहीं की जाती है। पहले भी कई बार होता है नो का मतलब नो, तो पुरुषों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी और ये चीज हम काउंसलिंग में भी समझाते हैं कि अगर महिला किसी भी तरीके से नो कर रही है तो इसका मतलब नो ही है, नो का मतलब यस कभी नहीं हो सकता। होप कि आने वाले समय पर ऐसे सेंटर्स की जो भी एक्सेस मतलब बहुत इजी टू रीच हो महिलाओं के लिए, और ऐसे सेंटर्स में किसी भी प्रकार का कोई सारा फीमेल स्टाफ रहता है तो सर्वाइवर्स बहुत इजी से आकर अपनी बातें बता देती हैं। कई बार वो ऐसी बातें भी बता देती हैं जिनको वो कहती है कि मैडम नोट मत कीजिएगा केस सीट पे, क्योंकि मैं तो ये आपसे फैमिलियर होकर ही बता रही हूँ। तो वन स्टॉप सेंटर का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग सेंटर में विजिट करें तो अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project and Sanju Kumari, member, One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਪੋਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਫਰੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 8ਵਾਂ ਭਾਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ 7:30 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
3: ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਪੁੰਛ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਸੁੰਗਲ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।

0: भारत भी सुपारी दी दरामद ते 100% मूल कस्टम ड्यूटी लगती है। हालांकि साफ्टा समझौते तहत योग दरामद नु कस्टम ड्यूटी तो छोटे। बांग्लादेश विच पैदा होने वाले सुपारी इस छोटले योगे बशर्ते दरामद निर्धारित मूल नियमां ते मापदंडां नु पूरा करती होवे। विज्ञान ते तकनालोजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रोकथाम वाली सेहत संभाल ते शुगर दी रोकथाम नु राष्ट्रीय तरजीह बनाउण दा सद्दा दित्ता है। उन्हां जोर दे के कहा कि देहाती भारत विच शुगर ते वध रहे बोझ लई भाईचारे दी अगवाई वाली तकनालोजी समर्थता ते डेटा आधारित प्रतिकरण दी लोड़ है। मंत्री ने RSSTI डायबिटीज देहाती आउटरीच डिजिटल पोर्टल दा वर्चुअल उद्घाटन कीता अते शुगर जागरूकता वीडियो लाइब्रेरी विश्वास लॉन्च कीती। इस मौके बोलदियां डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत की 70% तो वध आबादी 40 साल तो घट उम्र की होने करके देश की नौजवान आबादी की सेहत और उत्पादक संभावना की रक्षा करना 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण लिए जरूरी है। मंत्री ने भारत की भाषाई भिन्नता प्रति डिजिटल सेहत हलों को जवाब देन बढ़ाने की महत्ता से भी जोर दिता। मंत्री ने शुगर अते होर गैर लाग वाली बीमारियां दी रोकथाम अते इन्हां प्रति प्रबंध लई वधेरे प्रभावशाली अते टिकाऊ मॉडल बनाउण लई सरकारी एजेंसियां, अकादमिक संस्थावां, टेक्नोलॉजी पाईवालां, निजी संगठनां अते स्थानक सेहत संभाल मुलाजमां विचकार वधेरे एकीकरण दी मांग कीती। RSSTI देहाती आउटरीच प्रोग्राम एक भाईचारक पहलकदमी है जो RSSTI मैंबरां वल्लों पिंड गोद लै के देहाती भारत विच शुगर जागरूकता छेती पता लाउण, इलाज ते रोकथाम नूं बेहतर बनाउण ते केंद्रित है। हर घर तिरंगा मुहिम दे हिस्से वजों अज करनाल विच तिरंगा यात्रा कराई गई। इस महीने की 9 तरीक तो 17 तरीक तक देश भर विच हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने तिरंगा यात्रा नूं हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा विच वड्डी गिणती विच लोकां ने तिरंगे नाल हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री खुद मोटरसाइकिल ते यात्रा विच शामिल होए। केंद्रीय सहकारिता राज मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर अते साबका कैबिनेट मंत्री ते विधायक पंडित मूलचंद शर्मा दी अगवाई हेठ हरियाणा दे बल्लभगढ़ विखे भी एक विशाल तिरंगा यात्रा कराई गई। हजारां लोकां ने यात्रा विच हिस्सा लिया। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ के वख-वख हिस्सों विच अगले 2 दिनों लई भारी मीह का येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब विच भलके पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर अते मोहाली के कई इलाकों विच भारी मीह पैण की संभावना है, जबकि पठानकोट, होशियारपुर अते रूपनगर के कई हिस्सों विच 18 अगस्त नूं भारी मीह पै सकता है। इस तों इलावा मौसम विभाग ने पंजाब के कुछ हिस्सों विच हल्की तो दरमियानी बारिश होने की भी संभावना जताई है। खेडा विच औरतां दे FIH हॉकी विश्व कप विच भारत ने अज नीदरलैंड दे एम्स्टलवीन विखे एक ग्रुप पड़ा दे मैच विच चीन खिलाफ 2-2 दे रोमांचक ड्रॉ नाल अपनी मुहिम दी शुरुआत कीती। नवनीत ने 8वें मिंट विच भारत ने शुरुआती लीड दित्ती, पर चीन ने 15वें मिंट विच चांगयिंग दे पेनल्टी स्ट्रोक राही बराबरी कर ली। दीपिका ने 25वें मिंट विच पेनल्टी कॉर्नर गोल नाल भारत दी लीड बहाल की थी। चीन ने तीजे क्वार्टर विच वापसी की थी। मानिंग ने 39वें मिंट विच पेनल्टी कॉर्नर नूं बदल के स्कोर 2-2 नाल बराबर कर दिता। क्रिकेट विच भारत ने श्रीलंका खिलाफ कल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम विच खेडे जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूजे दिन की खेड खत्म होने तक 9 विकटां के नुकसान से 460 दौड़ा बना लिया ने। खेड खत्म होने समय प्रसिद्ध कृष्णा ते कुलदीप यादव क्रीजते सन। देवदत्त पडिकल ने 167 दौड़ा बना के अपना पहला टेस्ट सैकड़ा लाया। आखिर च खास खबरां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि 2047 तक भारत नूं पूरी तरह विकसित राष्ट्र बनाउण लई नौजवानां, गरीबां, औरतां ते किसानां नूं समर्थ बनाउणा बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर विच जम्मू पुंछ राष्ट्रीय शाहराह ते सुंगल सुरंग नूं जनतक आवाजाई लई खोल दिता गया है। माली इंटेलीजेंस बारे डायरेक्टोरेट ने दक्षण पूर्वी एशियाई सुपारी की गैर कानूनी तरीके नाल दरामद विच शामिल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। विज्ञान ते तकनालोजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रोकथाम वाली सेहत संभाल ते शुगर की रोकथाम ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:40 ਅਤੇ 15 ਸਕਿੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸੁਹਾਨੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ।
2: ਸਰੋਤਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

0: हाँ जी, गल करते हैं अपने अगले स्रोते नाल जिन्होंने डायल किया है 0164-2240-331, तो सुनते हाँ उन्हां दी फिर पसंद का गीत की कहिंदे ने ते केड़ा गीत कहिंदे ने। हैलो
1: हेलो मैडम, सत श्री अकाल। हेलो,
0: हेलो,
1: हाँ जी मैडम, सत श्री अकाल।
0: हाँ जी सत श्री अकाल जी, कौन बोलते हो तो कितों बोलते हो?
1: गुरमेल सिंह त्रियेवाला जी,
0: कितों बोलते हो जी?
1: त्रियेवाला तो जी, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा जी, जिला का पिंडा जी।
0: केड़ा गीत सुनोगे?
1: गीत देश भी महसूस पूरी तरह सुनाओ जी।
0: की काम काज
1: हेलो,
0: करते हो?
1: ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਬਥੇਰੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਵਰਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ।
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਵੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਦਾ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
1: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੇ।

0: प्रोग्राम शाम सुहानी।
1: हुणे तुसीं सुन रहे सी फरमाइशी गीतां दा प्रोग्राम शाम सुहानी, आकाशवाणी एफ एम बठिंडा, एफ एम बैंड 101.1 MHz ते। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के 8:25 हो रहे ने। हुण वेला है गज़लां ते आधारित प्रोग्राम रंगे गज़ल दा।

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन सीमा मेहरा। ता फिर सुनना ना भुलना, मिति 17 अगस्त दिन सोमवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार, जिथे हर कहानी साडे विरसे दी आवाज बनदी है।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम

0: बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
0: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृहमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will shape the economics and the society's future.
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का

0: आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
1: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉक्टर पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉक्टर प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
2: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की

0: जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
2: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale areca nut import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-2 draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands. And BWF Badminton World Championships start in New Delhi tomorrow. PV Sindhu and Lakshya Sen.

0: फिर देसाई और आकांक्षा शर्मा की थी। गीत के बोल रश्मि विराग के और संगीत पीयूष शंकर का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोता में गीत आपने सुना फिल्म लूडो से, आवाज अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल संदीप श्रीवास्तव के और संगीत प्रीतम का।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: अब कहां जाए हम?
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामक कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहत नामा।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म शिद्दत से। आवाजें सचिन टंडन, परंपरा टंडन और सचिन जिगर की थी। गीत के बोल कौसर मुनीर के और संगीत सचिन जिगर का।

0: संस्कृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है

0: दरारा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों गा।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज एक ऐसी नायिका की दास्तां लेकर आई है आपकी ये रेडियो सखी, जिसके चेहरे में न जाने क्या है कि हम सब अनायास ही आकृष्ट हो जाते हैं। वे सचमुच बंगला सौंदर्य की स्वामिनी हैं। उनकी आवाज और संवादों की अदायगी में मीठा मीठा और नमकीन नमकीन बंगला स्वाद घुला है। आइए सलाम करें सादा सरल सहज और सुंदर अभिनेत्री राखी की प्रतिभा को।

बहुत बरस पहले की बात है, बांग्ला अभिनेत्री संध्या रॉय राणा घाट यानी पश्चिम बंगाल में अपने किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। माछेर झोल का स्वाद इस अभिनेत्री को ले आया अपने एक परिचित परिवार के घर, और ये घर था अभिनेत्री राखी का, जिन्हें संध्या राव को देखकर अभिनय की लौ लग गई।

15 वर्ष की उम्र में अभिनेत्री राखी का ब्याह हो गया अजय विश्वास से, जो कि एक फिल्म निर्माता और पत्रकार थे। सन 1968 में राखी अपने पति के पास मुंबई आ गईं। दरअसल एक दिन उनके पति ने अपने ही निर्देशन में बनने वाली फिल्म में राखी को भूमिका देने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच यहीं से दूरियां बढ़ने लगी। उन दिनों राखी ने मुंबई में मॉडलिंग और डबिंग जैसे काम किए। थोड़े समय संघर्ष के बाद फिल्म जीवन मृत्यु से राखी की जिंदगी झिलमिल सितारों का आंगन बन गई।

0: जन्म जीवन मृत्यु के बाद राखी के पास फिल्मों का अंबार लग गया। उन्होंने बहुत सोच समझकर फिल्में चुनी। उसी दौर में राखी ने सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा में एक छोटी सी लेकिन यादगार भूमिका निभाई।
1: जब से

बाद राखी की कुछ बहुत ही सफल फिल्में आईं, जिनमें से एक थी फिल्म ब्लैकमेल, जिसमें नायक थे धर्मेंद्र, जो राखी की पहली फिल्म जीवन मृत्यु में भी नायक थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने राखी से राजेंद्र कृष्ण के इस गीत के जरिए जो कुछ कहा, जमाना आज उस बात को दोबारा तिबारा बल्कि हजार हजार बार कहते हुए भी नहीं थकता।

राखी स्वयं अपनी फिल्म शर्मिली को एक यादगार फिल्म मानती हैं, जिसमें उनकी दोहरी भूमिका थी। आज भी छोटे पर्दे पर इस फिल्म को देखकर लड़के आहें भरते हैं और लड़कियां कहती हैं, हाय कितनी प्यारी लग रही है ना।

0: अमन।
1: अभिनेत्री राखी ने कुछ ऐसी फिल्में भी की जो व्यावसायिक तो नहीं थी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण थी, जैसे फिल्म परमा, फिल्म वित्त निगम की फिल्म 27 डाउन। इसके अलावा उन्होंने एक असमिया फिल्म भी की थी। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ राखी ने लगभग 2 दर्जन फिल्में की। खास बात ये कि इनमें वे कहीं अमिताभ की नायिका हैं तो कहीं माँ। फिल्म काला पत्थर और फिल्म कस्मे वादे।

तो बात चल रही है राखी की अलग अलग नायकों के साथ अभिनीत फिल्मों की। यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में राखी की अहम भूमिका थी। इस फिल्म में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन एक साथ थे।

1973 में राखी ने लेखक, निर्देशक और गीतकार गुलजार से ब्याह रचा लिया। आज उनकी बेटी बोस्की यानी मेघना खुद फिल्म निर्देशिका बन चुकी हैं। उनकी पहली फिल्म फिलहाल काफी चर्चित रही। अपने फिल्मी करियर के बाद के दिनों में राखी ने चरित्र भूमिका निभानी शुरू की। आज के जमाने के कई नायकों की माँ की भूमिकाएं राखी ने निभाई हैं।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जागले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के छाया गीत में गुलजार के अशार और उन्हीं के नगमे। शहतूत की शाख पे बैठा कोई बुनता है रेशम के तागे, लम्हा लम्हा खोल रहा है, पत्ता पत्ता बीन रहा है, एक एक सांस बजाकर सुनता है।

सौदाई एक एक सांस को खोलकर अपने तन पर लिपटाता जाता है, अपनी ही सांसों का कैदी रेशम का ये शायर एक दिन अपने ही तागों में घुटकर मर जाएगा।

एक पुराना मौसम लौटा, याद भरी पुरवाई भी, ऐसा तो कम ही होता है, वो भी हूं तन्हाई भी। यादों की बौछारों से जब पलकें भीगने लगती हैं, कितनी सूंधी लगती है तब माजी की रुसवाई भी, और खामोशी का हासिल भी, एक लंबी सी खामोशी है, उनकी बात सुनी भी हमने, अपनी बात सुनाई भी।

0: न आने की आहट न जाने की टोह मिलती है, कब आते हो कब जाते हो। इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है और जज्ब हो जाता है, कब आते हो कब जाते हो। बंद कमरे में कभी कभी जब दिए की लौ हिल जाती है तो एक बड़ा सा साया मुझको घूंट घूंट पीने लगता है। आंखें मुझसे दूर बैठकर मुझको ही देखती रहती हैं, कब आते हो कब जाते हो। दिन में कितनी कितनी बार मुझको तुम याद आते हो।
1: बस रे चुप।

0: चुप सी लगी है।
1: छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
2: जाग के काटे सारे रहना, जाग के काटे।
1: हम अभी हाजिर हुए।

दिल में ऐसे ठहर गए हैं गम जैसे जंगल में शाम की साए, जाते जाते सहम के रुक जाएं, मुड़ के देखें उदास राहों पर कैसे बुझते हुए उजालों में दूर तक

रात चुपचाप दबे पांव चली जाती है। रात खामोश है, रोती नहीं, हंसती भी नहीं। कांच का नीला सा गुंबद है, उड़ा जाता है। खाली खाली कोई बजरा सा बहा जाता है। चांद की किरणों में वो रूस सा रेशम भी नहीं। चांद की चिकनी डली है कि घुल जाती है, और सन्नाटों की एक धूल उड़ी जाती है। काश एक बार कभी नींद से उठकर तुम भी हिज्र की रातों में ये देखो।

बस एक ही सुर में, एक ही लय पे सुबह से देख कैसे बरस रहा है उदास पानी। फुहार के मलमली दुपट्टे से उड़ रहे हैं तमाम मौसम, टपक रहा है पलक पलक, रिस रही है ये कायनात सारी। हर एक शय भीग भीग कर देख कैसी बोझल सी हो गई है। दिमाग की कीली कीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें टपक रही हैं। थके थके से बदन में बस धीरे धीरे सांसों का गर्म लुबान चल रहा है।

0: फिल्म शक, संगीत वसंत देसाई का। फिल्म इजाजत, पंचम का संगीत।
1: बस चुप सी लगी।
0: फिल्म सन्नाटा, संगीत हेमंत कुमार का। फिल्म खुशबू, संगीत पंचम का।
2: अब के सावन बरसे।
0: फिल्म किनारा, संगीत पंचम। फिल्म लीला, संगीत जगजीत सिंह। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

रंग दे नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: श्रोतियों तुसी आनंद मान रहे सी विविध भारती मुंबई दे प्रसारणा दा आकाशवाणी एफएम बठिंडा एफएम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते स्टूडियो दी कड़ी अनुसार रात दे 11 बज रहे ने। इस दे नाल ही साडी अज दी प्रसारण सभा इत्थे ही समाप्त हुंदी है। कल सवेरे 5:55 ते आकाशवाणी एफएम बठिंडा फिर हाजिर होवेगा अपने प्रसारण लैके। तद तक लई देओ आग्या, जय हिंद।